आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। जिंदगी के सुनहरे रंगों की बात कर रहे हैं, सूर्य की किरणों की तरह। 5:37 और 51 सेकंड, मुट्ठी में से रेत की तरह समय धीरे धीरे फिसल रहा है, लेकिन हम भी पूरे के पूरे आपके साथ जुड़े रहेंगे। समय चलता रहेगा, हम भी चलते रहेंगे और गीतों का सिलसिला भी यूं ही चलता रहेगा। जो समय है, जैसा समय है, उसको हंसकर गुजारेंगे और यूं ही गीत

FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है। रात के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मातृभूमि को नमन करते हुए आरंभ कर रहे हैं इस मातृवंदना के

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में ये मातृ वंदना, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवप्री केंद्र से। लीजिए श्रोताओं, सुनिए नात असलम साबरी और साथी के स्वर में।

अभी आपने सुना असलम साबरी और साथियों का गाया हुआ ये नात। लीजिए श्रोताओं, सुनिए एक बार फिर असलम साबरी और साथी की गाई हुई ये।

अभी आप सुन रहे थे असलम साबरी और साथी का गाया हुआ ये नात। लीजिए श्रोताओं, सुनिए सलीम झंकार और साथी की गाई हुई ये।

देर थोड़ा तवज्जो जाएंगे। जब सफर आखिरी हो हमारा, जब सफर आखिरी हो हमारा, या नबी हो

0: नेट हुए हैं, प्रस्तुत है चिंतन, मुहर्रम विषय पर चिंतन। सुनिए शेख शहजाद उल्लाह उस्मानी के द्वारा।
1: इस्लामी कैलेंडर के 12 महीनों में से सबसे पहले महीने का नाम है मुहर्रम। इस महीने की 10वीं तारीख यानी यौमे आशूरा इस्लाम के इतिहास में और इस्लाम की शक्ति के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास पर गौर से नज़र डाली जाए तो इस धरती पर धर्म की खातिर या अधिकार की खातिर जान देने वालों में नुमाया तौर पर जो नाम सामने आते हैं उनमें सबसे प्रमुख नाम है हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अनहु का नाम, जो कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। अधर्म के रास्ते पर चलने वाले राजा यजीद के कुतर्कों से असहमत होकर अनेक कष्टों और यातनाओं को बर्दाश्त करते हुए यजीदियत को हराकर जिस तरह इस्लाम की खातिर हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु इस रोज़ शहीद हुए, उससे ही इस्लाम धर्म की शक्ति और व्यापकता में वृद्धि हुई। यजीद के अधर्म और उसके गलत फैसलों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने इस अंदाज से कुर्बानियां और शहादत दी कि यजीदियत बौखला गई और अधर्म को करारी हार देकर धर्म की, सत्य की और न्याय की जीत हुई। करबला शरीफ की ये घटना हमें इस बात की याद दिलाती है कि अपने धर्म और ईमान की खातिर अपना तन मन धन कुर्बान करने से गुरेज नहीं करना चाहिए, अधर्म से डटकर मुकाबला करना चाहिए। मैदाने करबला में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत यकीनन दुनिया को धर्म और अधिकार की राह दिखाने के लिए हुई। इसका एक संदेश ये भी है कि बातिल अर्थात असत्य पर सत्य की ही जीत होती है, अधर्म का नाश होता ही है, इंसानियत ही सर्वोपरि है। माह मुहर्रम की 10वीं तारीख को 62 हिजरी सन में अर्थात 641 ईस्वी सन में मैदाने करबला में हक और सदाकत की सरबुलंदी के लिए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने खानदान के 72 लोगों के काफिले के साथ बातिल अर्थात असत्य की ताकत की पैरवी न करके शहादत देकर इस्लाम धर्म को शक्ति दी। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते अर्थात ईश्वरीय कानून पर चलकर उन्होंने एक सच्चे इस्लामी अनुयायी होने की पुष्टि की। धर्म के 3 उद्देश्य होते हैं। प्रथम उद्देश्य ये है कि मनुष्य को पाशविकता और उद्दंडता की गर्त से निकालकर मनुष्य बनाना, फिर उसको सदाचार सिखाकर सर्वगुण संपन्न इंसान बनाना, और फिर तीसरा उद्देश्य ये कि इसके अंतर मन में उच्च भाव उत्पन्न करके उसको सदात्मा बनाकर परमात्मा से मिलन के योग्य बनाना। इस्लाम के भी यही 3 उद्देश्य हैं। पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ सदाचार की शिक्षाओं से परिपूर्ण है। इसमें समझाया गया है कि सदाचरण और ईश्वरायणता में हमेशा एक दूसरे का साथ दो, परंतु पाप और अत्याचार के कामों में सहायक ना बनो। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने यजीद की विचारधारा, उसके पापाचार और अत्याचार और ईश विरोधी असत्य कथनों और आदेशों के आगे न झुककर अपने खानदान के 72 लोगों की शहादत दी। सदाचरण, न्यायप्रियता और ईश परायणता के लिए अपने नाना जान पैगंबर मोहम्मद साहब के उपदेशों का समर्थन करने के लिए और ईश्वरीय संदेशों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए और इस प्रकार अपने धर्म को सदैव जिंदा रखने के लिए, उसे समृद्ध करने के लिए। जब भी समाज में यजीदियत, शैतानियत या हैवानियत हावी होती है तब ऐसी ही कुर्बानियों और शहादतों की आवश्यकता होती है। तभी बुराई पर अच्छाई की जीत हो पाती है, तभी धर्म की जीत संभव हो पाती है।
0: श्रोताओ, अभी आप मुहर्रम विषय पर चिंतन सुन रहे थे। चिंतक थे शेख शहजाद उल्लाह उस्मानी।
2: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा,
3: डीडी डायरेक्ट,
2: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
3: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
2: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
3: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
2: आज ही करें कनेक्ट
3: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा, डीडी डायरेक्ट।
0: FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

सलेम शंकर और सांथी की गई हुई इस नात के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शुभ्री केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर प्रातः के 6:30

श्री रामचरित मानस जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करने में गोस्वामी तुलसीदास जैसा विनयी भक्त अपने को सर्वथा अक्षम तथा असमर्थ पाता है। उनका कहना है, मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी। मन में भरोसा इस बात का है कि उनकी कविता में श्री राम का प्रताप है, और भला संग मिलने पर बड़प्पन किसने नहीं पाया।

अभी आप सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये शुभ्री केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर प्रातः के 6:00 बजकर

0: 45 मिनट हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि सामयिकी, फसलों में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, और इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मुकेश कुमार भार्गव।
1: किसान भाइयों, बदलते दौर पे खेती में धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। उन बदलावों के साथ हमारी जो खेती में पोषक तत्वों की श्रृंखला है उसका समन्वय करते हुए समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाना भी बहुत जरूरी है। यह मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि आप प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, रासायनिक खेती ये आजकल सुन रहे हैं। इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण है इन सब के बीच की बात है समन्वित खेती में पोषक तत्व प्रबंधन। तो पोषक तत्व प्रबंधन के लिए सबसे पहले अभी आप लोगों के खेत खाली होंगे, उन खाली खेतों में गोबर आधारित जो भी खाद है आपके पास, चाहे वो कंपोस्ट खाद हो, नाडेप खाद हो, वर्मी कंपोस्ट है, गंजीवामृत है, उसको आप खेत की आखिरी तैयारी के समय जुताई से पहले मिला दें और 5 से लेकर 10 टन प्रति हेक्टर के मान से मिला सकते हैं। यदि वर्मी कंपोस्ट है या गंजीवामृत है 2 से 5 टन भी मिला सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण फसल के लिए लाभकारी परिणाम देगी। साथ ही साथ किसान भाइयों, जो किसान भाई ने हरी खाद के रूप में सनई है, डेंचा है या मूंग है, उड़द की खेती की है, कहीं कहीं मूंगफली की भी खेती करते हैं, तो उसका जो रेसिड्यू है या उसके जो अवशेष हैं उसको भी मिट्टी में मिला सकते हैं। और डेंचा सनई तो मिट्टी में पलटाई करीब 25-30 दिन पर कर देते हैं, उसमें मिट्टी में जैविक जो अंश है, जीवांश है जिसको कहते हैं, उसकी एक बहुत अच्छी वृद्धि होती है और फसल को लाभ होता है। तो ये पूरी श्रृंखला, चाहे गोबर की खाद हो, हरी खाद देना, ये समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की श्रृंखला में ही आते हैं। इसके बाद जब हम फसल बोने जा रहे हैं, कौन सी फसल बो रहे हैं, अनाज बाली बो रहे हैं, धान बोएंगे या मूंगफली बोएंगे, सोयाबीन बोएंगे, उसके लिए मिट्टी का परीक्षण यदि आपने कराया हुआ है तो उसके अनुशंसा अनुरूप, यदि नहीं कराया है तो अभी भी करा सकते हैं। हमारी शिवपुरी में कई मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है, वो आजकल तो कई प्राइवेट सेक्टर में भी कर रहे हैं, तो इनसे आपको जांच के उपरांत पता चल जाएगा। तभी हमको रासायनिक उर्वरक जो हमारे डीएपी है, एनपीके है, पोटाश है, यूरिया है, सुपर है, अलग अलग श्रृंखला होती है। और किसान भाई डीएपी के पीछे पड़े रहते हैं, मैं तो कहूंगा आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश तीनों एक में ही आते हैं, उसका प्रचलन मिल रहा है। यदि नहीं है तो हम अलग अलग भी कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं, उत्पादन में कोई कमी नहीं आती। तो ये समन्वित और अनुशंसित मात्रा में देना बहुत जरूरी है रासायनिक उर्वरकों का। इसके साथ साथ किसान भाइयों, कुछ जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर को कहते हैं, जो दलहनी फसलों के लिए जैसे राइजोबियम है और अनाज वाली फसलों के लिए एजिटोबैक्टर है, और धान के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बीजीए कहते हैं, तो नील हरित शैवाल। तो इससे हम बीज उपचार कर रहे हैं तो बीज उपचार के लिए करीब 10 ml प्रति किलोग्राम बीज के मान से जैव उर्वरक से उपचार कर लेते हैं तो वो बड़े लाभकारी होता है। साथ ही साथ फास्फोरस सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया, इससे भी 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के मान से उपचार करने से जो फास्फोरस हमने पहले से दी है वो पौधों को पूरी फसल को उपलब्ध नहीं हो पाती, या केमिकल रिएक्शन के माध्यम से जमीन में फिक्स हो गई है, तो उसको वो घुलनशील बनाते हैं। यहाँ किसान भाइयों, में एक सुझाव भी देना चाहूंगा, इन रसायनों को आपने दिया है वो जमीन की उत्पादकता बढ़ाने में लाभकारी के लिए जैव उर्वरकों के द्वारा उनको उपलब्ध फॉर्म में लाने के लिए आप करीब 20-25 किलो मिट्टी ले लें या रेत ले लें, उसमें जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम है, एजिटोबैक्टर है डाल दें और खेत की आखिरी जुताई के समय भुरकाव कर दें, तो वो बैक्टीरिया बढ़ के पूरे खेत में प्रसारित हो जाते हैं और आपकी जो जमीन है उसमें घुलनशील फॉर्म में सल्फर या जो फॉस्फोरस है या जो भी पोषक तत्व है उसको एक लाभकारी परिणाम देते हैं। इसके साथ किसान भाई, जब हम फसल बोते हैं तो बोते समय हमको आधी मात्रा अनुशंसा की अनुरूप उर्वरकों की देनी चाहिए और बची हुई शेष मात्रा, जैसे हमारी जो धान वाली फसल है तो खड़ी फसल पे दी जाती है, लेकिन जब दलहनी फसल की बात करते हैं तो दलहनी फसलों में बहुत कम आवश्यकता होती है, क्योंकि नाइट्रोजन स्थिर करने वाले इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं दलहनी फसल की जो जड़ों में पाए जाते हैं, तो वो अपने आप सोते हैं, वातावरण से नाइट्रोजन लेते हैं और फसल को लाभ कराते हैं। आवश्यकता ये है कि हमको जो इनका उपचार करके एक टीकाकरण करना चाहिए वो बहुत जरूरी है। इस प्रकार आप देखें, ये एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली में एक बार मैं फिर किसान भाइयों से अनुरोध के साथ कहना चाहूंगा, इससे आपकी फसल की लागत भी कम होगी और उर्वरक की जो रासायनिक निर्भरता है वो भी कम होगी। इसके लिए आप गोबर की खाद, चाहे वो नाडेप खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, गंजीवामृत हो, इसका उपयोग करें, हरी खाद का प्रयोग करें। यदि आपने जो जायद में फसल लगाई हुई है, जैसे मूंग की फसल लगाई है, तो कुछ आपने फली की तोड़ाई कर ली हो, बाकी शेष फसल को आप मिट्टी में मिला सकते हैं, तो वो मिट्टी को पोषण देती है और मिट्टी की तासीर एकदम से बदलाव होती है, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो जैव उर्वरक हैं उनका भी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है मिट्टी सुधार में और जो पोषक तत्व दिए जा चुके हैं उनको उपलब्ध कराने में। इस प्रकार आप जो अनुशंसाएं हैं उनके अनुरूप आप आगामी समय में खरीफ फसलों में पोषक तत्व की प्रबंधन करेंगे तो आपकी फसलों से भरपूर

0: उत्पादन होगा, फसल की लागत कम होगी, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता भी कम होगी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि सामयिकी, फसलों में संतुलित पोषक तत्व और प्रबंधन। इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मुकेश कुमार भार्गव। आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में 7:05 पर सुनिएगा वसुंधरा पर्यावरण संरक्षण संदर्भित। 7:20 पर आप सुन सकते हैं गांधी चर्चा धर्म निरीक्षण। वाचक स्वर रहेंगे श्री शिवेंद्र श्रीवास्तव के। 7:35 पर आप सुनिएगा फिल्म संगीत। सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवप्री रहेगा 7:45 पर। आपकी फरमाइश के गीत आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत। सुबह 9:00 लोक संगीत का कार्यक्रम रहेगा लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं, हम आपको ठाकुर लाल राठौर और उर्मिला पांडे के गाए हुए कुछ लोकगीत सुनवाएंगे। सुबह 9:30 पर फिल्म संगीत। आप अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं, उन्हीं फरमाइशों को पूरा करेंगे सुबह 9:30 पर। जिले की चिट्ठी भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी सुबह 10:00। 10:30 पर कार्यक्रम रहेगा फिल्म संगीत का। और उससे पहले 10:05 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आप सुनेंगे मानसी कणेकर को। सुबह 11:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

भोपाल से अनुप्रसारित कार्यक्रमों के अंतर्गत श्रोताओं दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति और 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत, ये तीनों ही कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये रहेंगे छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति। संध्या 5 बजे युववाणी कार्यक्रम रहेगा, आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा और रहेगा छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति।

श्रोताओं 7:21 पर आकाशवाणी के शिवरी केंद्र से कार्यक्रम सुनेंगे आप चौपाल ग्रामीण भाइयों के लिए। अभिवादन आरंभिक चर्चा के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, वर्मी कंपोस्ट से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं, मधुमक्खी पालन एवं लाभदायक व्यवसाय, भेंट वार्ता, जोड़ों का दर्द कारण लक्षण एवं उपचार, वार्ताकार डॉक्टर पंकज शर्मा से भेंट करता डॉक्टर समर्थ अग्रवाल, कुछ लोकगीत और साथ ही रहेगी मौसम की जानकारी। तो श्रोताओं ये थी जानकारी आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। प्रातः के 6:55 होने को है। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमेनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्रोकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है।

के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है पर्यावरण संदर्भित लघु वार्ता वसुंधरा। पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है, परि जो हमारे चारों ओर है, आवरण जो हमें चारों ओर से घिरे हुए है। अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घिरे हुए। पर्यावरण वह है जो कि प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे चारों ओर वह हमेशा व्याप्त होता है। पर्यावरण का सीधा संबंध प्रकृति से है। अपने परिवेश में हम तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा अन्य सजीव निर्जीव वस्तुएं पाते हैं और ये सभी मिलकर पर्यावरण की रचना करते हैं। हमारे जीवन में हमने बहुत सारे परिवर्तन देखे। जलवायु परिवर्तन उनमें से एक है और जलवायु परिवर्तन के कारण ही पृथ्वी पर मौसम परिवर्तित होता है और मौसम से हमें कई लाभ होते हैं। कोई भी फसल मौसम के बिना नहीं उगाई जा सकती और ना ही मनुष्य जीवन एक मौसम में गुजार सकता है। समस्त जीवधारी को मौसम की जरूरत होती है। जलवायु परिवर्तन से हमें कई लाभ ही है तो कई नुकसान भी हैं। प्राकृतिक आपदाओं में चक्रवात, तेज तूफान, अत्यधिक बारिश या फिर सूखा आदि शामिल हैं। आज का मानव प्रकृति पर पूर्णतया विजय प्राप्त करना चाहता है, इस कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। दूसरी ओर धरती पर जनसंख्या की निरंतर वृद्धि, औद्योगीकरण एवं शहरीकरण की तीव्र गति से यहाँ प्रकृति के हरे भरे क्षेत्रों को समाप्त किया जा रहा है। इसीलिए पर्यावरण का आवश्यक रूप से संरक्षण किया जाना जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है। पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए अनेक उपाय हैं। वस्तुतः पर्यावरण संरक्षण से ही धरती पर जीवन का संरक्षण हो सकता है, इसलिए इसे वसुंधरा माँ की संज्ञा दी गई है। पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य पर्यावरण की सुरक्षा करना। वृक्ष वनस्पतियों का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है, वे मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। जितने वृक्ष कटते हैं उतने वृक्ष लगने भी चाहिए। प्राणी अपने जीवन हेतु वनस्पति जगत पर आश्रित है। प्राणियों को आवश्यक रूप से हवा में उपस्थित ऑक्सीजन पेड़ों के द्वारा ही मिलती है। वो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। वृक्ष वनस्पति से धरती हरी भरी बनी रहे तो इससे मनुष्यों को अनेक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभ होते हैं। ईंधन, इमारती लकड़ी से लेकर फल फूल, औषधियां प्रदान करने, वायु शोधन, वर्षा का संतुलन, पत्तों से मिलने वाली खाद, धरती के कटाव का बचाव, बाढ़ रोकने आदि अनगिनत लाभ हैं। पर नष्ट होंगे तो पानी का अकाल पड़ेगा, भूमि की उर्वरा शक्ति घटेगी और फसलों की पैदावार कम होती जाएगी। इसीलिए आवश्यक है कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, क्योंकि शुद्ध वायु ही प्राणों का आधार है और पृथ्वी के वायुमंडल में आवश्यक है कि प्राणवायु बनी रहे। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण संदर्भित लघु वार्ता वसुंधरा। आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। प्रातः के 7:10 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, नशे के दुष्परिणामों से बचाने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल करें। देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार, पहले की तरह बहाल हुई सेवाएं। और आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे वहां के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय सहयोग में सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत करेंगे। बता दें कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशेल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत और स्थायी मित्रता को नई गति देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की बैठक में कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नशे के दुष्परिणामों से किशोरों और युवाओं को समय रहते परिचित कराना जरूरी है। नशे के विरुद्ध वातावरण बनाने के उद्देश्य से स्कूली और महाविद्यालयीन स्तरों के पाठ्यक्रमों में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता पर केंद्रित सामग्री शामिल की जाए। वैश्विक संकट के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार आने के बाद केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब पश्चिम एशिया संकट से पहले ही आपूर्ति बहाल कर दी गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार थोक एलपीजी की आपूर्ति को पहले से 50% तक बढ़ा दिया है, जिससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही सरकार ने पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने का भरोसा भी जताया है। भारत ने जर्मनी में सुहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 में कल 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 4 और पदक जीतकर 25 पदक अपने नाम कर लिए। उधर आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। वहीं हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए रविवार को ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। वहीं भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। भारतीय समय अनुसार यह मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। लोकतंत्र प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या का दिन बताया। उन्होंने कल ग्वालियर में कहा कि आधी शताब्दी बीतने के बाद भी उन्हें अपने स्कूली जीवन की वे यादें ताजा रहती हैं। मंत्री पटेल ने कहा कि देश ने आजादी के बाद जो अन्याय और यातनाएं झेली हैं, उसकी जानकारी आगामी पीढ़ी को होना जरूरी है, ताकि वे समझ सकें कि लोकतांत्रिक मूल्य कितने महत्वपूर्ण हैं।
1: लोकतंत्र की हत्या का दिन था वो, आधी शताब्दी बीत गई है। और पर मुझे लगता है कि जब आपातकाल लगा था तब मैं पढ़ता था स्कूल में। आज वो जनरेशन जरूर याद रखे कि मूल्य कैसे सुरक्षित होते हैं। लोगों ने आजादी के आंदोलन की बातें तो सुनी है, लेकिन उसके बाद देश की आजादी के बाद जो अन्याय इस देश पर हुआ, जिनने यातनाएं सही हैं, उनकी जानकारी भी आने वाली पीढ़ी को होना चाहिए। और जिन लोगों ने लोकतंत्र बचाने के लिए यातनाएं सही हैं, उनका स्मरण भी होना चाहिए और उनको नमन भी होना चाहिए। और उसी कारण से पार्टी प्रतिवर्ष काम करती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर जल संकल्प से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य में एक अभूतपूर्व जल क्रांति का सूत्रपात किया है। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी ने अपने हालिया लेख में मुख्यमंत्री को जनप्रिय जननायक के रूप में रेखांकित करते हुए लिखी है। लेख के अनुसार मुख्यमंत्री पिछले 22 वर्षों के अपने भागीरथ संकल्प और अटूट निष्ठा के बल पर वे जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्रदेश के पारंपरिक जल स्रोतों, कुओं और बावड़ियों का कायाकल्प कर रहे हैं। आस्था के केंद्र माँ शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त और अविरल बनाना है उनका मुख्य उद्देश्य, ताकि आगामी सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालु शुद्ध जल से स्नान कर सके। भोपाल के रविंद्र भवन में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश से आए करीब 2000 मीसाबंदियों और उनके परिवारों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले 3 वयोवृद्ध सेनानियों का विशेष सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की अंतिम अंतरकुंजी यानी आंसर की को चुनौती देने वाली विंडो खोल दी है। उम्मीदवार 28 तारीख तक www.neet.nta.in पर प्रति प्रश्न ₹200 का शुल्क देकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। साथ ही पुनर्परीक्षा में शामिल छात्र शुल्क वापसी के लिए 30 तारीख तक बैंक विवरण अपडेट कर सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा newsoneair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार का संकल्प किसानों की आमदनी बढ़ाना है, जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को अपनाना होगा। श्री चौहान ने कहा कि
3: आपसे निवेदन करूंगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग की। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है एक ही चीज नहीं लगाए मेरे भाई। हमारे यहाँ कहते थे 4 फुट, मतलब खेत में 4 फुट पे 4 चीज लगाओ, एक फसल मत लगाओ। अपन पिल गए धान तो धान ही धान, धान और गेहूं, धान और गेहूं, धान और गेहूं। उससे क्या हुआ कि पहले अपन दलहन बाकी चीज लगाते थे तो अपने आप नाइट्रोजन फिक्स हो जाता था धरती में, बदल बदल के लगाते थे ना, तो धान गेहूं का विरोधी नहीं हुआ, लेकिन लगातार एक ही चक्र चलेगा तो धरती खराब होगी। एक करें अपन इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब ये भी है, फल भी लगाएं, सब्जी भी लगाएं, दाल भी लगाएं। अब गन्ना के बीच में क्या मूंगफली लगा रहे हैं, अब यहाँ पे शुरू हुआ है। अच्छा, इंटरक्रॉपिंग भी करें और वहीं पशुपालन भी हो। जिनकी रुचि है वो मछली पालन करें, जिनकी रुचि है उनसे कह रहा हूँ मधुमक्खी पालन हो सकता है, कृषि वानिकी या एग्री बेस्ड फॉरेस्ट, एग्री बेस्ड एग्रीकल्चर हो सकती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल यहाँ बना है, उसको जरूर देखना आप। 4-5 चीज करो मेरे भाई, हमारे यहाँ कहते थे 4 फुट।
0: प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कल प्रदेश के कलेक्टर्स को शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकरण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सुशासन के लिए CM हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने और हर विद्यार्थी की अपार ID बनाने को कहा। बैठक में शिशु मातृ मृत्यु दर को कम करने, सभी जिलों में पशु आश्रय स्थल विकसित करने और PNG कनेक्शन के कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के बदरवास में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की 8 कंपनियों ने भाग लिया। इस मेले में 159 आकांक्षी युवाओं का प्रारंभिक चयन कर उन्हें मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए गए। खंडवा के शासकीय ITI में 2 जुलाई को रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिस मेले के विभिन्न निजी कंपनियां करीब 200 पदों पर भर्ती करेगी। इसमें 18 से 35 वर्ष आयु के 5वीं से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवा भाग ले सकेंगे। आगर मालवा में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित 4 दिवसीय विकासखंड स्तरीय शिविरों में वयोश्री योजना के 99 वरिष्ठ जनों और ADP योजना के 63 दिव्यांगजनों को चिन्हांकित किया गया है। अशोकनगर में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर योजना के तहत एथलेटिक्स कोच की नियुक्ति की गई है। इसके अंतर्गत विभिन्न विधाओं में रुचि रखने वाले और आर्मी व पुलिस भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। कटनी जिले में स्कूल चले हम अभियान के तहत शाला प्रारंभ उत्सव के दूसरे चरण में शासकीय स्कूल दोबारा खुल गए हैं। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के 100 से अधिक अधिकारियों ने स्कूल में प्रेरक बनकर बच्चों का मार्गदर्शन दिया। झाबुआ कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष SN मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक कल संपन्न हुई। बैठक में जनता की सुविधा के लिए भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक सीमाओं आदि पर चर्चा की गई। डिंडोरी जिले के महदवानी में जन अभियान परिषद द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत दंदना नदी तट पर स्वच्छता श्रमदान किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FM बैंड 100.2 MHz पर आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है। समय हुआ है गांधी चर्चा का, धर्म निरीक्षण। वाचक स्वर है श्री शिवेंद्र श्रीवास्तव के।

0: गांधी चर्चा में आइए पहले सुने गांधी जी की आत्मकथा के अंश।
1: इसी समय एक दूसरे ईसाई कुटुंब के साथ मेरा संबंध जुड़ा। उसकी इच्छा से मैं हर रविवार को वेस्लियन गिरजे में जाया करता था। अक्सर हर रविवार की शाम मुझे उनके घर भोजन भी करना पड़ता था। वेस्लियन गिरजे का मुझ पर कोई बहुत अच्छा असर नहीं पड़ा। वहां जो प्रवचन होते थे वे मुझे शुष्क जान पड़े। प्रेक्षकों में भक्ति भाव के दर्शन नहीं हुए। यह 11 बजे का समाज मुझे भक्तों का नहीं बल्कि कुछ दिल बहलाने और कुछ रिवाज पालने के लिए आए हुए संसारी जीवों का जान पड़ा। कभी कभी इस सभा में मुझे बरबस नींद के झोंके आ जाते। इससे मैं शर्माता पर अपने आसपास भी किसी को अगर ऊंघते देखता तो इससे मेरी शर्म थोड़ी कम हो जाती। पर अपनी यह स्थिति मुझे अच्छी नहीं जान पड़ी। आखिर मैंने इस गिरजे में जाना छोड़ दिया। मैं जिस परिवार में हर रविवार को जाता था कहना होगा कि वहां से तो मुझे छुट्टी ही मिल गई। घर की मालकिन भोली भली लेकिन संकुचित मन की मालूम हुई। हर बार उनके साथ कुछ न कुछ धर्म चर्चा तो होती ही रहती थी। उन दिनों मैं घर पर लाइट ऑफ एशिया पढ़ रहा था। एक दिन हम ईसा और बुद्ध के जीवन की तुलना करने लगे। मैंने कहा, गौतम की दया को देखिए, वह मनुष्य जाति को लांघकर दूसरे प्राणियों तक पहुंच गई थी। उनके कंधे पर खेलते हुए मेमने का चित्र आंखों के सामने आते ही क्या आपका हृदय प्रेम से नहीं उमड़ पड़ता? प्राणी मात्र के प्रति ऐसा प्रेम मैं ईसा के चरित्र में नहीं देख सका। उस बहन का दिल बहुत दुखा। मैं समझ गया।

0: की स्तुति में सम्मिलित हो गया। पर माता, वह बेचारी दुखी हुई। मैं चेता चुप्पी साथ गया। मैंने चर्चा का विषय बदल दिया। दूसरे हफ्ते सावधान रहकर मैं उनके यहां गया तो सही, पर मेरे पांव भारी हो गए थे। मुझे यह न सूझा कि मैं खुद ही वहां जाना बंद कर दूं, और न ही ऐसा करने का कोई उचित कारण जान पड़ा। पर उस भली बहन ने मेरी कठिनाई दूर कर दी। वे बोली, मिस्टर गांधी, आप बुरा ना मानिएगा, पर मुझे आपसे कहना चाहिए कि मेरे बालक पर आपकी सोहबत का बुरा असर होने लगा है। अब वह रोज मांस खाने में आनाकानी करता है और आपकी उस चर्चा की याद दिलाकर फल मांगता है। मुझसे यह सब न निप सकेगा। मेरा बच्चा मांसाहार छोड़ने से बीमार चाहे न पड़े, पर कमजोर तो हो ही जाएगा, और मैं इसे कैसे सह सकती हूँ। आप जो चर्चा करते हैं वह हम सयानों के बीच तो शोभा दे सकती है, पर बालकों पर तो उनका बुरा ही असर होगा ना। मिसेज, मुझे दुख है। माता के नाते मैं आपकी भावना को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मेरे भी बच्चे हैं। इस आपत्ति का अंत सरलता से हो सकता है। मेरे बोलने का जो असर होगा उसकी अपेक्षा मैं जो खाता हूँ या नहीं खाता हूँ उसे देखने का असर बालक पर बहुत अधिक होगा। इसलिए अच्छा रास्ता तो यह है कि अब से आगे मैं रविवार को आपके यहाँ न आया करूँ। इससे हमारी मित्रता में कोई बाधा ना आएगी। बहन ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, यही ठीक रहेगा। मैं आपका आभार मानती हूँ।
1: गांधी जी की आत्मकथा के इस अंश के बाद आइए सुनते हैं समूह स्वर में ये भक्ति रचना।
2: उस नाम के बाजे

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा धर्म निरीक्षण, वाचक स्वर थे श्री शिवेंद्र श्रीवास्तव के। आकाशवाणी का ये शुभ्री केंद्र है FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के

मिलन इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में आनंद बख्शी की रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। लीजिए श्रोताओं सुनिए ही रांझा फिल्म का ये

हीर रांझा। इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। कैफी आज़मी ने इस गीत को लिखा था और मदन मोहन का संगीत था। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। प्रातः के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार।

सूचना परक दैनिक कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत वंदन अभिनंदन करती है आपकी रेडियो सखी विनीता। इस सुविचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों ना हों, रास्ते पैरों के नीचे होते हैं, इसलिए मेहनती बनिए और निडर बनिए। प्रतिदिन अपने आप को आईने में देखिए और कहिए जो होगा अच्छा होगा और जिंदगी की हर जंग हम जीत जाएंगे। जीवन में अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसको अपने अंदर खुशी और स्पष्टता के उस क्षण तक लेकर आए और उस क्षण में लिया गया वह निर्णय जो आप लेना चाहते हैं उस पर दृढ़ता के साथ तैयार रहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो डेली ऑन ऑफ होते रहेंगे। एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, एक उद्देश्य निर्धारित कीजिए और मंजिल पाने के लिए उस पर अटल रहिए। फिर कोई नहीं जो आपको उसे प्राप्त करने से वंचित रख सकेगा। आप प्रतिदिन अपने विचार और भावनाओं को मत बदलिए। जो ऐसा करते हैं वो दिशा बदलते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं और फिर वह आपको खोए हुए अंतहीन दिशा की तरफ ले जाके खड़ा कर देता है। इसीलिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सजग रहिए और अनुशासन में रहिए और साथ ही साथ उसको प्राप्त करने के लिए निरंतरता बनाए रखिए, तो फिर मंजिल अवश्य ही मिलेगी।

श्रोताओं, आज है मुहर्रम। इस्लामिक नववर्ष का पहला महीना मुहर्रम और इसका 10वां दिन मुस्लिम समुदाय के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 26 जून को वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण दिवस माने जाते हैं, जिसमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रमुख है। यह दिन लोगों को नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए जागरूक करता है। यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय यह दिवस यातना और अमानवीय व्यवहार के शिकार लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और उसका समर्थन करने के लिए भी मनाया जाता है। आज है राष्ट्रीय क्षमा दिवस भी। गलतियों को भुलाकर रिश्तों को सुधारने और क्षमा मांगने देने के लिए यह समर्पित रहता है। संयुक्त राष्ट्र का आज के दिन ही घोषणा पत्र जारी किया गया था। इसके अलावा आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में 3 बीघा गलियारे को 999 वर्षों के लिए पट्टे पर बांग्लादेश को सौंपा गया था। वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा बांग्लादेश को टेस्ट खेलने का दर्जा भी आज ही के दिन मिला था। इसलिए श्रोताओं, आज का दिन कई रीजन से, कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। अब श्रोताओं, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी में संचालित क्लस्टर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन तिलहन के अंतर्गत खरीफ 2026 कार्यक्रम के तहत मूंगफली फसल की उन्नत खेती पर आधारित प्रशिक्षण सह संगोष्ठी का आयोजन गत दिवस केंद्र के प्रमुख डॉक्टर पुनीत कुमार के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें जिले के मूंगफली उत्पादक क्षेत्रों मुख्य रूप से खनियादाना, पिछोर एवं करेरा विकासखंड के लगभग 80 कृषकों एवं कृषक महिलाओं ने सहभागिता की। इस प्रशिक्षण में जिले के मूंगफली उत्पादक कृषकों को मूंगफली खेती की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार आज उत्कृष्ट विद्यालय बदरवास और श्री कृष्ण महाविद्यालय बदरवास में इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी द्वारा वायुसेना में अग्निवीर पदों की भर्ती संबंधी जानकारी छात्रों को उपलब्ध कराई गई। गुरुवार को एयरमैन सिलेक्शन सेंटर भोपाल से आए हुए वायुसेना के 2 अधिकारियों ने बताया कि आगामी 6 जुलाई से 26 जुलाई 2026 तक विद्यार्थी अग्निवीर वायु पद के लिए www.agnivirvayu.cdac.in पर जाकर वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए विद्यार्थी 50% अंकों के साथ 12वीं पास एवं 17.5 साल से 22 साल तक की उम्र, न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और वह अविवाहित पुरुष या महिला उम्मीदवार हो सकती है। विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों ने काफी उत्साह के साथ ये जानकारी प्राप्त की और सेना में भर्ती होने के प्रति उनका उत्साह भी देखने को मिला। PM श्री केंद्रीय विद्यालय भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस करेरा ने शैक्षणिक गुणवत्ता, स्वच्छता एवं हरित परिसर के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विद्यालय का चयन SHB

BR 2025 के अंतर्गत देश भर के चुनिंदा केंद्रीय विद्यालयों में किया गया है। विशेष बात यह है कि पूरे देश से केवल 10 केंद्रीय विद्यालयों को इस प्रतिष्ठित श्रेणी में स्थान मिला है, जिनमें करेरा स्थित PM श्री केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है। विद्यालय की यह उपलब्धि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वस्थ एवं पर्यावरण अनुकूल परिसर के विकास तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों का परिणाम है। यह सम्मान न केवल करेरा क्षेत्र बल्कि पूरे शिवपुरी जिले के लिए गौरव का विषय है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी गुप्ता जी ने बताया कि जिले की महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित सिलरा के संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची को अंतिम रूप देने के लिए उप अंकेक्षक श्री चमन सिंह को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील प्राप्त करने एवं अपील का निर्धारित अवधि में निराकरण करने हेतु उपायुक्त सहकारिता एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रोताओं, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशन में युवा संगम कार्यक्रम के तहत एक ही छत के नीचे युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हर माह निर्धारित दिवस को रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेला आयोजन किया गया है। इस क्रम में गुरुवार को श्री कृष्ण महाविद्यालय परिसर बदरवास में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिला रोजगार अधिकारी PS मीना ने बताया कि युवा संगम कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की 8 कंपनियों द्वारा भाग लिया गया, जिसमें 264 युवा युवतियों द्वारा पंजीयन कराया गया। इस दौरान 159 आकांक्षी युवाओं का प्रारंभिक चयन हुआ और उन्हें मौके पर ही ऑफर लेटर भी प्रदान किए गए। मुहर्रम पर्व के अवसर पर आयोजित होने वाले ताजियों के चल समारोह एवं विसर्जन कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक सुव्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने शिवपुरी जिले में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी निर्धारित की है। श्रोताओं, अब चलते हैं मौसम की जानकारी की तरफ। आज का अधिकतम तापमान रहेगा 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से और आर्द्रता 31%। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति।

अभी आप सुन रहे थे सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवप्री। आकाशवाणी का यह शिवप्री केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

मुख्य समाचार। डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिमी एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
7: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
3: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
8: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर भव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
9: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई NRC की जरूरत, लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं। एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि केदान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में शैलेंद्र की रचना थी, एस डी बर्मन का संगीत था। ये गीत लिया था हमने गाइड फिल्म से। श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर गीत और भी सुनवाएंगे संतराल के बाद।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
3: बन गया बजट?
4: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया, जाओ भाई।
5: आरबीआई कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: स्वागत एक बार फिर आपका इस कार्यक्रम में, फरमाइशी फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। अगला फरमाइशी खत हमारे पास है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन का। सिद्ध विहार कॉलोनी से रवि जैन, पर्व जैन, अवनी जैन, कोको जैन का। आपकी फरमाइश पर सुनवा रहे हैं ये

हसीना मान जाएगी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में अख्तर रोमानी के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। अगला फरमाइशी खत हमारे पास आया है लेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से। नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, परी खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, देविका कुमारी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी और खुशी वाणी का आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे जब जब फूल खिले, फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आनंद बख्शी की रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। फरमाइशी खत हमारे पास आया है गांधी चौक रोपट पंजाब से हरदेव मीका, जलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक का। आपकी फरमाइश पर लीजिए सुनिए ये गीत।

लता मंगेशकर, मुकेश, महेंद्र कपूर की आवाज़ों में संगम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शैलेंद्र की रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत था। श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। अगला फरमाइशी खत हमारे पास आया है वन्ना नगर एयरपोर्ट रोड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से। पूजा, बबीता, शोभा, रेखा रघुवंशी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, परी, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक, नारायण, भाऊ खर्चे, आप सभी की फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। ये गीत लिखा था प्रेम ने और संगीत तैयार किया था रवि ने। एक फूल दो माले फिल्म से लिया हुआ ये गीत। अगला फरमाइशी खत हमारे पास आया है सकतपुर रोड जिला गुना पुरानी छावनी से। पसंद करने वाले हमारे श्रोतागण हैं कमल सिंह कुशवाहा, राजकुमार कुशवाहा, गोलू कृष्णा, शिवा, वैशाबाई, पूनमबाई, सुमन, निकिता और मोहनी कुशवाहा का। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं।

0: सरस्वती चंद्र। इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। इंदी बरगे बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश फिल्म संगीत।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवप्रिय केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। सुबह के 9 बजने को है प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में हम आपको ठाकुर लाल राठौर और उर्मिला पांडे के गाए हुए कुछ लोकगीत सुनवाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उर्मिला पांडे के गाए हुए इस लोकगीत

लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए श्रोताओं सुनिए ठाकुर लाल राठौर का गाया हुआ ये लोक।

0: कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले?
1: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और?
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया, जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्र से। लीजिए श्रोताओं, सुनिए उर्मिला पांडे का गाया हुआ ये लोकगीत।

0: सावरी सूरतिया है बारी उमरिया मैया तेरे लाला।
1: ठाकुर लाल राठौर के गाए हुए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके फरमाइश। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती है आपकी रेडियो सखी विनीता। फरमाइशी नाम इस प्रकार है: कमल सिंह कुशवाहा, राजकुमार कुशवाहा, गोलू, कृष्णा, शिवा, वर्षावाई, पूनमवाई, सुमन, निकिता, मोहनी कुशवाहा। ये खत हमारे पास आया है पुरानी छावनी सकतपुर रोड जिला गुना से। आपकी फरमाइश पर लीजिए सुनिए।

हरियाली और रास्ता, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था और शंकर जयकिशन ने संगीत तैयार किया था। फरमाइशी फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्र से। अगला फरमाइशी खत हमारे पास आया है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। पसंद करने वाले श्रोता हैं अभिजीत, श्रीमती सरिता, प्रिंस, एकांश। बहादुर नागपुर से एक और खत है श्रीमती वैशाली, शैलेश, श्वेता, सुमित, कुमारी, ध्वनि का। आइए आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए

हाथ की सफाई। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, गुलशन बाबरा के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अगला फरमाइशी खत हमारे पास आया है रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से कुमारी देविका चौधरी, कविता, संजय, मनीष, ब्रोनो, गणेश, कार्तिक, संजना, परी, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी का। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं आपको।

सच्चा झूठा इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। इंदीवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। फरमाइशी फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। अगला फरमाइशी खत हमारे पास आया है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल राजदीप राजेश राशि राजेश श्रीमती शीतल राजेश का। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं आपको।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे। लोफर फिल्म का ये गीत आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। फरमाइशी फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवप्रिय केंद्र से। अगला फरमाइशी खत हमारे पास आया है गरीब नवाज कॉलोनी वन्ना नगर इंदौर से। रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश काटी खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे का आप सभी की फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

0: श्री 420। इस फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था और शंकर जयकिशन ने संगीत तैयार किया था।
1: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
2: श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजने को है, थोड़ी ही देर में जिले की चिट्ठी भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी। कृपया प्रतीक्षा।

0: सिंगरौली जिले की चिट्ठी आलेख है अमित द्विवेदी का, वाचन स्वर है शरद बाघेला के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिंगरौली जिले की चिट्ठी, आलेख अमित द्विवेदी, वाचन स्वर शरद बाघेला। बीता हुआ महीना सिंगरौली जिले से विकास कार्यों, प्रशासनिक सतर्कता, खेल जगत की उपलब्धियों और सामुदायिक कल्याण की दृष्टि से मिलाजुला रहा। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सिंगरौली प्रवास के दौरान जिले के लिए विकास का बड़ा पिटारा खोला गया। मुख्यमंत्री ने यहां कुल 552 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जो जिले के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की 24 लाख महिलाओं के खातों में 3 महीनों की कुल 115 करोड़ रुपए की अनुदान राशि ट्रांसफर की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत भी 33.71 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 202.28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजी गई। इस प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय छात्राओं से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधा संवाद भी किया। जिले में खेल संस्कृति को नई दिशा देने के लिए एक अत्याधुनिक खेल परिसर की स्थापना की जा रही है, जो युवाओं को बेहतर सुविधाएं देकर उनकी प्रतिभा को निखारने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही जिले की सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करने वाला सिंगरौली महोत्सव और नगर गौरव दिवस 23 मई से 25 मई तक आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ जिले की प्रभारी मंत्री संपत्तिया उइके और राज्य मंत्री राधा सिंह भी मौजूद रहे।

0: आगामी मौसम को देखते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर गौरव बैनल की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक शियाज के एम की उपस्थिति में आपदा प्रबंधन कार्य योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी एसडीएम को बाढ़ प्रभावित गांवों और संवेदनशील नदी नालों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि यदि नदी नालों के बहाव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण है तो सर्वे कर उसे तत्काल मुक्त कराया जाए। साथ ही बाण सागर बांध और सोन नदी में जल स्तर बढ़ने से प्रभावित होने वाले संभावित गांवों का निरंतर भौतिक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए। खेल जगत की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 12वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2026 में सिंगरौली के नन्हे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण 3 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 10 मेडल जीतकर नया इतिहास रचा है। कलेक्टर ने इन प्रतिभावान खिलाड़ियों की सराहना करते हुए मुख्य कोच गणेश सिंह को एक योजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिसके तहत जिले के शासकीय स्कूलों और कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों में बच्चों विशेषकर बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए नियमित कराटे प्रशिक्षण दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर द्वारा आम का पौधा रोपा गया। उन्होंने अधिकारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि केवल पौधा लगाना काफी नहीं है, बल्कि उसका एक बच्चे की तरह संरक्षण करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जिले के सभी शासकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाने की भी बात कही। दूसरी ओर दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने मुखबधिर दिव्यांगजनों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि उनकी रुचि के अनुसार CSR मद के माध्यम से रोजगार के अवसर और RCT के माध्यम से ब्यूटी पार्लर व टेलरिंग जैसे प्रशिक्षण दिए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बंद पड़े दिव्यांग विद्यालय को फिर से संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जहां BEd प्रशिक्षित स्थानीय शिक्षकों द्वारा बच्चों को संवेदनशील वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। सिंगरौली पुलिस की त्वरित कार्रवाई और साइबर सेल की सतर्कता से साइबर ठगी का शिकार हुए शांतिनगर बैड़न निवासी राहुल कुमार सोनी को उनके खाते से धोखाधड़ी कर निकाले गए 51,000 रुपए वापस करा दिए गए हैं। पुलिस विभाग की भर्ती प्रक्रिया के तहत जिले के 198 नव आरक्षक मिले हैं, जिनमें से 28 नव नियुक्त आरक्षकों को SP शियाज के एम ने स्वयं नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार SP द्वारा 2 चौकी प्रभारियों समेत कुल 89 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है, जो पिछले 4 वर्षों से एक ही थाने या शाखा में पदस्थ थे। स्वास्थ्य क्षेत्र में NTPC विंध्य चिकित्सालय द्वारा सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 136 लाभार्थियों को विशेषज्ञों द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। अंत में नोनिहालों के विकास के लिए चल रहे आरोहण समर कैंप 2026 में बैडमिंटन, टेबल टेनिस और डांस गतिविधियों में लगभग 180 बच्चे उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं, जिन्हें अनुभवी कोच द्वारा मार्गदर्शन और पोषण युक्त स्नैक्स प्रदान किए जा रहे हैं। निष्कर्षता सिंगरौली जिला प्रशासन, पुलिस और जनप्रतिनिधि मिलकर स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सुरक्षा और पर्यावरण के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सिंगरौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अब रहते सिंगरौली जिले की चिट्ठी, आलेख था अमित द्विवेदी का और वाचन स्वर थे शरद बाघेला के।
2: FM बैंड 100.2 MHz पर आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको मानसी कणेकर के गाए हुए कुछ गैर फिल्मी गीत सुनवाएंगे।

आप सुन रहे थे मानसी कणेकर की गई हुई ये गजल। सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्र से। लीजिए श्रोताओं सुनिए।

मानसी कनेकर के गाए हुए इस गज़ल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है। एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत करती है आपकी रेडियो सखी विनीता। लीजिए श्रोताओं, सुनिए कार्यक्रम की शुरुआत में ये गीत।

हम हैं राही प्यार के। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ों में गीत लिखा था समी ने और संगीत तैयार किया था नदीम श्रवण ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवप्री केंद्र से। लीजिए श्रोताओं सुनिए

ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

दिलवाले। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू की आवाज में। गीत को लिखा था समीर ने और संगीत तैयार किया था नदीम श्रवण ने। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए श्रोताओं सुनिए।

आशिकी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। गीत लिखा था समीर ने और संगीत तैयार किया था नदीम श्रवण ने। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए श्रोताओं सुनिए ये।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना रंग फिल्म से लिया हुआ ये गीत। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये क्षेत्रीय केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। सुबह के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। तब तक

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर हाजिर हैं हम एक बार फिर। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तवर। कार्यक्रम है आपकी फरमाइशों का और आप हमें फोन करके अपनी फरमाइशी गीत सुन सकते हैं। फोन नंबर है 07552660902। इसमें 0755 हमारा एसटीडी कोड है, तो आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार है। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं रोजाना सुबह 10:30 से 11 बजे तक। नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
2: नमस्ते मैडम
1: जी, आपका नाम जान सकती हूँ?
2: मैं अनिला भी मंसूरी बोल रही हूँ, पालदाना का इंदौर से। मैडम कैसे आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, कैसी हैं आप?
2: अच्छी हूँ मैडम, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बढ़िया हूँ। और क्या चल रहा है?
2: बस पड़े पड़े समझा रही थी मैडम आप।
1: अरे वाह,
2: कर रही थी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो कार्यक्रम है आपकी पसंद का, कौन सा गाना आज सुनना चाहेंगे?
2: ये फूल दो माली का सुनवा दीजिए, पर्दा हटा दो, मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले कोई घर नहीं है।
1: तो आपका गीत हमें मिल गया है कार्यक्रम में फोन करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू मैडम।
1: तो लीजिए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म एक फूल दो माली का ये गीत।
3: ये

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है
1: हेलो
0: जी। नमस्कार, किन से बात हो रही है?
1: जी। नमस्ते मैडम,
0: आपका नाम जान सकते हैं?
1: जगत सिंह बोल रहा मैडम। जगत सिंह
0: जगत सिंह जी, कहाँ से बात कर रहे हैं जगत सिंह जी?
1: जी, मैं ग्राम पिपलिया वराई तहसील बेगौन जिला राजस्थान।
0: कैसे हैं आप?
1: जी मैडम जी, अच्छे हैं। खाना खा लो
0: खाना खा रहे हैं?
1: जी।
0: अरे वाह, तो गीत कौन सा सुनेंगे खाना खाते हुए?
1: जी मैडम, वो सुना दो। बरसात हो रही है तो बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। बरसात ही फिल्म को है जहाँ तक मैडम जी, सही
0: बरसात
1: पता तो नहीं आ रहा हुआ, खबर नहीं आ रही फिल्म का।
0: जी। जगत सिंह जी, गीत आपका मिल गया है, कुमार सानू की आवाज में है, बस आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम में आप शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी नमस्ते।

0: ठीक है दीदी, बहुत बढ़िया है। बड़ी मुश्किल में लगता है फोन अब
1: हाँ, थोड़ा समय लग
0: जी।
1: जाता
0: फिल्म
1: है, सारे श्रोता जो हैं कोशिश कर रहे होते हैं तो थोड़ा।
0: का नाम है
1: जी
0: हेलो,
1: हाँ बताएं।
0: डोली सजना साथ निभाना।
1: अच्छा, डोली फिल्म का सजना साथ निभाना
0: जी
1: गीत सुनना चाहते हैं।
0: जी।
1: बिल्कुल आपको सुनवा देते हैं, मोहम्मद रफी आशा भोसले जी की आवाज में है, अब आएगा आपके रेडियो सेट पर।
0: नमस्ते
1: जी,
0: दीदी।
1: कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आपको सुनवाई देते हैं ये गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत
1: हेलो
0: सुने। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: जी नमस्ते मैम, मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ। फिलहाल
0: नरेश प्रजापति जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: इंदौर से।
1: मेरा गांव है रामनगर बमोरी गुना मध्य प्रदेश में।
0: अच्छा,
1: जी।
0: और फिलहाल आप इंदौर में हैं।
1: हाँ फिलहाल इंदौर में हूँ मैं, यहाँ लगभग 2011 से हूँ।
0: क्या करते हैं आप?
1: मैं एम्प्लॉय हूँ मैम, और ट्रक और बसेस बनते हैं यहाँ, मैन्युफैक्चर होता है।
0: अच्छा, वहाँ आप काम करते हैं।
1: जी।
0: ठीक है जी, तो कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे आज?
1: देखिए मौसम बरसात का चल रहा है, तो बरसात से रिलेटेड भी आज फरमाइश लेकर आया हूँ मैं। उसका
0: हाँ बताएं।
1: नाम रहेगा आई मिलन की रात,
0: आई मिलन की रात।
1: सावन का महीना आया है कटा। वैसे सावन का महीना तो भी आया नहीं, लेकिन मौसम बरसात का आ गया।
0: तो आई मिलन की रात फिल्म से आपने कहा कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं? सावन का महीना आया है।
1: हाँ जी आया है कटा से।
0: अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में ये गीत हमारे पास उपलब्ध है, तो बस आपको सुनवाई देते हैं ये गीत। कार्यक्रम में आपने प्रतिभागिता की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी।
1: जी थैंक यू मैम।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: परम आदरणीय दीदी शारदा सप्रेम प्यार से नमस्कार
0: नमस्कार, किन से बात हो रही है?
1: जी। मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ दीदी।

0: अच्छा जी, क्या करते हैं आप वहाँ पर?
1: मेरे बच्चे जॉब में हैं और वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उन्हीं के साथ में मैं रहता हूँ। और मैं विद्युत विभाग में सेवानिवृत्त हो चुका हूँ
0: अच्छा,
1: और घर में रहते हुए सेवानिवृत्ति का आनंद ले रहा हूँ और आकाशवाणी से जुड़ा रहता हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो गीत कौन सा आज सुनना चाहते हैं आप?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु।

0: बहुत ही सुंदर प्यारा तुला गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ।
1: शारदा प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में प्रतिभागिता करने के लिए। और अब आपको सुनवाई देते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म जीवन मृत्यु से।

0: कार्यक्रम फोन करेंगी सुने।
1: जी नमस्कार। हेलो,
0: नमस्ते
1: आकाशवाणी भोपाल।
0: जी, आकाशवाणी भोपाल से बात कर रहे हैं, आप कौन बात कर रहे हैं?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है जी, प्रभु की कृपा है।
0: क्या करते हैं मनोहर जी?
1: ये मेरी कपड़े की शॉप है और मैं यहीं पे अपना संगीत से जुड़ा रहता हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है। क्या चल रहा है, कैसा मौसम है?
1: मौसम कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्मी हो जाती है। इस समय धूप खिला हुआ है, उमस भरी गर्मी है।
0: तो गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आज फिर?
1: ये सुनना चाहते हैं जी, फिल्म का नाम है रॉकी, क्या यही प्यार है। ये हमारे दोस्त हैं हेमंत, उनके पसंद।
0: रॉकी फिल्म का गीत आप अपने दोस्त के लिए सुनवाना चाहते हैं? हेलो मनोहर जी, आपका आवाज़ आ रही है? जी, शायद तकनीकी खराबी के कारण कॉल कट गया है। मनोहर जी कोई बात नहीं, गीत आपका हमारे पास उपलब्ध है, अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म रॉकी से।

0: नमस्कार कार्यक्रम फोन करें गीत सुने
1: नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार
0: जी। किन से बात हो रही है
1: जी? मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद पाल जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन आपका शुभ नाम तो बताइए, कितनी प्यारी आवाज आप।
0: जी मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: अच्छा अच्छा रक्षा जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार, तो कैसे हैं आप, क्या चल रहा है?
1: बिल्कुल रक्षा जी, बस बैठे हैं, दुकानदारी करते हैं, तो दुकानी पे बैठे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं आपका।
0: किस चीज की दुकान है आपकी?
1: सारी दुकान है, हर चीज की दुकान है, जितना सामान मिलता है किराना स्टोर का सब सामान मिलता मिलेगा।
0: अच्छा, किराने का सामान रखते हैं, ठीक है। फूलचंद जी, तो कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं आप?
1: जी बिल्कुल रक्षा जी, अभी जो है हमारे यहाँ छतरपुर जिले में बादल बहुत छाए हुए हैं, काले बादल है, तो ऐसे में बार बार मन करता है कि ऐसे ही एक गीत सुन लूं।
0: जी
1: फिल्म का नाम है गजब और गीत के बोल है

0: होगा। बहुत प्यारा गाना है, लता जी की आवाज में है।
1: ठीक है जी, फूलचंद जी आपको ये गीत सुनवाते हैं आपकी पसंद का।
0: बहुत बहुत नमस्कार। और ये गीत जो है प्रेमदास बाबा जी और मांगीलाल चंदेल दिनकर सिंह और जो है आपको डेडिकेट रहेगा। और पूनम जी है कानपुर से
1: जी,
0: तो आप सभी श्रोताओं को जो है हमारे जितने मित्र हैं सभी को डेडिकेट रहेगा।
1: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद फूलचंद जी। अब आपको सुनवाई देते हैं गीत आपके पसंद का।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्ते। कार्यक्रम में फोन किया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: मैडम नमस्ते, मैं सुमित बात कर रहा हूँ MP धार से।
0: कैसे हैं आप?
1: जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताइए क्या हाल चाल है।
0: हम भी बढ़िया हैं। क्या चल रहा है?
1: जी अभी बस कुछ देर बाद ऑफिस जाने की तैयारी है। मेरा ऑफिस दिन में होता है 1 से शाम 7 बजे के बीच।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: मैं म्यूजिक लेक्चरर हूँ।
0: अरे वाह, अरे वाह।
1: अमेरिकन से बात हो रही है?
0: मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: रक्षा जी,
0: जी
1: अच्छा चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं कार्यक्रम में?
1: आप मुझे सुनवा दीजिए, चूंकि अब बरसात का मौसम कहीं ना कहीं दस्तक दे रहा है,
0: जी
1: तो आप मुझे सुनाइएगा बरखा बहार। आशा जी की एक रचना है, ये थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गीत है ये।
0: थोड़ी सी बेवफाई।
1: हाँ ऐसा बरखा बहार, देखिए अगर मिल जाता है तो, नहीं फिर मैं दूसरा बताता हूँ।
0: ये बरसे फुहार
1: बरसे फुहार, सॉरी,
0: है ना?
1: हाँ
0: जी
1: हाँ यही वाला है।
0: जी, ये गीत तो हमारे पास है उपलब्ध।
1: और बहुत अच्छा गीत है, आप सुनिएगा इसको, बहुत अच्छा गीत है ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुमित जी आपको ये गीत सुनवाएंगे आशा भोसले की आवाज में, और कार्यक्रम में आपने प्रतिभागिता की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी आपको बहुत बहुत नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

पेशे इस घंटे की खास खबरें। आज मुहर्रम है, ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि उनका त्याग, साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्य का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर आज कई जगहों पर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से नशा मुक्ति क्विज प्रारंभ कर रहा है, जो कि 15 जुलाई तक चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति बच्चों और युवाओं को जागरूक करने के लिए पाठ्यक्रम में इस विषय को सम्मिलित किया जाएगा। प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत 13 जिलों में जिन सिंचाई परियोजनाओं के कार्य पूर्ण हो गए हैं, इससे 6 माह में 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी की चुनौती देने की विंडो खोल दी गई है। वेबसाइट पर जाकर विद्यार्थी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जर्मनी में चल रही ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत कुल 25 पदक प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर है और भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। यह मैच शाम 6 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सरिता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम लेकर आए हैं आपकी पसंद पर बेहद खूबसूरत गीत जिसे आपने ही चुना है। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम को आपकी पसंद यानी फिल्म एक दूजे के लिए से। और ये गीत गाया है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इस खूबसूरत गीत को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने इसी गीत को सुना चाहा था। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और इनके पूरे राजावत परिवार ने। तो आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म हीरो से। स्वर हैं रेशमा के। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतमय बनाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, इस गीत की फरमाइश हम तक लिख भेजी थी जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास बंटा बेले जिला सागर से लक्ष्मण रेखवार, श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली वैष्णवी, अनरत रेखवार, हल्ले लल्लू और ऋषि रेखवार ने इसी गीत को पसंद किया था। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। अब हम आपको सुनाते हैं फिल्म सनम बेवफा का ये गीत और स्वर हैं विपिन सचदेवा के। ये गीत लिखा है सावन कुमार ने और संगीत है महेश किशोर का। इस गीत को सुनना चाहे कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने इसी गीत को पसंद किया है। शाहनगर यवतमाल से राहुल मनबर, सरला मनबर, विशाल तथा चेतन मनबर ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

आपकी फरमाइश में अगला और अंतिम गीत पसंद करने वाले श्रोता हैं सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। इसी गीत को पसंद किया है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप साजेश और राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म दिल का ये गीत। गीत लिखा है समीर ने, स्वर हैं उदित नारायण और अनुराधा पुडवाल के।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।
2: दम्भ का स्तंभ खंधम धम त्रिशूल गाड़ के, प्रलयंकारी गति से भिन्न न खेल गगन फाड़ के। ज्वाल से बवाल से चल पड़े दहाड़ के भारतीय सेना।

0: याद है। भारतीय सेना
1: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
2: फौज जो

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक भुवन मोहिनी का 8वां भाग।

पिछली कड़ियों में आपने जाना कि देश निकाले की सजा प्राप्त नर्तकी भुवन मोहिनी को ढूंढते हुए राजकुमार विजयश्रवा इंद्रप्रस्थ पहुंचा, जहां भुवन मोहिनी राजा आदित्य सेन के आश्रय में थी। राजा आदित्य सेन अपनी पुत्री का विवाह विजयश्रवा से कराना चाहते थे, परंतु राजकुमारी के प्रति आकर्षित होने के बावजूद विजयश्रवा भुवन मोहिनी से ही प्रेम करता था। राजकुमार ने चंद्रहासिनी से साफ साफ कह दिया कि यदि वो उसके मन से भुवन मोहिनी के स्थान को छुड़वाना चाहेगी तो बदले में अपने लिए मात्र घृणा प्राप्त करेगी। राजकुमार की शर्त को चंद्रहासिनी ने स्वीकार कर लिया। इंद्रप्रस्थ के मेले में विजयश्रवा के माता पिता भी आए और वहीं उन्होंने अपनी भावी वधू को पसंद भी किया। वहां राजकुमार ने राजमाता को आश्वासन दिया कि वो भारतीय सीमा पर आक्रमण करने वाले हूणों को पराजित करने के बाद चंद्रहासिनी से विवाह करेगा। इंद्रप्रस्थ में राजाओं की सभा में विजयश्रवा को भारतीय सेना का सेनापति बनाया गया और उसने सुप्तप्राय लोगों में नई चेतना भर दी। उसने ये भी कहा कि वो आजीवन विवाह नहीं करेगा। वो वापस चलने के लिए भुवन मोहिनी को कहता है, परंतु चंद्रहासिनी भी साथ में आती है। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की आठवीं कड़ी में।

0: दरबार में आज सन्नाटा क्यों है? युवराज विजय शर्मा, आज की कार्यवाही आपको आरंभ करनी है ना?
1: जी सम्राट।
0: तो फिर विलंब क्यों?
1: सम्राट, इस सभा में हूं अधिनायक के दो दूत भी उपस्थित हैं, जो अधिनायक का पत्र लेकर आए हैं। इस पत्र पर त्वरित कार्रवाई होने की आवश्यकता है।
0: पत्र को पढ़ा जाए।
1: आज्ञा सम्राट। इस पत्र में हूं अधिनायक ने लिखा है कि या तो भारतीय सम्राट प्रत्येक सैनिक पदाधिकारी के लिए सर्वश्रेष्ठ सुंदरी प्रदान करे और एकत्रित राजकोष का दो तिहाई धन और राजकीय परिवार की सर्वश्रेष्ठ राजकुमारी जो अनिंद्य सुंदरी हो, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में अपराजिता सिद्ध हुई हो, सैनिक अधिनायक को समर्पित करें और साथ ही पराजय को स्वीकार करते हुए हूणों के सैनिक अधिनायक को प्रतिवर्ष साम्राज्य की आय का आधा भाग प्रदान करते जाए। यदि ऐसा किया गया तभी रक्त सागर को भरने वाला विकराल युद्ध टाला जा सकेगा, अन्यथा भारत देश की भूमि में ऐसा भयंकर युद्ध होगा जिसमें भारतीय परंपरागत वैभव की होली जलाई जाएगी, भारतीय सुंदरियां बलात् लूट ली जाएंगी और सर्वनाश का तांडव देश के कोने कोने में दिखलाई पड़ेगा।
0: ऐसा अपमानजनक पत्र लिखने का दुस्साहस! मन तो करता है कि ऐसे पत्र को लाने वाले दूतों की खाल उतरवा दें, परंतु यह हमारी परंपरा नहीं है। मैं दरबार में उपस्थित सभी सभासदों के चेहरों पर आ रहे भावों को देख रहा हूं। मैं तमतमा रहे युवराज के चेहरे को भी देख रहा हूं। यहां पर साम्राज्ञी और राज परिवार की अन्य महिलाएं भी उपस्थित हैं। मैं उनके भी मनोभावों को भली भांति समझ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि भावी सम्राट विजय शर्मा की क्या राय है।
1: सम्राट, शीघ्र ही युद्ध का बिगुल फूंकने का आदेश दे। इस अपमान भरे पत्र ने हमारे राष्ट्रीय सम्मान को चुनौती दी है। हमारे हृदय शत्रु के रक्त से होली खेलने के लिए उतावले हैं सम्राट। हमारे हाथ उन पामरों के मस्तक काटकर पैरों की ठोकरों से कुचल देंगे।
0: महिलाओं और समस्त सभासदों, मेरे चिरंजीव युवराज ने शत्रु के पत्र के प्रत्येक अक्षर को आप लोगों के समक्ष बड़े साहस पूर्वक पढ़कर सुनाया। आप सब लोगों ने जाना कि संधि की शर्तें भारतीय गौरव परंपरा के विपरीत हैं। दूसरी ओर युद्ध को स्वीकार किया जाए तो महान सर्वनाश को स्वीकार करना पड़ेगा। आज राष्ट्रीय स्थिति यह है कि समस्त देश बौद्ध मतावलंबी और अहिंसा का समर्थक हो चुका है। एक प्रकार से राष्ट्रीय धर्म ने युद्ध का निषेध कर रखा है। अधिकांश भारतीय नरेश अहिंसा धर्म द्वारा दीक्षित हैं, जो संभावना है कि रक्त से सने हुए युद्ध के विपरीत अपना समर्थन करेंगे। शत्रु ने जो दो शर्तें संधि के लिए प्रस्तुत की हैं, वो मुझ जैसे युद्ध प्रिय क्षत्रिय नरेश की विचारधाराओं के सर्वथा विपरीत है। मैं कायरता को स्वीकार करने से कहीं अधिक रक्त सागर में निमग्न होना पसंद करता हूं। मैं अहिंसा का सम्मान करते हुए भी माताओं, बहनों और बेटियों की लज्जा को निर्लज्ज बनकर शत्रु को नहीं समर्पित करना चाहता। भले ही मुझे हिंसक युद्ध द्वारा रक्त सागर को उद्वेलित करना पड़े। वीर प्रसवनी भारत वसुंधरा वीरांगनाओं के अपमान को सहन करने में असमर्थ है। अस्तु, मेरा प्रबल समर्थन युद्ध के पक्ष में है, फिर भी मैं अपना निर्णय नहीं लादना चाहता। समस्त सभासद आपस में निर्णय करके मुझे ये बताएं कि वे संधि चाहते हैं अथवा युद्ध।
2: सम्राट, मैं इस विषय में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं।
0: आज्ञा है अमात्य ऋषभदेव।
2: सम्राट, मैंने इस संबंध में समस्त राजाओं महाराजाओं की सहमत या सहमत जानने का सफल प्रयास किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जैसा आपने कहा, अधिकांश राजा महाराजा अहिंसावादी हैं और वो किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं चाहते। ये राजा महाराजा राष्ट्र को

0: रक्त सागर में निमग्न करने से अधिक श्रेयस्कर हूणों के द्वारा मांग पूरी किए जाने के पक्ष में। उनका कहना है कि हूणों द्वारा मांगे गए धन का जो भाग राजकोष से दिया जा सके दिया जाए, और शेष भाग अधिकांश नरेश मिलकर अपने अपने राजकोष से पूरा कर देंगे। शेष बची कुछ सहस्त्र सुंदरियां जो हूण सैनिक अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली हैं, उन्हें भी प्रत्येक नरेश राज की धन दान के अनुपात से एकत्रित कराकर सम्राट को सौंप देंगे। और सम्राट, व्यापक जनहित और राष्ट्रहित में मुझे समस्त राजाओं महाराजाओं की ओर से ये कहने में संकोच नहीं है कि हूण अधिनायक को सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के रूप में महाराज आदित्य सेन, जो इंद्रप्रस्थ के नरेश हैं, अपनी राजकन्या चंद्रहासिनी का विवाह कर दें। संभवतः चंद्रहासिनी सौंदर्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ भी सिद्ध होगी। इस प्रकार राष्ट्र के अपार जनधन का सर्वनाश रोका जा सकेगा। अन्यथा प्रस्तावित धन दान, कुछ सहस्त्र सुंदरियां और चंद्रहासिनी का विशेष दान उस सर्वनाश का एक साधारण भाग भी न होगा, जो युद्ध की विभीषिका और सर्वनाश के पश्चात राष्ट्र को भोगना पड़ेगा। मुझे मात्र यही कहना था राजन।
1: मातृशक्तिदेव, क्या आप जानते हैं आपने अभी क्या कहा है? आपकी बातें सुनकर यहां उपस्थित दो हूण दूतों के चेहरे खिल उठे हैं, मानो उनकी मनोकामनाएं अब प्रयास ही पूर्ण हो गई हों, और बाकी सभा तो मरघट सदृश बन चुकी है। महाराज आदित्य सेन की सुपुत्री राजकुमारी चंद्रहासिनी, जो इस सभा में अन्य महिलाओं के साथ स्वयं बैठी हैं, के ऊपर क्या प्रभाव हुआ होगा आपके इस प्रस्ताव का, कुछ कल्पना है आपको? मेरे स्वयं के कानों को आपकी बातें पिघले सुवर्ण जैसी प्रतीत हुई हैं। अमात्य, हमारे राजा महाराजाओं की इस कायरतापूर्ण अभिमत से मेरी इन वृद्ध आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। आज हमें ज्ञात हुआ कि हमारा रक्त पानी हो चुका है। पानी?
2: ठहरिए सम्राट,
1: भुवन मोहनी, आज हम लज्जित हैं। हमें सभा में ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं।
2: सम्राट, सभा स्थल के मध्य आकर मैं आपके चरणों में अभिवादन करती हूँ। आपकी पीड़ा मात्र आपकी नहीं है सम्राट, इन सुवर्ण जटित चौकियों पर रखी नग्न तलवारों का औचित्य ही क्या, यदि वो राष्ट्र की आन बान और शान को न बचा सके। सम्राट, यहाँ पर उपस्थित राजपूती शान को यद्यपि अच्छा तो नहीं लगेगा कि एक नर्तकी इसे अपने हाथों में ले, परंतु क्या करूं, विवशता है, क्योंकि ये नर्तकी भी इसी राष्ट्र की कन्या है, इसी राष्ट्र की, जिसकी गौरव गाथा को आज इस सभा में एक निकृष्ट वाणी ने कलंकित करने का प्रयत्न किया। सम्राट, जो व्यक्ति हमारी धरती को कलंकित करे वो मात्र मांस का एक पिंड है, और जो प्राण हमारी मर्यादा को गर्त में गिराने का काम करे वो प्राण निष्प्राण होने के लिए ही उपयुक्त है।

0: आपके श्री चरणों में राष्ट्रद्रोही आमात्य ऋषभदेव का सिर समर्पित है।
1: ये तुमने क्या किया? आमात्य ऋषभदेव का शिरच्छेद कर दिया?
0: पूज्य सम्राट, यदि मैंने राजसभा का अपमान किया है तो सम्राट अपने हाथों मुझे मृत्यु दंड प्रदान करे। मैं विवश थी सम्राट, लुटेरी जातियों के सेनानियों को तुष्ट करने के लिए भारतीय महिलाओं के सतीत्व और नारीत्व का उपहासास्पद निम्नदान एक राष्ट्रीय अपमान था जिसे महामात्य द्वारा प्रस्तावित किया गया। सुनकर मैं अपने को ना रोक सकी। क्या आज राष्ट्र की वीरता सो गई है? कभी सिंहों के साथ प्रणय लीला रचाने वाली भारतीय सिंहनी

कुमारियां असंस्कृत बर्बर नीच और लुटेरे आक्रामकों की विलास पूर्ति का साधन बनेंगी। इससे तो अधिक उपयुक्त ये होगा कि भारतीय सुंदरियों को कहा जाता कि वो अपने सत्यत्व को लुटेरों की वासाग्नि में स्वाहा करने से उपयुक्त चिता की लपटों से आलिंगन करना समझे। भारतीय नारियों का बलिदान सर्वदा अमर रहा है। वो अपनी परंपरागत बलिदानी भावनाओं के लिए एक नहीं सहस्त्र बार अपने तुच्छ शरीर को स्वाहा करने के लिए प्रस्तुत है। किंतु ये कैसा अधापतन लाने वाला नीच प्रस्ताव है कि सिंघनी नारियां कामी कुत्तों और श्रृंगालों की वासना पूर्ति का साधन बने। सम्राट, मैं उपस्थित राजसभा के वीरों से निवेदन करूंगी कि या तो वे समरभूमि में शत्रु से मोर्चा लेने के लिए कटिबद्ध हों, या वे हमारी चूड़ियां धारण कर अंतापुर में जाकर बैठ जाएं। भारतीय नारियां अपनी मर्यादा की रक्षा में स्वयं जुट जाएंगी। महामात्य ने जिस नीच मुख से राजकुमारी चंद्रहासिनी को सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के रूप में हुणों के अधिनायक के साथ प्रणय संबंध स्थापित करने का प्रस्ताव किया था, उसी के दंड स्वरूप उनकी समस्त ज्ञान इंद्रियां उनके तुच्छ शरीर से विलट की जाकर श्रृंगालों की भोज्य वस्तु बनने के लिए राजसभा के चरणों में लौट रही हैं, और मैं अपने किए का प्रतिफल भोगने के लिए तत्पर हूं। किंतु स्मरण रहे सम्राट, चंद्रहासिनी एक देवता की प्रेमार्थी बन चुकी हैं। वो किसी अधम राक्षस की वासना अग्नि के तुष्टि का कभी भी साधन

0: मृत्युदंड उन्हें ही दिया जाता है जो स्वराष्ट्र के सम्मान के प्रति कृतज्ञ हैं। उठो
1: सम्राट।
0: महामात्य ने स्वयं वो दंड प्राप्त कर लिया जो भारतीय वीरांगनाओं और राष्ट्र की मर्यादा को खंडित करने वालों के लिए दिया जाता। मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगा।
2: सैनिकों, होरदूतों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो।
1: मात्र कारागार नहीं, इन्हें भी मृत्यु दंड मिलना चाहिए युवराज।
0: भुवन मोहिनी ठीक कह रही हैं युवराज। हम आदेश देते हैं कि इन दोनों ही होरदूतों को अविलंब मृत्यु दंड दिया जाए ताकि ऐसे घृणित प्रस्तावों को भेजने और ले आने से पहले कोई 100 बार सोचे। हमारी आज्ञा का पालन अविलंब हो।
2: ले जाओ सैनिकों, चलो।
3: सम्राट, मैं राष्ट्र रक्षा के लिए संकल्पित वीरों के भाल को स्वयं कुमकुम का टीका लगाऊंगी।
0: अवश्य साम्राज्ञी।
3: हे माता के वीर सपूतों, मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना है कि राष्ट्रीय सम्मान और देश की वीरांगनाओं की रक्षा का भार तुम लोगों के सबल कंधों पर आ टिका है। भुवन मोहिनी इस गौरवमयी युद्ध की ध्रुव तारा है। हम कर्तव्य भ्रष्ट न हो इस आदर्श को हमें भुवन मोहिनी से ही ग्रहण करना चाहिए। आप सब लोग मृत्युंजय बनकर इस युद्ध में लग जाएं, सफलता आपकी चेरी होगी। यही हमारा सुभाषीर्वाद है।

0: महाराज आदित्य सेन को प्रणाम।
1: आयुष्मान युवराज विजय शर्मा, राजकुमार, हूणों के साथ युद्ध में मैं आपकी इच्छा अनुसार आपके साथ हूं।
0: महाराज, ये आपकी महानता है। यद्यपि आपकी सेना धारा सेना से कई गुना अधिक श्रेष्ठ है, फिर भी आपने हमारा नेतृत्व न केवल स्वीकार किया अपितु उसकी अनुशंसा भी की। महाराज, हमारी सेना चार टुकड़ियों में विभक्त है, पैदल सेना, अश्वारोही, गजारोही और रथारोही।
1: और हमारे पास तलवार, भाला, खाना, तीर, धनुष, परशु, गदा, कुलिश, दंड, चर्म, त्रिशूल और सिरोही आदि अस्त्र शस्त्र पर्याप्त मात्रा में है। राजकुमार, मैंने अपने गुप्तचरों के द्वारा, जो बड़ी ही चालाकी से हूणों की सेना में सम्मिलित हो गए थे, कई जानकारियां प्राप्त की हैं।
0: बहुत अच्छा, हमें पता चला है कि हूण दूतों के मारे जाने का समाचार मिलने पर हूण सेनापति तुरंत आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है।
1: आपने ठीक ही सुना है युवराज, परंतु ये भी जान लीजिए कि जैसे ही उसे पता लगा कि समस्त भारतीय

0: राज्य मिलकर युद्ध लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और इंद्रप्रस्थ के मार को चारों ओर से घेर लिए हैं, तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए।
1: परंतु होण वास्तव में लुटेरे हैं, धन का लालच उन्हें युद्ध की ओर अवश्य धकेलेगा।
0: हाँ, आपको याद होगा युवराज कि पिछले 6 महीने से वो सीमावर्ती क्षेत्रों में लूटपाट और हत्याएं कर रहे हैं।
1: हम तैयार हैं इंद्रप्रस्थ नरेश, और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस दिन होणों से हमारा सामना होगा।
0: ये धुनिया कैसी है?
1: लगता है होणों ने आक्रमण कर दिया है। महाराज, सेना को आदेश दें कि वो कूच करें।
2: कूच करो।

0: अरे भारत की सेना इतनी बड़ी कैसे हो गई? अरे ये पराक्रम कहां से आ गया इसमें? हमारे सैनिक तो गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। अगर हम हार गए तो ये हमेशा के लिए ताकतवर हो जाएंगे। क्या करूं? चूंकि मैं एक बलशाली पहलवान भी हूं तो मैं भारतीय सेनापति को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूं। कौन है भारतीय सेना का सेनापति? बोलो कौन है? कौन है सेनापति? बोलो।
1: हम हैं सेनापति। क्या हो क्या हो अधिनायक, ये पुकार क्यों लगाने लगे? बोलो क्या कहते हो, आत्मसमर्पण करना है तुम्हें?
0: आत्मसमर्पण हमने नहीं सीखा है सेनापति, आत्मसमर्पण। अगर तुम वाकई योद्धा हो तो आकर हमसे द्वंद्व युद्ध करो। बोलो मंजूर है?
1: मंजूर है।
0: तो फिर अपनी सेना को आदेश दो कि वो लड़ाई बंद करें। अब इस जंग का फैसला हम दोनों की कुश्ती से ही होगा।
1: चलो यही सही। सैनिकों रुक जाओ।
2: युवराज युद्ध को क्यों रोक रहे हैं आप?
1: महाराज आदित्य सेन पूर्ण सेनापति अब हमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता है।
2: द्वंद्व युद्ध?
1: हम चाहते हैं कि उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाए। चल आ जा हूं सेनापति, यदि अपने पिता के संतान है तो आकर हमसे द्वंद्व युद्ध कर।
0: आ जाओ, चलो आओ आओ आओ आओ आओ।
3: महाराज आदित्य सेन, राजकुमार ने ये क्या किया? हम विजय के बिल्कुल समीप थे, ये द्वंद्व युद्ध क्यों?
4: शांत रहो सैनिक, अपने सेनापति पर भरोसा रखो, वो एक कुशल मल्ल योद्धा भी हैं।
3: परंतु महाराज हूँ सेनापति लगातार आक्रामक हो रहा है। और हमारे सेनापति रक्षात्मक हैं।
4: देखते जाओ सैनिक।
1: अच्छा अब देख तू, अब मैं क्या करता हूँ?
3: अरे वाह, अब हमारे सेनापति ने जमकर दांव लगाया है। अरे उन्होंने उसकी अरे उसके दोनों पांवों को तोड़ दिया।
1: अब बस ये मेरा अंतिम प्रहार होगा, ले संभाल इसे।
3: हूर सेनापति मारा गया, हूर सेनापति मारा गया।
0: फूट पड़ो हूर सेना पर।

0: বাজে, উঠ পড়ো, উঠ পড়ো,
1: বচাও বচাও, হম শরণাগত হমারে প্রাণ বখশো, হমারে প্রাণ বখশো,
2: রুক যাও, শরণাগতোঁ পর বার মত করো, ইনকে অস্ত্র শস্ত্র ছিন লো और स्वदेश जाने दो।
1: हम स्वदेश नहीं जाना चाहते सेनापति, नहीं जाना चाहते, वहाँ शांति नहीं है। हम शांति से अपना जीवन यहीं भारत में व्यतीत करना चाहते, हमें स्थायी रूप से यहीं बसने की आज्ञा दीजिए।
2: तो फिर तुम सबको भारतीय जीवन आदर्शों को मानना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जीवन आदर्श ही मानव जीवन के सच्चे आदर्श है।
1: हमें स्वीकार है सेना नायक, हमें स्वीकार है, स्वीकार है।
3: सेनापति विजय शर्मा की।

0: आओ पुत्र विजयश्रवा आओ, हृदय से लग जाओ। अपेक्षा के अनुरूप ही तुमने स्वयं को समर्थ योग्य और पुरुषार्थ पूर्ण सिद्ध किया है। महाराज आदित्य सेन
1: जी सम्राट,
0: आपने विजय श्रवा को एक संरक्षक की भांति सहयोग दिया, हम आपके आभारी हैं।
1: धन्यवाद सम्राट। सम्राट राजकुमार विजय श्रवा ने मात्र हूणों की सेना पर ही विजय प्राप्त नहीं की, अपितु उन्होंने हूण सैनिकों के हृदय पटल पर भी विजय प्राप्त की है। भविष्य का तो नहीं कहा जा सकता सम्राट, परंतु निकट के कई वर्षों तक के लिए भारत भूमि निरापद हो गई है।
0: इस प्रसन्नता की घड़ी में हमारी पुत्री भुवन मोहनी कहाँ है?
2: दासी यहाँ है सम्राट।
0: दासी मत कहो स्वयं को पुत्री, आओ तुम भी हृदय से लगो। तुम मेरी और राजकुमार की समस्त विजयों की रीढ़ हो। तुमने राष्ट्र के सुप्त वीरत्व भाव को जगाकर देश के युवाओं को सर्वोत्सर्ग का पाठ पढ़ाया है।
1: सम्राट आपको बता दूं कि भुवन मोहिनी इस पूरे युद्ध में सैनिक वेशभूषा में राजकुमार की ढाल बनकर उनके संग रही है।
0: अच्छा,
1: भुवन मोहिनी का जितना भी सम्मान किया जाए कम होगा सम्राट।
0: सर्वथा उचित कहा आपने महाराज।
1: एक आग्रह है सम्राट।
0: कहिए इंद्रप्रस्थ नरेश।
1: इस शुभ अवसर पर ही यदि राजकुमार विजय शर्मा का विवाह राजकुमारी चंद्रहासिनी के साथ संपन्न करा दिया जाए।
2: इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती सम्राट।
0: आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली महाराज। अब इसमें विलम्ब कदापि न किया जाए। समस्त राजे महाराजे यहाँ हैं ही, अब हम सब धारा नगरी अपनी पुत्र वधू को लेकर ही जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे वहां के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए LPG आपूर्ति पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब पहले की तरह आपूर्ति बहाल हो गई है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत कर रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से होगा। और ICC महिला 2020 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम रविवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला करेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान होगा।

जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इसी सुविचार के साथ आज का महिला सवाल लेकर मैं हूँ आपकी रेडियो मित्र मंजू व्यास। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, इतिहास गवाह है कि जिसके इरादों में मजबूती रही उसने हमेशा जीत हासिल की। चाहे वह जीत सामाजिक हो, राजनीतिक हो, भावनात्मक हो या धार्मिक ही क्यों ना हो, ऐसा ही जीत हासिल करने और शहादत का एक पर्व है मुहर्रम। जी हाँ, मुहर्रम इस्लाम धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो हिजरी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम उल हराम में मनाया जाता है। बहनों, ये महीना इस्लामी समुदाय के लिए गहरा धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि यह न केवल नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि यह उन घटनाओं को भी याद करने का समय है जो इस्लाम के इतिहास में अमर हो चुकी हैं। इस महीने की 10वीं तारीख, जिसे अशूरा के नाम से जाना जाता है, हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद दिलाती है। बहनों, इस महीने में पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन, उनके परिवार और अनुयायियों ने 680 ईस्वी में करबला के मैदान में यजीद की सेना के खिलाफ सत्य, न्याय और मानवता के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। करबला की घटना इस्लाम के इतिहास में एक ऐसी मिसाल है जो साहस, बलिदान और अन्याय के खिलाफ संघर्ष की भावना को दर्शाती है।

है। हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की तानाशाही और अन्यायपूर्ण शासन के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। इस शहादत ने मुहर्रम को शोक, सम्मान और आत्मचिंतन का प्रतीक बना दिया। इस दिन लोग काले वस्त्र पहनते हैं जो शोक का प्रतीक है, और कई स्थानों पर ताजिया निकाले जाते हैं। ताजिया करबला में शहीद हुए लोगों की कब्रों का प्रतीकात्मक रूप होता है, जिसे बड़े सम्मान के साथ जुलूस में ले जाया जाता है। ये जुलूस शांति और एकता के साथ आयोजित किए जाते हैं, जिसमें लोग मातम करते हैं और इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहनों, मुहर्रम पर्व केवल शोक मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि उन लोगों को आत्ममंथन और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में सिद्धांतों और सत्य के लिए खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है, भले ही इसके लिए कितना भी बड़ा बलिदान क्यों ना देना पड़े। बहनों, करबला की घटना आज भी लोगों को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और मानवता की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। ये पर्व हमें एकजुटता, करुणा और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देता है, जो आज के समय में और भी प्रासंगिक है। तो चलिए हम भी इस पर्व को मनाते हैं इस गीत के माध्यम से।

0: मैंने अभी हम सुन रहे थे जावेद अली और कैलाश खेर की आवाज में फिल्म दिल्ली सिक्स से ये गीत। प्रसून जोशी के गीत को संगीत से नवाजा था AR रहमान ने। बहनों, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा नजरिया जब कलम के सहारे कागज पर उतर आता है तो वो कविता का रूप ले लेता है। कविताएं समाज, देश, राष्ट्र और कवि की आत्मा का दर्पण होती हैं। कई बार कवि समाज के हर पहलुओं को समेटते हुए अपनी कविता के मोतियों को पिरो लेता है, और ये मोती जब एक माला में पिरोए जाते हैं तो वो काव्य पाठ का रूप ले लेते हैं। तो चलिए सुनते हैं कवयित्री इंदु प्रभा खरे से उनकी कविताएं। क्रम है काव्य पाठ।
1: मेरी प्रथम रचना नारी के संघर्ष, उसकी पीड़ा और उसके आत्मसम्मान की कथा कहती है, जिसे मैं इन पंक्तियों के साथ प्रारंभ करती हूँ। ठोकर खाकर भी अब जिसने संभल के चलना सीख लिया, अबला नहीं रही अब नारी, खुद को बदलना सीख लिया। मैं नारी हूँ, हर युग में इस भूमंडल पर क्या जीती हूँ क्या हारी हूँ। मेरा जीवन शीतल छाया ममता बनकर सब पर छाया, पर कलयुग की आंधी में क्यों मेरा जीवन ही मुरझाया। इसकी रक्षा की खातिर किसने सब कुछ अपना बार दिया, किसने इसको सम्मान दिया, किसने इसका है त्याग किया। युग युगों से नारी जो संघर्ष और अपमान झेलती आ रही है, उसके लिए मैं लिखती हूँ। शतयुग में सती हुई नारी त्रेता में सीता वन हारी, द्वापर में भी द्रौपदी बनकर अपमान सहे बारी बारी, द्वापर में भी द्रौपदी बनकर अपमान सहे बारी बारी। अब कलयुग में आकर जिसने अबला बनना स्वीकार किया, जब युगों युगों तक उसको ये अपमान सहना पड़े, तब उसने कलयुग में क्या स्वीकार किया उसको भी देखिएगा। अब कलयुग में आकर जिसने अबला बनना स्वीकार किया, कलयुग के पथरीले पथ की पीड़ाओं को अंगीकार किया, कलयुग के पथरीले पथ की पीड़ाओं को अंगीकार किया, कि अन्नपूर्णा बनकर जिसने भोजन का हर एक ग्रास दिया, कि अन्नपूर्णा बनकर जिसने भोजन का हर एक ग्रास दिया, दहेज प्रथा की अग्नि ने फिर उसको ही आकर ग्रास लिया, दहेज प्रथा की अग्नि ने फिर उसको ही आकर ग्रास लिया। और जब उम्र थी खेल खिलौनों की तब बाल विवाह के फेरों ने बचपन भी जिसका छीन लिया, और कभी वृद्ध संग ब्याह रचा जीवन जिसका रंगहीन किया, और कभी वृद्ध संग ब्याह रचा जीवन भी जिसका रंगहीन किया। जब और नहीं कुछ शेष बचा तब चिता पर जिंदा बिठा दिया, जब और नहीं कुछ शेष बचा तब चिता पर जिंदा बिठा दिया, ढोल नगाड़े बजा बजा फिर शती प्रथा का नाम दिया, ढोल नगाड़े बजा बजा फिर शती प्रथा का नाम दिया, सती प्रथा का नाम दिया। मेरी इन पंक्तियों में नारी पीड़ा की कहानी समाप्त होती है, और नारी शक्ति के जागृत होते ही मैं क्या लिखती हूँ सुनिएगा। लेकिन चक्र चला फिर ऐसा उसने पीड़ा को त्याग दिया, लेकिन चक्र चला फिर ऐसा उसने पीड़ा को त्याग दिया, लेकर हाथों में अस्त्र शस्त्र शक्ति का फिर अवतार लिया, लेकर हाथों में अस्त्र शस्त्र शक्ति का फिर अवतार लिया। कलयुग में ही उसने अपने अपमान का फिर प्रतिशोध लिया, कलयुग में ही उसने अपने अपमान

का फिर प्रतिशोध लिया, पहचान गई जो स्वयं को जब शक्ति का फिर आवाहन किया। इसलिए अब कहती हूँ नारी को अबला मत कहना, शक्ति का सागर है नारी, फूल भी है शूल भी है, दबी हुई है चिंगारी। छेड़ोगे खाक करेगी वह, अपना अपमान सहेगी वह। श्रोताओं, अब तक आपने संघर्ष का स्वर सुना। अब प्रस्तुत है स्मृतियों और ब्रह की भावनाओं से ओतप्रोत मेरी अगली कविता, जिसका शीर्षक है तुम्हारी याद में। मैं अपनी द्वितीय रचना के लिए दो पंक्तियां कहती हूँ। वह दूर होकर भी हृदय के पास रहता है, हर याद में उसका ही एहसास रहता है।

मैंने अभी हम सुन रहे थे काव्य पाठ। कवयित्री थी इंदु प्रभा खरे। मैंने आज की भागम भाग में हमारी जो दिनचर्या है वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। हम रात में देर से सोते हैं, सुबह देर तक सोते रहते हैं और कभी-कभी तो यूं ही पूरी रात कट जाती है और नींद हमारी आंखों से दूर भाग जाती है। जी हाँ, नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी, अत्यधिक काम का बोझ और डिजिटल दुनिया के प्रभाव के कारण कई लोग नींद की कमी से जूझ रहे हैं। ये समस्या आम हो चुकी है। ये केवल मनुष्य की उत्पादकता को प्रभावित नहीं करती, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। बहनों, तनाव और चिंता, व्यक्तिगत, पेशेवर या शैक्षिक तनाव नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। स्मार्टफोन, लैपटॉप और देर रात तक टीवी की नीली रोशनी हमारे स्कैंडियन रिदम यानी बायोलॉजिकल क्लॉक को बाधित करती है। बहनों, आज की अनियमित जीवन शैली नींद की कमी का एक मुख्य कारण है। कैफीन और अल्कोहल का अधिक सेवन करने से नींद की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। मैनो नींद की कमी से लगातार थकान और ऊर्जा की कमी होती है, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स, ध्यान केंद्रित ना करना और मेमोरी लॉस, सिरदर्द, आंखों में भारीपन और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। यदि नींद की कमी को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए तो कई सारी गंभीर बीमारियां हमें अपने गिरफ्त में ले सकती हैं, जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी का बढ़ जाना, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होना, स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ जाता है, डायबिटीज टाइप 2 की जो संभावना है वो अधिक हो जाती है, मोटापा और वजन बढ़ने की समस्या भी हो सकती है। इसके साथ ही सामाजिक, भावनात्मक और पेशेवर जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। कार्य क्षमता में कमी आती है, व्यक्तिगत रिश्तों में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, खासकर वाहन चलाते समय। नींद की कमी से बचने के लिए सोने और जागने का समय आपको निर्धारित करना ही होगा। डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग सीमित करना होगा। सोने से कम 1 घंटे पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से आपको दूरी बनानी होगी। सोने के लिए अंधेरे और शांत वातावरण में रहना होगा। कमरे का तापमान भी नियंत्रित रखना होगा। योग और मेडिटेशन, ये 2 ऐसे रामबाण हैं जिसका उपयोग करके आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं और अपनी नींद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। अगर हमने ये सारी चीजें नहीं की तो हम यूं ही पूरी रात करवटें बदलते रहेंगे, कुछ इस तरह से।

0: मैनू अभी हम सुन रहे थे फिल्म आपकी कसम में किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये सुरीला सा गीत। आनंद बख्शी के गीत को संगीत से सजाया था आरडी वर्मन ने। मैनू आपने देखा होगा कि अभी गर्मियों में हमारी स्किन तो रूखी हो ही जाती है, हमारे बाल भी तेज धूप के कारण और पसीने के कारण झड़ने लगते हैं और हमारे बालों को भारी नुकसान भी गर्मी के मौसम में होता है और वे रूखे और बेजान हो जाते हैं। बालों को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा सल्फेट मुक्त और हाइड्रेटिंग शैम्पू का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। इसके अलावा आप मेथी को भिगोकर और एलोवेरा जेल को मिलाकर उसका पेस्ट बनाकर दोनों को अगर आप अपनी स्कैल्प पे लगाते हैं तो आपको ठंडक भी मिलेगी और बालों का रूखापन भी कम होगा और बाल झड़ेंगे भी कम। बाहर निकलते समय सिर को स्कार्फ या टोपी से ढकना बहुत जरूरी है और पर्याप्त मात्रा में जो पेय पदार्थ है, नारियल पानी है, गन्ने का जूस है, पानी है और इसके अलावा खीरा है, इन सब चीजों को हमें अपनी डाइट में शामिल भी करना होगा। नियमित रूप से हमें ट्रिमिंग करवाना चाहिए। बालों के दो मुहे सिरों को कटाने से बाल कम उलझते हैं और वे स्वस्थ रहते हैं और उनमें वृद्धि भी होती है। गर्मियों में पर्याप्त मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए और बालों की यूवी सुरक्षा के लिए स्प्रे या सीरम का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाल धोने के लिए हमेशा ठंडे या सामान्य पानी का ही इस्तेमाल करें, ज्यादा गर्म पानी से बाल ना धोएं क्योंकि बालों की जड़ें गर्म पानी के संपर्क में आते ही कमजोर हो जाती हैं। बालों को झड़ने से रोकने के लिए अपनी डाइट में प्रोटीन युक्त आहार जैसे अंडे, मछली, दालें और हरी सब्जियों को भी हमें शामिल करना होगा। बाल धोने से पहले तेल से मालिश करें और पुदीना या एलोवेरा जैसे ठंडक देने वाले बालों के मास्क को आप लगा सकते हैं। ब्लो ड्रायर या स्ट्रेटनर जैसे हीट टूल्स का इस्तेमाल कम करें, बालों की सुरक्षा करें और खूबसूरत दिखें क्योंकि अच्छे घने लंबे काले बाल महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। मैंने आपसे बात करते करते मुझे समय का तो पता ही नहीं चला और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि मैं आपसे विदा लूं, लेकिन चलते चलते दो पंक्तियां आपके साथ। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब अनुमति दीजिए अपनी रेडियो मित्र मंजू व्यास को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं अनु रैकवार और साथियों की आवाज में।

ये गीत अभी आपने सुना बद्री प्रसाद खरे और उनकी साथियों की आवाज में। आइए अब आपको सुनाते हैं अगला गीत पंचम सिंह सेंगर की

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी। आइए आपको सुनवाते हैं रविंद्र दीक्षित की आवाज में ये भजन।

रविंद्र दीक्षित की आवाज़ में सुने आपने ये भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान था।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है वो कौन थी।

लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम वो कौन थी। संगीत दिया मदन मोहन ने और शब्दों में पिरोया था राजा मेहंदी अली खान ने। और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में ही।

गले लग जा फिल्म से सुना भी आपने गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत दिया था आर डी बर्मन ने और शब्दों में पिरोया था साहिल लुधियानवी ने। और इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास एक मजबूत, स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने सभी से जागरूकता फैलाने, नशा मुक्ति में लगे लोगों का समर्थन करने और युवाओं को नशे की बजाय आशा, स्वास्थ्य और उद्देश्य को चुनने के लिए प्रेरित करने हेतु एकजुट होने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों और युवाओं तथा देश के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस युद्ध को जीतने के लिए एक मंच पर एकजुट होने का आग्रह किया।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। हालांकि जैव दवाइयों और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाइयों के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। सतना जिले में मुहर्रम का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। आगरमालवा जिले में ताजियों के जुलूस को सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। जबलपुर में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में विशेष इबादत कर देश में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। बात मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 2 दिनों में इसके भोपाल और उज्जैन संभाग तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून और मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभाग ने आज प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को खेती किसानी से जुड़ी आधुनिक और वैज्ञानिक जानकारियां दी जा रही हैं। पन्ना जिले के बीहरपुरवा गांव में कुआं खोदने के दौरान मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत के बाद विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने शोकाकुल परिवारों से

मुलाकात की और झाबुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में आज जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की प्रबंधन समिति की बैठक में नोडल अधिकारी ने दिव्यांगजनों के कल्याण की गतिविधियों की जानकारी दी। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आप सुनेंगे कुछ ही देर में दोपहर समाचार जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए, इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT के सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
3: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
4: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
5: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
5: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहाँ के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
6: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमरीका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार साथियों, आपके साथ हूँ कार्यक्रम में मैं अनुजा। तो इस कार्यक्रम में आपके द्वारा भेजे गए जो बड़े ही प्यार से जो आप हमें पत्र लिखते हैं वो पत्र हम आपको यहाँ पढ़ के सुनाएंगे और आपके पसंद के गीत आप तक पहुँचाएंगे। तो चलिए बिना देर करे हम आपको सुनाते हैं पहला पत्र। हमें भेजा है जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास खेलई जिला सागर से लक्ष्मण रेखवार ने, साथ ही में श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरथ रेखवार, हल्ले ऋषि रेखवार ने बंडा से। और उन वो चाहते हैं, उनकी फरमाइश है कि हम उन्हें दीवार फिल्म का गीत सुनाएं। तो अब उन्होंने फरमाइश की है और हम उसे पूरा ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए आपकी फरमाइश कार्यक्रम का पहला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है?

अभी आपने सुना दीवार फिल्म से गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में, साहिर के बोल थे और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने, और इस गाने की फरमाइश करी थी बंडा से लक्ष्मण रैकवार और उनके परिवार ने। तो देखिए, हमने आपकी फरमाइश पूरी करी, अब चलते हैं अगली फरमाइश की ओर। ये पत्र हमें भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने, और वो सुनना चाहते हैं याराना फिल्म से गीत किशोर कुमार की आवाज़, और गाने के बोल हैं छू कर मेरे मन को। जी, आपका पत्र भी हमें इसी तरह से हमारे मन को छूते हुए जाता है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में सुना भी आपने ये गीत फिल्म याराना से, बोल थे अनजान के, और म्यूज़िक दिया था, संगीत दिया था राजेश रोशन ने, और आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। तो आइए देखते हैं अगला पत्र हमें किसने और कहां से भेजा है। अगला पत्र हमें भेजा है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से, राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने, और वो सुनना चाहते हैं फिल्म धर्मवीर से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ओ मेरी महबूबा गीत। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं उनकी पसंद का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना भी आपने गीत फिल्म धर्मवीर से। आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और ये फरमाइश की थी डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से कजबीये परिवार ने। तो चलिए अब आपको बताते हैं, अगला पत्र हमारे पास आया है नेपाल पैलेस सागर से। तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने हमें ये पत्र भेजा है और वो चाहते हैं कि हम उन्हें अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से गीत सुनाएं, जिसके गायक हैं नीरज श्रीधर, सुजैन डी मेलो और बोल हैं प्रेम की नैया। तो आइए अब आपको सुनाते हैं उनकी पसंद का

नीरज श्रीधर की आवाज़ में सुना आपने ये गीत, नीरज श्रीधर और सुजन डीमेलो की आवाज़, और बोल थे इरशाद कामिल के, संगीत दिया था प्रीतम ने और फिल्म का नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। और ये गीत फरमाइश की थी नेपाल पैलेस सागर से। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम में हमारे पास अगला पत्र किसका आया है। हमें अगला पत्र भेजा है, उन्होंने नमस्कार लिखा है, तो हम आपको यहाँ से नमस्कार करते हैं। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य और पंकज प्रमोद रोहित व मोहित और प्रतीक आर्य ने, उन्होंने नीचे लिखा है, हमारी फरमाइश किसी भी फिल्म के साथ पूरी करने का कष्ट करें। अरे कष्ट नहीं, हमें बहुत सुख महसूस होता है, खुशी होती है हमारे श्रोताओं के लिए उनकी पसंद के गीत सुनाने में। तो चलिए बिना देर करे आपको गीत सुनाते हैं हमारी पसंद का, हमें उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा।

उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में सुना भी आपने गीत फिल्म खाकी से, समीर के बोल थे और संगीत दिया था राम संपत ने। और इसी के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों और युवाओं तथा देश के भविष्य के लिए खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी रचनाओं ने पीढ़ियों से भारतीयों में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना को जागृत किया है। भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से होगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए सबसे पहले आज की सांधिकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण आपको दे दें। सबसे पहले आपको आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं। युवा साथी सुन सकते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी ठीक शाम 5:02 पर। वहीं शाम 6:00 सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। सुर्खियों में कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 8:00, रात 8:00। खेल जगत कार्यक्रम सुनेंगे आप ठीक रात में 9:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे बेस्ट लिफ्टर ऑफ मध्य प्रदेश से सम्मानित भोपाल के पावर लिफ्टर अभिषेक बघेल से बातचीत। रात 10:00 सुनिएगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा कलाकार राजेंद्र व्यास का वायलिन वादन, राग होगा पूरिया धनाश्री। आकाशवाणी भोपाल से सुन सकते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा ठीक रात में शाम 7:21 पर। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

अमेज़न एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर और वेब्स ओटीटी पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को है। अब हमारा मीडियम वेव पर प्रसारण आरंभ होता है। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। वे कल बेंगलुरु में नाथ प्रभु श्री कैंपेगौड़ा की 517वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसका उद्देश्य खाद्य व्यवसायों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को उपयुक्त बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। और भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:02 हुए हैं और ये समय होता है युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी का। आज की युववाणी आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुत

साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे युवाणी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ पारुल पटेरिया, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तो हमारी आज की पहली जानकारी होगी मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। साथियों, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जून यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना और अवैध तस्करी को रोकना है। साथियों, मादक द्रव्यों का सेवन व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इससे अनेक बीमारियां और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नशे की लत व्यक्ति की कार्य क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। इससे उसका भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। साथियों, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग परिवार में तनाव और आर्थिक समस्याएं पैदा करता है। इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। अवैध तस्करी समाज में अपराध और हिंसा को बढ़ावा देती है। इससे सामाजिक सुरक्षा और शांति प्रभावित होती है। साथियों, युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। सही शिक्षा और मार्गदर्शन उन्हें इस बुराई से बचा सकते हैं। साथियों, सरकार और विभिन्न संस्थाएं नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाती हैं। इन प्रयासों से लोगों को नई दिशा मिलती है। साथियों,

प्रत्येक व्यक्ति को नशे के विरुद्ध जागरूकता फैलाने में योगदान देना चाहिए। सामूहिक प्रयास से इस समस्या को कम किया जा सकता है। खेल, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियाँ युवाओं को नशे से दूर रखने में मदद करती हैं। ये सकारात्मक जीवन शैली को भी बढ़ावा देती है। साथियों, ये दिवस नशा मुक्त और सुरक्षित समाज के निर्माण का संदेश देता है। सभी को मिलकर मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और तस्करी का विरोध करना चाहिए। साथियों, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग और अवैध तस्करी समाज के लिए गंभीर चुनौती है। जागरूकता, शिक्षा और सामूहिक प्रयासों से ही नशा मुक्त एवं स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। इसी के साथ कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको दे देते हैं एक और जानकारी मुहर्रम विषय पर। साथियों, मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है। ये त्याग, सत्य और बलिदान की याद दिलाता है। मुहर्रम इस्लाम का पवित्र महीना माना जाता है। ये नए इस्लामी वर्ष की शुरुआत करता है। साथियों, इस महीने में हजरत इमाम हुसैन को याद किया जाता है। उन्होंने सत्य के लिए बलिदान दिया था। साथियों, मुहर्रम की 10वीं तारीख को आशूरा कहा जाता है। इसका विशेष धार्मिक महत्व है। लोग इमाम हुसैन की शहादत को श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। इससे त्याग की प्रेरणा मिलती है। साथियों, कई स्थानों पर ताजिए भी निकाले जाते हैं। इनमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। इस अवसर पर धार्मिक सभाओं का आयोजन भी किया जाता है। इनमें इमाम हुसैन के जीवन पर चर्चा की जाती है। साथियों, मुहर्रम हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शिक्षा देता है। ये सत्य और न्याय का संदेश भी देता है। लोग गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता भी करते हैं। इससे मानवता और भाईचारे की भावना बढ़ती है। ये पर्व धैर्य, साहस और त्याग का प्रतीक है। इससे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। साथियों, मुहर्रम सभी को शांति और सद्भाव का संदेश देता है। ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर है। साथियों, मुहर्रम त्याग, सत्य और मानवता का संदेश देने वाला पवित्र अवसर है। ये हमें अच्छे मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। साथियों, ये तो थी एक जानकारी मुहर्रम विषय पर। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस प्यारे

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म रेस से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी आतिफ असलम की, गीतकार थे समीर और संगीत से सजाया था प्रीतम ने। साथियों, कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवा देते हैं वार्ता रक्तदान का महत्व विषय पर, जिसमें वार्ताकार होंगी अंशिका चतुर्वेदी।
1: रक्तदान को महादान कहा जाता है। संसार में अनेक प्रकार के दान किए जाते हैं, जैसे अन्न दान, वस्त्र दान और धन दान, लेकिन रक्तदान एक ऐसा दान है जो सीधे किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। रक्त का निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं किया जा सकता है, इसका एकमात्र स्रोत मानव शरीर ही है। इसके लिए जब किसी मरीज को रक्त की आवश्यकता होती है, तब केवल एक रक्तदाता ही उसकी सहायता कर सकता है। हमारे देश में प्रतिदिन हजारों लोगों की दुर्घटना, गंभीर बीमारियां, ऑपरेशन और अन्य चिकित्सा स्थितियों के कारण रक्त की आवश्यकता पड़ती है। कई बार समय पर रक्त न मिलने के कारण लोगों की जान भी चली जाती है। ऐसे समय में रक्तदान करने वाला व्यक्ति किसी अनजान इंसान के लिए जीवनदाता बन जाता है। रक्तदान का सबसे सुंदर पहलू यह है कि इसमें ना तो धन की आवश्यकता होती है और ना ही किसी विशेष साधन की। कुछ मिनट देकर हम किसी का जीवन बचाने में योगदान दे सकते हैं। एक यूनिट रक्त कई लोगों के उपचार में उपयोगी हो सकता है। कुछ लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है। वास्तव में स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित होता है। मानव शरीर में कुछ समय में रक्त की कमी को पूरा कर लेता है, इसलिए डॉक्टरों की सलाह के अनुसार किया गया रक्तदान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है। रक्तदान हमें सामाजिक जिम्मेदारियों का भी एहसास कराता है। यह हमें सिखाता है कि केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी किया जाए। रक्तदान करने वाला व्यक्ति जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की सीमाओं के ऊपर उठाकर मानवता की सेवा करता है। जब किसी मरीज को रक्त चढ़ाना जाता है, तब यह नहीं देखा जाता है कि रक्तदाता कौन था। वहाँ केवल एक ही पहचान होती है, मानवता। आज के समय में युवाओं की भूमिका रक्तदान के लिए क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक युवा नियमित रूप से रक्तदान करें तो रक्त की कमी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाती है। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं को भी लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। रक्तदान केवल किसी की जान बचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे भीतर दया, करुणा और सेवा की भावनाओं को भी विकसित करता है। जब हमें पता चलता है कि हमारे द्वारा दिया गया रक्त किसी व्यक्ति का जीवन बचा, तो संतोष और खुशी मिलती है। उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। रक्तदान एक महान कार्य है। यह निस्वार्थ सेवा, मानवता और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है। हमें रक्तदान के महत्व को समझना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि किसी की जान बचाने से बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता है। रक्तदान महादान है, क्योंकि आपका थोड़ा सा रक्त

भविष्य के लिए नया जीवन बना सकता है। एक बूंद रक्त अनेक जीवन का आशा। रक्तदान महादान, इससे बचती है किसी की जान। रक्तदान जीवन दान, मानवता की असली पहचान। आपका थोड़ा सा रक्त किसी को दे सकता है पूरा जीवन। आपका थोड़ा सा रक्त किसी को दे सकता है पूरा जीवन। खून का कोई विकल्प नहीं होता है। आपकी नसों किसी और की उम्मीद बन सकती है। आपकी नसें किसी और की उम्मीद बन सकती हैं। पैसा तो हर कोई कमाता है, कभी किसी की जिंदगी देकर अमीर बनाई है। जाति और धर्म की दीवार टूट जाती है जब एक का रक्त दूसरों की रगों में दौड़ता है। रक्तदान करने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम होता है। शरीर में आयरन का स्तर संतुलित रहता है और नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके अलावा इससे लगभग 650 कैलोरी बर्न होती हैं और मुफ्त स्वास्थ्य जांच जैसी ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन की जांच लाभ मिलता है। रक्तदान करने से आपका स्वास्थ्य और समाज के कई प्रमुख लाभ मिलते हैं। नियमित रक्तदान से खून में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है, जिससे दिल की बीमारियां और दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम होता है। एक बार ब्लड डोनेट करने पर 650 कैलोरी तक बर्न होती है। रक्तदान को समाज में महादान कहा जाता है, क्योंकि ये मरते हुए व्यक्ति को नया जीवन देने की क्षमता रखता है। मानव शरीर में रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है, इसे फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आ जाती है, लेकिन यह तो पूरी तरीके से गलत फहमी है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, जिसके दान के दौरान केवल छोटा सा हिस्सा 350 से 400 मिलीलीटर ही लिया जाता है। हमारा शरीर इस खून की भरपाई कुछ ही दिनों में खुद ब खुद कर लेता है। रक्तदान करने से कई स्वास्थ्य लाभ भी होता है। इससे शरीर में नए रक्त कण का निर्माण होता है, दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है और शरीर में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है। रक्तदान है सबसे बड़ा उपहार, इससे मिलता है जीवन को नया आधार। सबसे खूबसूरत बात यह है कि रक्त किसी जाति, धर्म, लिंग को नहीं देखता है। एक अनजान व्यक्ति द्वारा दिया गया खून किसी भी जरूरतमंद की रगों में दौड़कर उसकी जान बचा सकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि जब हम शारीरिक रूप से सक्षम हो तो नियमित रूप से रक्त दान करें। हमारा छोटा सा प्रयास यह है कि घर का चिराग बुझने से बचा सकता है और समाज का अनमोल कड़ी की मजबूत कर सकता है। चिकित्सा विज्ञान में आज दुनिया में कितनी भी प्रगति कर ली हो, लेकिन वह प्रयोगशाला में खून बनाने में अब तक असमर्थ है। प्रगति ने यह व्यवस्था केवल इंसानी शरीर के भीतर ही रखी है। इसका सीधा और सरल मतलब यह है कि अगर आज अस्पताल में किसी जिंदगी और मौत के बीच जूझते मरीज को खून की आवश्यकता है, तो उसकी जान केवल दूसरा इंसान के खून से ही बचाई जा सकती है। यही कारण है रक्तदान सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि महादान और जीवन दान का दर्जा दिया जाता है। जब हम रक्तदान करते हैं तो केवल कुछ मिलीलीटर तरल पदार्थ नहीं देते, बल्कि किसी निराश परिवार को उम्मीद, किसी बच्चे को उसका माता पिता और किसी माता पिता को उसका बच्चा सौंपते हैं। आज भी हमारे समाज में जागरूकता की कमी के कारण लोग रक्तदान करने से कतराते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि खून देने से शरीर में कमजोरी आ जाएंगी, बीमार पड़ जाएंगे और उनका वजन कम हो जाएगा। विज्ञान और डॉक्टरों के अनुसार ये पूरी तरह से गलत है। एक स्वस्थ के शरीर में लगातार पुराना खून नष्ट होता रहता है और नया खून बनता रहता है। जब हमारे रक्तदान करते हैं तो हमारे बोन मैरो सक्रिय हो जाता है और तेजी से नए स्वस्थ रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। दान किए गए रक्त के तरल भाग प्लाज्मा की पूर्ति हमारे शरीर 24 से 48 घंटों में पानी और तरल पदार्थ के माध्यम से कर लेता है। हृदय स्वास्थ्य में सुधार। शरीर में आयरन की मात्रा अधिक होने से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। रक्तदान करने से शरीर में आयरन का स्तर संतुलित रहता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा काफी कम हो जाता है। निशुल्क स्वास्थ्य जांच। रक्तदान करने से पहले हर दाता के खून की कई महत्वपूर्ण जांच जैसे हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, HIV आदि बिल्कुल मुफ्त की जाती है, जिससे अनजाने में भी सही शरीर की सेहत का पता चल जाता है। रक्त की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका कोई मजहब, जाति या रंग नहीं होता है। नस में बहने वाला लाल रंग यह कतरा हर इंसान का एक जैसा ही होता है। किसी हिंदू का रक्त किसी मुस्लिम की जान बचा सकता है और किसी अमीर का रक्त किसी गरीब का काम आ सकता है। यह बिना किसी भेदभाव के समाज को आपस में जोड़ने का सबसे बेहतरीन जरिया है। आपका रक्तदान किसी के चेहरे की मुस्कान। 18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसका वजन 45 किलोग्राम से अधिक हो, हर 3 महीने में सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है। हमें अस्पतालों में खून की कमी के कारण किसी को दम तोड़ते हुए देखने का इंतजार नहीं करना चाहिए।

0: रक्तदान को हमें जीवन का एक नियमित हिस्सा और कर्तव्य बनाना चाहिए। आइए संकल्प लेते हैं कि स्वयं भी रक्तदान करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी पुनीत कार्य के जागरूक करेंगे, क्योंकि आपका दिया हुआ रक्त किसी के बुझते हुए जीवन के दीपक को दोबारा रोशन कर सकता है। अगर गहराई से सोचा जाए तो ईश्वर ने इंसान को कई अनमोल उपहार दिए हैं, जिसमें से जीवन सबसे अनमोल है। लेकिन उससे भी खूबसूरत बात यह है कि ईश्वर ने इंसान को ऐसी क्षमता दी है जिससे वह दूसरे व्यक्ति को मरते हुए देखकर दोबारा जीवन का उपहार दे सकता है। इसी क्षमता का नाम है रक्तदान।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता रक्तदान का महत्व विषय पर, जिसमें वार्ताकार थी अंशिका चतुर्वेदी। तो साथियों, कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस प्यारे

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म टाइगर जिंदा है से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी आतिफ असलम की, गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत से सजाया था विशाल शेखर ने। तो साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको दे देते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी वृक्षारोपण का महत्व विषय पर। साथियों, वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। वृक्ष हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। साथियों, वृक्ष हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इससे जीवन संभव हो पाता है। पेड़ वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता करते हैं, वे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। साथियों, वृक्ष वर्षा चक्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इससे जल की उपलब्धता बनी रहती है। पेड़ मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, इससे भूमि की उर्वरता सुरक्षित रहती है। साथियों, वृक्ष अनेक पक्षियों और जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, वे जैव विविधता की भी रक्षा करते हैं। साथियों, पेड़ गर्मी को कम करके वातावरण को ठंडा रखते हैं, इससे जलवायु संतुलित रहती है। वृक्ष फल, फूल, लकड़ी और औषधियां प्रदान करते हैं, ये मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथियों, वृक्षारोपण से हरियाली बढ़ती है और प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है, इससे पर्यावरण आकर्षक बनता है। साथियों, अधिक वृक्षारोपण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, इससे वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। साथियों, वृक्षारोपण आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करता है, ये हमारा सामाजिक और नैतिक कर्तव्य है। साथियों, वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी वृक्षारोपण का महत्व विषय पर। तो साथियों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारी आज की रोजगार सूचना। RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड थर्ड। पदों की संख्या है 6,565। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियम अनुसार दी जाएगी। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 30 जून 2026 एवं अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2026। शैक्षणिक योग्यता BE, BTEC, इंजीनियरिंग डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में BSc की डिग्री होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर विजिट करें। तो साथियों, इसी के साथ अब दीजिए अपने मित्र पारुल पटेरिया को इजाजत।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी। आज की युववाणी आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम

0: देखते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग।

0: IN.
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
2: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से। खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक।

इस गमजदा गाने के बाद में अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आग और शोला फिल्म का। आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज़, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत है। सुनते हैं गीत।

आग और शोला इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ मनहर उदास, अनुराधा पौडवाल और साथियों की है। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म अग्नि से, आवाज मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की है। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म चालबाज से, आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज़, कविता कृष्णमूर्ति की, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म का नाम चालबाज।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:55 हुए हैं। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: भोर की चौखट पर

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
2: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
3: ईडी डायरेक्ट
2: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
3: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
2: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
3: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
2: आज ही करें कनेक्ट
3: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
4: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।
7: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा,
2: डीडी डायरेक्ट,
1: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
2: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
1: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
2: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
1: आज ही करें कनेक्ट
2: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा, डीडी डायरेक्ट।
3: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हां, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।
1: लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

सुनील वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आप संजीव अग्निहोत्री, आपके साथ रहूंगा उस महफिल में जिसका नाम है सदाबहार गीत। वक्त हुआ है 6:10:24।

0: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है?
2: है।
0: गर्मियों के निसार है?
2: हाँ है।
0: तो तुमको

0: संवार है।
1: अरे बाबा है।
0: तुमको मुझसे प्यार है।
2: इस गीत के साथ ही सदाबहार गीतों की महफिल यहीं पर। आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार।

0: संघर्षस्य आह्वानं विहितं मादकद्रव्यानां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै सामाजिकस्थिरतायै आर्थिकहिताय यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति सः आध्यात्मिकनेतृभ्यः युवभ्यः मातृभ्यः अस्य संघर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुं च आग्रहम् अकरोत् श्रीशाहः नवदिल्ल्यां नार्को कोऑर्डिनेशन केन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीय सभाम् अभिसंबोधयन् एतानि वक्तव्यानि प्रायच्छत्
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाह अवोचत यत् चतुरोत्तर द्विसहस्रतः चतुर्दशाधिक द्विसहस्र पर्यन्तम् अधिकारिणः प्रायः 26 लक्ष किलोग्राम मितं संश्लेषित मादक द्रव्याणि गृहीतवन्तः तस्यापेक्षया 14 अधिक 2000 तः 26 अधिक 2000 पर्यन्तं गृहीतानि संश्लेषित मादक द्रव्याणि 8.11 मिलियन किलोग्राम मितं यावत् वर्धितम् सः अवोचत् यत् मादकद्रव्याणां व्यापारस्य विरुद्धं सर्वकारस्य अभियानम् अविरतं प्रगतिं कुर्वदस्ति इति अङ्कैः ज्ञायते मादकद्रव्याणां निवारणस्य प्रयत्नानां विषये श्रीशाहः अवोचत् यत् नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इत्यनेन मादकद्रव्याणाम् अपराधसम्बद्धानां सूचनानां समयोचित आदानप्रदानार्थम् अनेकानि आन्लैन् पटलानि विकसितानि सन्ति
1: पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अवोचत् यत् नशा मुक्त भारत अभियानम् जनसहभागित्वेन चालितं जनान्दोलनं जातम् मादक द्रव्य मुक्त भारत निर्माणस्य महत्व विषये सामाजिक न्याय सशक्तिकरण राज्य मन्त्रिणः बीएल वर्मणः लेखं विनिमय कुर्वन् श्रीमोदी एतत् अवोचत् उत्तर प्रदेश आरक्षकेण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दान राशि स्तेय प्रकरणे FIR इति प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण 8 जनाः निगडिताः इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य निर्देशने विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसनानन्तरं पञ्जीकृतमासीत् इदं प्रकरणं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासेन प्राप्तानां उपहाराणां दानानां च स्तेय सम्बन्धिनाम् आरोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम् न्यासस्य अनुरोधे मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन एकस्य SIT दलस्य गठनस्य आदेशः प्रख्यापितः न्यासीय सदस्यस्य कृष्णमोहनस्य लिखित अभियोगाधारेण श्रीराम जन्मभूमि आरक्षक केन्द्रे अयम् अभियोगः प्रविष्टः संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति ह्यः वाशिङ्ग्टन् नगरे आयोजिते द्वितीये पैक्सिलिका शिखर सम्मेलने भारतेन सह अन्यैः 34 देशैः कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधीनां विकासाय विश्वसनीय दृढ आपूर्ति श्रृङ्खलायाः निर्माणार्थम् अमेरिका नेतृत्वे एकस्मिन् महत्वपूर्ण प्रस्तावे हस्ताक्षरं विहितम् आर्थिक विषयानाम अमेरिका उपसचिवः जैक हेलबर्गः अवोचत् यत् एआई अवसरे संयुक्त विवरणम् इत्यस्य अंतर्गतं प्रतिभागी देशाः एआई युगे विकासानुकूल

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम मीडियम वेव DTH ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:30 हुए हैं और ये समय है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभिलाषा फिल्म का एक गाना। मजरूर सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है और RD बर्मन का संगीत है। सुनते

अगला गाना लिया है हमने फिल्म पूनम से, आवाज़ एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी की है। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है और अनु मलिक का संगीत है। सुनिए ये गीत।

अगला गाना है फिल्म शान से, आवाज़ किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और साथियों की हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है। सुनिए।

0: ये गाना था फिल्म हमराज का, आवाज़ें थी आशा भोसले और महेंद्र कपूर की। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा था, रवि का संगीत था। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
2: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।
3: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हां, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन एआईआर ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं। मध्य प्रदेश
4: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
5: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
4: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है।

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 MCC-C-17 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यिजांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग करने की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई। कोलकाता की ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और आयरलैंड के बीच जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:05 हुए हैं। आइए कार्यक्रम विवरण हम आपको बताते हैं। आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:21 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा। 8 का समय है कार्यक्रम सुर्खियों का, तो आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। 9:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम खेल जगत, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे भेंट वार्ता। बेस्ट लिफ्टर ऑफ मध्य प्रदेश से सम्मानित भोपाल के पावर लिफ्टर अभिषेक बघेल से बातचीत। 9:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 10 आपकी फरमाइश। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे राजेंद्र व्यास का वायलिन पर बजाया राग पूनिया धनाश्री। ये थे आज के शेष मुख्य कार्यक्रम जो आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होना है। अब हम नजर डालते हैं कल यानी शनिवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। पहले आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कल के मुख्य कार्यक्रम। 11 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम, बात आपकी गीत हमारे। 12 का समय है आपकी फरमाइश का और 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत भुवन मोहनी की नवी कड़ी। 1 महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा और ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होंगे।

0: हम आपको एक बार फिर बता दें कि 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा और ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति हैं। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। हम आपको याद दिला दें कि कल आप 2 बजे फिल्म संगीत सुन सकते हैं, 5:33 पर सुन सकते हैं, शाम 6 बजे सुन सकते हैं और रात 8:15 पर फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं। और दोपहर 2:30 पर होगा आपकी फरमाइश। किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा रोज की तरह 7:21 पर होगा और 7:45 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। 8 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में और 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रकृति की बात। आपके साथ ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले होगा और 9:30 पर विज्ञान भारती, ये कार्यक्रम भी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। 10 बजे का समय है संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कल के कार्यक्रम और अब आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कल के मुख्य कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं। 7:20 पर सुबह आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। लोक संगीत का कार्यक्रम में आप सुनेंगे अर्चना सिंह के गाए बघेली लोकगीत 9:15 पर। इनसे मिलिए ये कार्यक्रम होगा 9:30 पर। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे भेंट वार्ता चित्रकार और बाल साहित्यकार अनिता सक्सेना से अमिता त्रिवेदी की बातचीत। 10 बजे जिले की चिट्ठी। 10:05 पर फिल्म गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत सागर और 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला के अंतर्गत रत्नाकर व्यास का सरोद पर बजाया राग नट भैरव। और कल शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल का कार्यक्रम होगा ग्राम सभा। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले आज और कल के मुख्य कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 7:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने आज आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों को सम्मानित किया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय रक्षा दलों का एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। श्री मोदी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा के नशा मुक्त भारत के निर्माण के महत्व पर लिखे एक लेख को साझा करते हुए ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सूचना सही समय पर साझा करने से सरकार को मामलों की प्रभावी निगरानी और आवश्यक परामर्श देने में मदद मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
0: प्रदेश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस हमें जागरूक करता है कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सजग करते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान दें और स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र के संकल्प को साकार करने में अपनी भागीदारी निभाएं।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले मीसा बंदियों के अखिल भारतीय संगठन लोकतंत्र सेनानी संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेश भर के करीब 2000 लोकतंत्र सेनानी और उनके परिजन शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों का शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए कई घोषणाएं भी की।
3: लोकतंत्र सेनानियों को स्पेशल ट्रेन कर देंगे, आप आराम से जहां आपको यात्रा करना है सरकार के माध्यम से आपकी यात्रा कराएंगे। आपने रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस में 2 दिन निशुल्क रुकने की बात कही, निश्चित रूप से मैं रुकने के लिए व्यवस्था करने की घोषणा करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए जो खर्चा लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहेगी, और ऐसे में कभी कोई गंभीर बीमारी पड़ी और वहाँ राज्य के उस अस्पताल में इलाज नहीं है तो हमारी एयर एम्बुलेंस निशुल्क लेकर के आएगी और उनका इलाज कराएगी, ये व्यवस्था भी हमारी सरकार के माध्यम से होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य जन स्वास्थ्य और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। भोपाल में हजरत इमाम हुसैन की शहादत को लेकर मुहर्रम पर्व अकीदत और गमी माहौल में मनाया गया। शिया समुदाय ने शहर में मातमी जुलूस निकाला, वहीं सुन्नी समुदाय की ओर से रोजा रखकर घरों में इबादत की गई। नर्मदा

सीतापुरम में विभिन्न स्थानों से ताजियों और सवारियों का जुलूस निकाला गया। बात मौसम की, प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले दो दिनों में इसके भोपाल और उज्जैन संभाग तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मॉनसून और मॉनसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आगरमालवा और सीहोर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा सांसद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य, सिंचाई और ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सीहोर जिले के आष्टा स्थित देवांचल धाम देवबरला बिलपान में प्रदेश का पुरातत्व विभाग जल्द ही रुके हुए विकास कार्यों को दोबारा शुरू करने जा रहा है। शहडोल और झाबुआ जिलों में साइबर ठगी से बचाने के लिए और डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। कटनी के विजय राघवगढ़ वन्य क्षेत्र में 14 वन्य जीव एक साथ मृत पाए गए हैं, जिनमें 12 चीतल और 2 सांभर हैं। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और आगरमालवा जिले में कल आयोजित हुए शिविर में पुलिस अधीक्षक ने आमजनों को ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी लिंक और सोशल मीडिया हैकिंग से बचने के प्रभावी उपाय बताए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने आज आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों को सम्मानित किया और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन के काज है साधना की राम राम। भैया देखो, आज अपन बात करेंगे बहुत ही खास विषय पर, तो वो है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बारे में। भैया जो योजना बहुत ही बढ़िया योजना है, जो केंद्र सरकार की एक शानदार पहल है, जहाँ योजना में भैया घर की छत पर या अपने खेत में कहीं जगह अपनो घर बनो है वहीं पर पास में खेत के पास में अपन सोलर पैनल लगवा सकते हैं और भैया 78,000 की सब्सिडी अपन को जहाँ में प्राप्त हो सकते हैं, जहाँ योजना में प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान करवे और परिवार को बिजली की बिल कम करवे में मदद मिलत है भैया। और जो भैया जो पैनल लगवाएं चाहत हैं वो पीएम सूर्य पर घर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर बाकी लाने भैया आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, जैसे कि भैया बिजली को बिल, बैंक को विवरण और भैया छत की फ़ोटो या अपन जहाँ पर लगवा रहे हैं वह जगह की फ़ोटो। और फिर भैया हमें वेंडर को चयन करने हैं, पोर्टल पर ही भैया वेंडर को चयन उपलब्ध रहे थे, वहीं से अपन कर सकते हैं। और फिर जब भैया पैनल लग जाए तो बाकी सब्सिडी अपन को वापस बैंक खाते में आ जाते हैं। तो भैया पहले तो अपन को पैसा भरने पड़ते हैं, फिर बाकी सब्सिडी जो अपन को मिलेगी 78,000 रुपये वो वापस अपने बैंक खाते में आ जाएगी। तो भैया जो बहुत ही अच्छी योजना है, कैसी कि भैया बिजली तो सभी की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा अपन को महंगी पड़त है, तो अगर अपन ये सूर्य हर घर सूर्य योजना के माध्यम से भैया सोलर पैनल लगवाएंगे तो अपन को बिजली बहुत कम पड़ेगी और अपनों भैया पैसा बच जाएगा। तो भैया जो बहुत ही अच्छी योजना है तो अपन जाको लाभ ले सकते हैं। और भैया देखो, अब अपन बात करेंगे कि अब भैया देखो बारिश होवे वारी है और ऐसे मौसम में ज़्यादातर भैया मक्खी मच्छर पनप जाते हैं, तो अपन को बिन के लाने पूरी सुरक्षा रखने हैं। तो जाके लाने सबसे पहले अपन को क्या करने हैं कि अपने बाहर अपने नालियन की भैया साफ सफाई रखवाएं, पानी कहीं भी भैया जमा नहीं होना चाहिए, सब नालियाँ अपनी चलायमान रहेंगी तो मन में मच्छर कम पनपेंगे। और भैया अपने घर में भी साफ सफाई रखें, जैसे भैया अपने कूलर हैं अगर ज़रूरत नहीं है तो बिन में पानी ना भरें अपन, और अगर पानी भरो है तो बिन की हर भैया सप्ताह सफाई करें। अगर अपन कूलर नहीं चला रहे हैं तो आपको पानी अपन साफ करके रख दें, कैसे कि भैया रखे भाई पानी में मच्छर बहुत जल्दी पनप जाते हैं और जो मच्छर अपन को काटेंगे और बीमार करेंगे। तो जाके लाने अपन को क्या करने हैं भैया कि अपने कूलर हैं इनकी सफाई करके रखना है। और भैया सबसे ज़्यादा खास बात वो ध्यान देने हैं कि छत पर अपने यहाँ वैसे ही सामान पड़ो रहे थे, जैसे कि अपनों कोई ख़राब टायर पड़ो रहे, कोनू डिब्बा डिब्बी पड़े हैं, तो अगर पानी बरसेगा और वो पानी बा में जमा हो जाएगा, टायर के अंदर भर जाएगा और कोई डिब्बा डिब्बा में पानी भर जाएगा, फिर बहुत दिनों तक धूप निकलेगी और वो पानी ऐसे ही रहो रहेगा तो वहाँ में क्या होएगा भैया मच्छर पनप जाएंगे। तो अपन को भी छत की पूरी सफाई रखने हैं, फालतू की चीज़ें छत पे नहीं रखने चाहिए, जिन चीज़ में पानी भरे वो सब वहाँ से हटा देना चाहिए, ऐसी छोटे छोटे बातों को अपन को ध्यान रखने हैं। और भैया जा बात को भी ध्यान रखने हैं कि अपन को फुलास्तीन के कपड़ा पहनने हैं, संजा के टाइम अच्छे हाथ पैरन में अपन को नारियल को तेल लगाना चाहिए, तेल लगावे से भैया मच्छर ज़्यादा नहीं काट पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को अपन को ध्यान रखने हैं और मक्खी मच्छरन से बचाव रखने हैं। और भैया जो मक्खी होते हैं वो भी बहुत खतरनाक होते हैं, जगह जगह भैया मक्खी गंदी जगह पर बैठे थे और फिर वो अपने घर में आकर अपने खाना वगैरह पर बैठ जाते हैं। तो जहाँ से बचाव के लाने अपन को क्या करने हैं कि अपनी खाद्य सामान, जो भी अपनों भैया खाद्य सामान है वो सब ढककर रखने चाहिए, तो अपन इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। मक्खी जो होते हैं भैया वो बीमारी फैलावे में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं, तो अपन को अगर स्वस्थ रहने हैं तो ये सब उपाय अपन को करने हैं। और हाथ अपनी सफाई पर भैया बहुत ध्यान देने हैं, स्वच्छता से तो हम जब भैया स्वस्थ रह सकते हैं, अगर हम स्वच्छता से रहेंगे तो हम स्वच्छ रह सकेंगे। तो जब भी अपन खाना खाएं साबुन से हाथ जरूर धोएं, और जब भी अपनी महिलाएं खाना बनाएं तो साबुन से हाथ जरूर धोएं। तो ऐसे अपन को समय समय पर साबुन से हाथ धोना चाहिए तो जैसे अपन स्वस्थ रहेंगे। अब भैया अपन आगे तो और बातें आएंगे, पहले सुन लें जो बहुत ही बढ़िया लोग की।

0: तो अब भैया अपन सुन रहे थे बढ़िया सो लोकगीत। अब अपन भैया आगे बात करेंगे एक और खास विषय पर, वो है भैया मधुमक्खी पालन। भैया मधुमक्खी पालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, वो भैया एक लाभ को व्यवसाय है। और भैया मधुमक्खी पालन एक कृषि आधारित व्यवसाय है। जब व्यवसाय की सबसे खास बात जो है भैया कि जो व्यवसाय कम जगह में ही और कम लागत में हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अपन को प्राप्त होता है। जैसे भैया जो व्यवसाय के लाने हम अपने खेत के एक कोने में या घर की छत पे भी भैया जो व्यवसाय अपन छोटे स्तर पर कर सकते हैं। जब व्यवसाय से अपन को शहद तो प्राप्त होते ही है और संग ही संग मोम और जेली भी प्राप्त हो जाते हैं। और आजकल भैया बाजारों में शहद की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। शहद भैया सेहत के लाने बहुत पौष्टिक भी होते हैं, तो शहद को सेवन तो हम सभी को करने चाहिए। और जो बड़े बड़े बड़े बड़े भैया जगह हैं, बड़े बड़े पैसे वाले सेलिब्रिटी होते हैं, वो भैया चीनी की जगह शहद को ही उपयोग करते हैं मीठेपन के लाने, कैसे कि भैया जो बहुत ही अच्छा होता है। और चीनी अपनी सेहत के लाने अच्छी नहीं होते हैं, तो हमें भैया कम मीठा भी खाना चाहिए। और भैया जा व्यवसाय के हिसाब से मधुमक्खी पालन बहुत ही बढ़िया है और जा से अपने आसपास के खेत की पैदावार भी बढ़ जाते हैं। भैया जो पर्यावरण के लाने और कृषि के लाने भी एक वरदान साबित होते हैं। जब व्यवसाय के लाने सरकार द्वारा सब्सिडी भी प्रदान करी जाती है, जो व्यवसाय को भैया बढ़ावा मिले जाके लाने किसान भैयन को आय अच्छी होए और वे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। सरकार द्वारा भैया जो हो सकत है वो सब जस व्यवसाय के लाने काम करो जाते हैं, तो जो बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और अपने पर्यावरण को भी जो शुद्ध बनात है, तो भैया मधुमक्खी पालन एक बहुत ही लाभ को व्यवसाय है, अपन को जरूर करना चाहिए। जैसे भैया कम जगह और कम लागत में जो व्यवसाय अपन शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और भैया अब हम आप लोगन के लाने लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भेंट वार्ता, तो जाको विषय है जोड़ों का दर्द कारण लक्षण और उपचार, जहाँ में अपन को जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पंकज शर्मा और इनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो सुनते हैं अपन भैया जो बहुत ही महत्वपूर्ण भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं नमस्कार, चौपाल कार्यक्रम में हम आपको तरह तरह की भेंट वार्ताएं सुनवाते हैं, जानकारियां देते हैं और ये सब आपके जो व्यवसाय है खेती से संबंधित उसको तो प्रभावित करता ही है, उसमें आपको ज्ञान देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि खुद का स्वास्थ्य। अगर आप खुद स्वस्थ नहीं होंगे तो कैसे आप जीवन को आगे चला पाएंगे या आपका जो व्यवसाय है आप उसे कैसे सही ढंग से स्मूथली चला पाएंगे। तो जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है पहले तो खुद का स्वास्थ्य रहे। अब स्वास्थ्य की बात करें तो कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, उसी के हिसाब से तरह तरह के चिकित्सक हैं, लेकिन आज जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है हड्डियों के जोड़ कारण लक्षण और उपचार। क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो आपके शरीर की मांसपेशियाँ और हड्डी से संबंधित कई बार जोड़ों में जॉइंट्स में दिक्कत आने लगती है और दर्द होता है, और दर्द होने के कारण फिर हम जो भी हमारा काम है वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो भी आज हमारे साथ हैं शासकीय मेडिकल कॉलेज जो शिवपुरी की आम जुबा में कहा जाता है, उसमें अस्थि रोग विशेषज्ञ कहा जाए, विभागाध्यक्ष कहा जाए, डॉक्टर पंकज शर्मा आप अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं और प्रोफेसर के साथ साथ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं। डॉक्टर साहब सभी सुनने वालों के बीच में स्वागत करते हैं।
2: सभी को मेरा नमस्कार
1: जी। डॉक्टर साहब जैसा कि विषय मैंने बताया कि उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, परिपक्व होता है उम्र आदमी इंसान, कई तरह की औरतों से संबंधित हड्डियों से संबंधित रोग आने लगते हैं और एक अमूमन जो रोग आया वो जोड़ जॉइंट्स पेन, तो ये क्यों होते हैं और पहचान क्या है कि ये जॉइंट्स पेन है, इस विषय में।
2: जितने भी जोड़ हैं शरीर के वो जो शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हमारा चलना फिरना बैठना सभी जोड़ों से होता है। तो जोड़ों की बेसिकली जो बीमारी है वो बुजुर्गों में होती है, 60 वर्ष के बाद या 65 वर्ष के बाद कहीं ना कहीं व्यक्ति को जोड़ से तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक उम्र का भी लक्षण है। दूसरे तरीके के जोड़ में कई तरह की बीमारियां होती

0: हैं, या फिर पुराना चोटिल जोड़ है, या फिर जो है कई तरह की ऑटो इम्यून बीमारियाँ होती हैं जिनमें कि जोड़ अर्ली यानी कि शुरुआती अवस्था में ही इन्वॉल्व होने लगते हैं, मतलब उन जोड़ों की बीमारियाँ होने लगती हैं।
1: जी
0: इनके मुख्य लक्षण अगर हम देखें तो सबसे मुख्य लक्षण दर्द है, क्योंकि जो भी मरीज हमारे पास आता है वो दर्द को लेके आता है। इसके साथ साथ उसमें लालिमा भी हो सकती है, सूजन हो सकता है, जकड़न हो सकती है और उसको चलने में दिक्कत आ सकती है। ये प्रमुख लक्षण हम कहें किसी भी जोड़ के होते हैं। जोड़ शरीर के किसी भी जोड़ का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जैसे कि कंधे का है, कोहनी का है, कलाइयों का, और हम आमतौर पर देख रहे हैं कि घुटने का दर्द लेके ज़्यादातर लोग
1: आ रहे हैं
0: परेशान रहते हैं और हमारे पास आते हैं।
1: जी। डॉक्टर साहब, चलने का आपने जिक्र किया, तो चलने का संबंध तो सिर्फ पैरों से है, लेकिन जॉइंट्स तो हमारी एल्बो भी हो सकती है। एक बीमारी का नाम लेते हैं हम लोग टेनिस एल्बो, जो खिलाड़ियों में ज़्यादातर आती है, और खिलाड़ी यूथ होगा, तो किसान परिवार में उसका जो बच्चा है, जो यूथ है, लेकिन समय के साथ पिता के साथ वो व्यवसाय में मदद कर रहा है और फिर वो श्रम साध्य काम कर रहा है, तो उसको भी ये संभावना हो सकती है। कोई भारी चीज़ उठा रहा है, वहाँ पर भी जॉइंट्स का पेन हो सकता है, हमारी एल्बो में हो सकता है, हमारी कलाई के जोड़ में हो सकता है। तो पहचाने कैसे? आपने कहा दर्द, कई बार दर्द आदमी पहचान नहीं पाता है, तो इसका कोई स्पेसिफिक दर्द होगा?
0: देखो, कोई भी जोड़ है वो एक तो जोड़ के पास दो हड्डियों का मेल होगा, साथ में उनको जोड़ने के लिए तंतु होंगे एवं मांसपेशियां होंगी। तो जोड़ का दर्द और जोड़ के आसपास का दर्द, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जोड़ यानी कि हड्डियों के इन्वॉल्वमेंट के वजह से है। उनके ऊपर जो चिकनी लेयर होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, उसके जोड़ मतलब बीमारी में इन्वॉल्व होने के वजह से, या उसके आसपास की मांसपेशियों के वजह से है। तो मांसपेशियों का जो दर्द होगा वो जॉइंट के आसपास तो होगा, लेकिन वो जॉइंट की जो मूवमेंट है उसको इतना प्रभावित नहीं करता है, मूवमेंट कर पाता है वो व्यक्ति। लेकिन अगर जोड़ के अंदर है तो वहाँ सूजन आएगी और उसका जो चिकनी लेयर है उसमें भी खराबी आएगी, तो उसकी मूवमेंट भी प्रभावित होती है, यानी कि उस हाथ को चलाने में उसको तकलीफ होगी। जैसे आपने टेनिस एल्बो का जिक्र किया, तो ये एक तरह का जो टेनिस एल्बो है ज़्यादातर यंग अवस्था में लोग या फिर 30 से 40 या 50 वर्ष के लोग हैं उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका नाम टेनिस एल्बो के साथ साथ इसको ओवर यूज सिंड्रोम भी कहते हैं, मतलब किन्हीं मांसपेशियों का ज़्यादा उपयोग कर लिया। जैसे टेनिस खेलने वाले, तो नॉर्मली इसका नाम टेनिस खेलने वाले दिया है, लेकिन ये उन महिलाओं में जो खाना पकाने के लिए भारी कचड़ी का उपयोग करती हैं या फिर भारी झाड़ू उपयोग करती हैं, तो उनमें भी टेनिस एल्बो हो जाता है। तो अगर जोड़ इन्वॉल्व हुआ है तो उसमें सूजन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और अगर तंतु इन्वॉल्व हुआ है तो वो उस पॉइंट पे पेन देगा, उस पर्टिकुलर जो मूवमेंट हम करते हैं उसमें वो मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं। दोनों के इलाज में भी कहीं ना कहीं अंतर होता है।
1: अब क्या इनका इलाज वर्तमान में संभव है?
0: देखो, जो अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी है, और उनका निरंतर उन पर शोध का कार्य चल रहा है कि और अच्छे से अच्छा क्या इलाज हम कर सकते हैं। साथ ही इस पर भी शोध चल रहा है कि उन बीमारियों को शुरू में ही रोका जाए जिससे वो बीमारियां ना हों। जैसे हम घुटनों के दर्द की ही अगर बात करें, तो हमारा जो घुटना है वो 40 वर्ष के बाद ही कहीं ना कहीं थोड़ा लक्षण देने लगता है। मतलब कहते हैं कि जी बुढ़ापा का पहला जो है
1: सिंबल
0: ट्रिगरिंग सिंबल है, ट्रिगरिंग पॉइंट है।
1: जी
0: तो लेकिन उस परिस्थिति में अगर हम इस चीज़ को भांप लें और हम अपने जीवन की जो दिनचर्या है, अपने खान पान का व्यवहार है, कसरत है, व्यायाम है, अच्छा भोजन है, जिसमें कि कहें कि एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हो, तो इन रोगों को कहीं ना कहीं हम रोक सकते हैं या इनकी गति को धीमा कर सकते हैं, जिससे कि उम्र के साथ आए तो लेकिन बहुत धीमी गति से आए। जैसा कि हमने देखा है कि एक 80 वर्ष के बाबा जी हैं, उनके घुटनों में बदलाव तो बहुत है लेकिन वो कभी दर्द नहीं कहते और रोज़ घूमते रहते हैं और कहते हैं हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, भले ही वो हड्डियाँ उम्र के साथ टेढ़ी हो रही हों।
1: जी
0: तो वो रोग उनको धीरे धीरे आया
1: जी
0: है ना, तो उसको रोग ना कह के उसको हम कहते हैं कि जीरियाट्रिक प्रॉब्लम है,
1: समय का
0: ठीक,
1: बदलाव।
0: समय का बदलाव है।
1: जी
0: लेकिन वही प्रॉब्लम या वही बदलाव अगर 60 वर्ष पे ही आ जाएगा तो व्यक्ति का घुटना धीरे धीरे और ख़राब होगा और आगे चल के उसको बदलना भी पड़ सकता है,
1: नी रिप्लेसमेंट पे
0: नी
1: जाना।
0: रिप्लेसमेंट पे जाना जाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम रोग को समझें और भविष्य में उनका क्या होने वाला है उसको पहले ही समझ के उनको रोकथाम के इलाज करें।

0: इंसान को कौन सी दिनचर्या या कौन सा पोस्चर अपना अपनाना चाहिए या कौन से पोस्चर से बचना चाहिए ताकि संभावना को थोड़ा लंबा किया जा सके।
1: देखो, हड्डी के बारे में कहा गया है कि हड्डी का जो निर्माण है वो 30 से 35 वर्ष तक होता है, मतलब उसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, स्ट्रेंथ है, वो 35 से 40 वर्ष तक बनती है।
0: यानी हड्डी पूर्ण युवा 40 की उम्र में होती
1: 40
0: है।
1: 40 की उम्र तक उसमें हम जैसे धन जोड़ते हैं वैसे हम उसमें जोड़ सकते हैं
0: जी।
1: उसके बाद क्या होता है कि महिला और पुरुष दोनों में ही प्रतिवर्ष हम माने तो 0.5% के हिसाब से हड्डियाँ कमजोर होना चालू हो जाती हैं
0: पर ईयर।
1: तो इसका मतलब ये है कि जो धन हमने कमाया है यानी कि जितनी हड्डी हमने मजबूत की उसको हमें आगे उपयोग करना है
0: जी।
1: तो जिन महिलाओं में या पुरुषों में जिनमें हड्डियाँ शुरू से कमजोर हैं तो संभावना है कि उनको हड्डियों के रोग और जोड़ों के रोग जल्दी उम्र में ही आ जाएंगे। और जिन्होंने अच्छी मेहनत की, अपना अच्छा व्यायाम किया, अपने शिक्षा के साथ साथ शारीरिक पे भी ध्यान दिया, या जो खिलाड़ी हैं उनका बोन स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तो आप देखेंगे कि लंबे उम्र तक भी उनके हड्डियों और मांसपेशियाँ उनको परेशानी नहीं देती हैं। तो प्रिवेंशन में यही कहना है कि हमें शुरू में कमाना है, अपने हड्डी को प्यार करना है। हम देख रहे हैं आजकल के बच्चे फास्ट फूड पे जा रहे हैं जिसमें कि कोई पोषक तत्व नहीं है, तो उनका हम क्या सोच सकते हैं, क्या उनका हड्डी का निर्माण उतनी मजबूती से हो पाएगा? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 30-35 तक बनना है, अगर 20% कमाया तो उसी में से आगे खर्च करना है, और 100% कमाया तो उसमें से आगे बढ़ना है। और महिलाओं में और प्रॉब्लम है, जैसे महामारी बंद होने के बाद शरीर में हार्मोन होता है जिसको ईस्ट्रोजन कहते हैं, उसकी अगर कमी होना चालू हो जाती है तो महिलाओं में वो 0.5% की बजाय अब 5% प्रतिवर्ष के हिसाब से हड्डियाँ कमजोर होना लगती हैं।
0: हमने समस्या थोड़ी जो नेचुरल उनकी जो प्रोसेस है उसके कारण थोड़ी सी ज़्यादा है।
1: गाँव में हमने अपनी दादी या किसी महिला को देखा है कि वो झुक के चलती हैं, पुरुष कम मिलेंगे महिलाएँ ज़्यादा, क्योंकि वही उन्होंने अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया, हड्डियाँ कमजोर रहीं और समय के साथ साथ वो झुकना चालू कर देती हैं
0: जी।
1: तो जी
0: ये समस्या है। शिवपुरी का मेडिकल कॉलेज एक शिवपुरी के लोगों के लिए, शिवपुरी ज़िले के लोगों के लिए और आसपास के अंचल के लोगों के लिए भी एक वरदान साबित हुआ है। आप इसके अस्थि रोग के रूप में विभाग अध्यक्ष हैं, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो क्या मुनासिब कब उसको जाना चाहिए ताकि वो इलाज करा सके, आपसे मिल सके, आपकी टीम से मिल सके और वो स्वस्थ हो सके?
1: जब से मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया है और अस्थि रोग से संबंधित या उनके अवेयरनेस जागरूकता के लिए कई हमने चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया है। रिमेटोलॉजी, जैसे आप जोड़ों की बात कर रहे हैं, संपूर्ण जोड़ों के इलाज के लिए एक अलग ही क्लिनिक हम वहाँ चला रहे हैं
0: हॉस्पिटल
1: सरकारी में,
0: मेडिकल कॉलेज,
1: हाँ, जिसको ऑर्थो रिमेटोलॉजी नाम दिया गया है। और आज हम देख रहे हैं कि वो रिमेटोलॉजी के 10 से 12 मरीज जो कहीं दूरस्थ इलाकों से बड़े शहरों में इलाज कराने जाते थे वो आज मेरे पास आ रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है वहाँ पे, उनकी जांचें हो रही हैं और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी काउंसलिंग हो रही है, क्योंकि कुछ रोग ऐसे होते हैं कि बहुत लंबे चलते हैं और मरीज हताश होता है, कभी इस डॉक्टर को दिखाएगा, कभी उस शहर में जाएगा, तो पहला हमारा काम होता है उसकी काउंसलिंग करना कि अब आज से आपको कहीं जाना नहीं
0: mentally
1: है,
0: उसे प्रिपेयर
1: करना जिससे वो दवाई ना छोड़े और डॉक्टर से नियमित सलाह ले। चूँकि इस व्यस्तता के शेड्यूल में हम देखते हैं कि प्रतिदिन 200 मरीज आते हैं ऑर्थो में, तो हम ऐसे में उन मरीजों को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसे में मंगलवार का दिन मेरा चूँकि थोड़ा सा फ्री रहता है या कम वर्क रहता है तो मैंने वो अलग से रूमेटोलॉजी क्लिनिक अलग से संचालित की है जिससे लोग यहाँ आसपास के जितने भी लोग हैं वो आएँ, एनरोल करें।
0: यानी कहने की तात्पर्य यह है कि शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज में भी जो अस्थि रोग से संबंधित या हड्डियों के जोड़ से संबंधित जो हमारी समस्याएं हैं, एक आम इंसान की समस्याएं हैं, उसका इलाज संभव है, जहां पर आप और पूरी टीम के साथ हम व्यक्ति इलाज करा सकता है। खान पान का ध्यान किस तरह का रखे कि उसे जोड़, मतलब कौन सा विटामिन या कौन सी सब्जियों पर उसे फोकस करना चाहिए ताकि कम से कम दर्द हो?
1: जोड़ों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जैसे मैंने कहा एंटीऑक्सीडेंट, इंग्लिश वर्ड है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ऐसा तत्व जो शरीर के अंदर जो टूटन है उसको करेक्ट करे, उसको सही करे। तो बच्चों में ये प्रचुर मात्रा में होता है इसलिए उनको चोट भी लगती जल्दी हील हो जाता है। एडल्ट में भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं चोट लगी और 2-4 दिन में ठीक हो जाते, बैलेंस कर लेता है, लेकिन फिर 40 के बाद वो एंटीऑक्सीडेंट जो अच्छा वाला तत्व है वो कम होना चालू होता है और उसके कम होने से खराब वाला बढ़ता है तो वो डैमेज करना चालू। ये अच्छा तत्व हमारी हरी सब्जियों में, सभी फलों में, दूध में,

0: बिना मिलावट वाला भोजन करने से इन सब तत्वों से हम बढ़ा सकते हैं। जिसके साथ साथ शारीरिक व्यायाम, जैसे मैंने पहले भी बताया, शारीरिक व्यायाम बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे लिगामेंट मजबूत हैं। जितनी मोटी रस्सी होगी जोड़ों के आसपास, उतना हमें स्ट्रेंथ मिलेगी और उतना जोड़ों की समस्याएं कम रहेगी।
1: लिगामेंट्स रेप्चर नहीं होने चाहिए,
0: हाँ बिल्कुल,
1: खान पान बेहतर होना चाहिए, और थोड़ा वक्त अपने शरीर के लिए भी वर्जिश के मोड में
0: पर जैसे
1: दें,
0: बिल्कुल
1: यही कहना चाहते हैं ना
0: हाँ,
1: कि कसरत करें।
0: डेली कसरत, माइल्ड कहें कि थोड़ी कसरत डेली ज़रूरी है, और कसरत के लिए कहीं जाने घर में ही आसानी से हो सकती है। अगर आप डेली 2 से 3 किलोमीटर वॉक भी करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, थोड़ा सा तेज चहलकदमी करते हैं, तो वो भी काफ़ी होता है इसके लिए।
1: बातचीत बहुत अच्छी हुई। हम उम्मीद करते हैं हमारे सारे श्रोता इस हड्डियों के जो जोड़ से संबंधित समस्याएं जो आम इंसान में आती हैं और बचने की कोशिश करेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल कॉलेज इसके लिए है, वहां पर वो संपर्क कर सकते हैं, अस्थि रोग विभाग में जा सकते हैं और उसका इलाज होगा। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत कीमती वक्त दिया, आप हमारे साथ बातचीत में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: तो भैया, अभी अपन सुन रहे थे जी बहुत ही महत्वपूर्ण भेंटवार्ता, या कोई विषय है तो जोड़ों का दर्द, कारण, लक्षण और उपचार। और जहाँ में अपन को जानकारी दे रहे थे डॉक्टर पंकज शर्मा, और इनसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो भैया, आप लोगों ने ध्यान से सुनी होगी, और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा थी भैया के जोड़ों का दर्द, जो कि भैया आजकल हर इंसान के संग में होते हैं। जैसे अपन भैया, अपने भैया हैं, बहनें हैं, कोई के भी जोड़न में दर्द तो सभी के रहते हैं। तो अपन को जाके लाने अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने चाहिए, और अगर दर्द है तो मेडिकल कॉलेज में भैया बाकी बहुत अच्छा इलाज होते हैं, तो आप लोग भैया जरूर जाको फ़ायदा ले सकते हैं। और अब अपन आगे बात करेंगे भैया वर्मी कंपोस्ट के बारे में। भैया वर्मी कंपोस्ट मतलब कि केंचुआ खाद, जो कि भैया अपनी फसल और अपने खेत के लाने बहुत ही ज़्यादा वरदान साबित होते हैं जी भैया। पौधों को प्राकृतिक पोषण प्रदान करते हैं और एक प्राकृतिक खाद बनाते हैं, जैसे भैया हमारी माटी की उर्वरक शक्ति को बेहतर हो जाते हैं, संगे संग भैया माटी की जल धारण क्षमता भी बढ़ जाते हैं। और जो फसल में भैया वर्मी कंपोस्ट डालो जाते हैं, वासे जो फसल पैदा होते हैं भैया वो पोषक तत्वों से भरी हुई होते हैं, वहाँ में पोषक तत्वों की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। अगर भैया अपन खेत में केंचुआ खाद को प्रयोग करते हैं तो फसल अच्छी और पौष्टिकता से भरपूर रहते हैं, तो हमारी सेहत के लाने जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। जैसे भैया आजकल अगर अपन लोग रासायनिक खादों को प्रयोग कर रहे हैं, तो भैया अपन देख रहे हैं कि लोगों की सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। पहले के लोग भैया कितने स्वस्थ रहते थे, मगर आजकल हर घर में कोनो ना कोनो बीमारी फैली हुई है। आजकल जो सबसे ज़्यादा बीमारी फैल रही हैं, वो सबसे ज़्यादा अपन सुन रहे हैं वो कैंसर जैसी बीमारियां भैया जो ही वजह से फैल रही हैं। अंधाधुंध रासायनिक खादन को जो प्रयोग करो जा रहा है, रासायनिक कीटनाशकन को प्रयोग करो जा रहा है, वही फसल, वो सब्जी भाजी अपन खा रहे हैं वो सादा पानी से धोबे पर साफ होते ही नहीं है, तो भैया बाकी वजह से अपने अंदर जो बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। पहले के ज़माने में भैया इतनी रासायनिक खादन को प्रयोग नहीं करो जाता, तो प्राकृतिक तरीका से ही खेती करी जाता थी, तो पहले के लोग भैया स्वस्थ रहते थे, और जो कैंसर जैसी बीमारियों को अपन नाम भी नहीं सुनते थे। एक दो अपन कभी कभी सुनते थे भैया, एक आध जगह अपन ने नाम सुन लो, मगर आज भैया हर 2-4 घर छोड़ के जो कैंसर अपन को सुनाई दे जाते हैं। तो जैसे अगर अपन को बचने हैं तो अपन को अपने पुराने ज़माने में ही लौटना होगा, प्राकृतिक तरीका से खेती करें, वर्मी कंपोस्ट को भी प्रयोग करें, जैसे भैया अपने खेत भी अच्छे होंगे, खेत की माटी भी अच्छी होगी और अपनी सेहत भी बहुत अच्छी होगी। और भैया जब अपन रासायनिक तरीका से खेती करते हैं तो वासे अपनी सेहत भी बिगड़त है और अपने खेत की सेहत भी बिगड़त है, तो अपन को प्राकृतिक तरीका से ही खेती करने हैं और अपनी सेहत में सुधार लाने हैं। और भैया जो प्राकृतिक तरीके से फसल उगाई जाते हैं, वहाँ को दाम भी भैया अपन को बाजारन में अच्छा मिलते हैं, वहाँ भैया ऑर्गेनिक तरीका से जब खेती होती है तो वो प्रोडक्ट अपने महंगे भी बेचते हैं, तो अपन को भैया अपनी खेती में वर्मी कंपोस्ट को प्रयोग करना चाहिए और अपन को प्राकृतिक तरीका से ही खेती करना चाहिए। अब भैया अपन आगे बातचीत तौर करेंगे, पहले सुन लें अपन टूरीलाल गोला को गाँव जो

तो भैया अब अपन सुन रहे थे जो लोकगीत। अब भैया अपने कार्यक्रम को समय भी हो रहा है समाप्त। चरत चरत हम आपको देते हैं आज के मौसम की जानकारी। आज अपने शिवपुरी जिले को अधिकतम तापमान रहो 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहो 28 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता मतलब कि नमी रही 58% और हवा की गति रही 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ये तो होती आज के मौसम की जानकारी। अब अपनी साधना बहन को दी इजाजत। राम राम, जय जवान, जय

हमारा जो इंपोर्ट कंटेंट है बहुत हाई है, 80% के प्रतिशत हम बाहर से लेते हैं। इसलिए हमें एनर्जी के ऊपर सेल्फ सफिशिएंट होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास तेल के उतने भंडार नहीं है, गैस के भंडार उतने नहीं है, इसलिए हमें ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पे जाने की जरूरत है ताकि हम आत्मनिर्भर हो सके। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो देश मिलकर ये काम सोच रहे हैं या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं वो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, यानी कि ये पश्चिमी देश नहीं है, ये उभरते हुए देश है जिसमें भारत है, चीन है, रूस है, ब्राजील है और 11 देश आपने जैसे कहा था, यूएई आ गया, ईरान भी उसमें आ गया। तो ये जो कॉन्क्लेव बना है ये उभरते हुए देशों का है, तो एक नई दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं, जो पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड

0: कहते हैं, उसके ऊपर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। और तीसरी इसमें एक बात जो जुड़ी हुई है वो है कि आफ्टर ऑल दो चीजों पे एम्फोसिस किया गया, एक तो अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज इस तरह से सो कॉल्ड रिच देश नहीं है, इसलिए अफोर्डेबिलिटी बहुत जरूरी है। और फाइनली जो बात जा रही है कि जो डेवलप होगी टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, जो एनर्जी टेक्नोलॉजीज होगी, उसको हमें शेयर करना है किसके साथ? ग्लोबल साउथ के साथ। तो एक
1: जी
0: ग्लोबल साउथ का एलिमेंट भी ब्रिक्स के साथ जुड़ जाता है। तो मुझे लगता है ये एक तो कॉन्टेक्स्ट हो गया और उसका जो एक तरह से डायरेक्शन है वो भी बहुत क्लियर हो गया है इस बैठक के बाद।
1: बिल्कुल। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत के स्वच्छ ऊर्जा बदलाव और भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा रोडमैप पर प्रकाश डाला। उन्होंने सर्वेषां ऊर्जम के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
2: Guided by the vision of our Prime Minister and the BRICS chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, India seeks to strengthen BRICS cooperation towards building energy systems that are resilient, future-ready, technologically advanced, environmentally sustainable and people-centric. India's own energy journey reflects this approach. Following the principle of Sarvesham Urjam, that is, energy for all, our vision extends beyond meeting today's energy needs. India seeks to build a future-ready energy system that is digital, centralized, and consumer-centric. Clean power, smart grids, energy storage, and emerging fuels will work together to create a more reliable and sustainable energy ecosystem. This will support economic growth and improve the lives of over 1.4 billion people. Today, India is the world's third largest producer and consumer of electricity.
1: जिस तरह से खट्टर जी ने बताया कि आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति के मुख्य आधार के रूप में किफायती, भरोसेमंद और टिकाऊ ऊर्जा बहुत ही जरूरी है और हम विश्व के तीसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर कंज्यूमर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और उन्होंने जो हमारा रैपिड क्लीन एनर्जी एक्सपेंशन है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, बायो एनर्जी हो, उसमें जो हमारा लीडरशिप रोल है उस पर भी बल दिया। सो आपको लगता है कि भारत ग्लोबल एनर्जी इकोसिस्टम में एक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है?
0: सोनू जी, देखिए कि एक दिशा मिली है, डॉक्ट्रिन मिला है, एनर्जी फॉर ऑल। छोटा सा तीन वर्ड्स का है लेकिन इसमें बहुत कुछ कहा जाता है। एनर्जी फॉर ऑल मतलब हम सिर्फ अपने लिए नहीं देख रहे हैं, पूरे विश्व के लिए देख रहे हैं। और अगर अब इससे जोड़े पहले वाला स्लोगन जो है, जो सोलर एनर्जी के ऊपर बात हुई थी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो वो भी पूरे विश्व को देखते हुए उसके कॉन्टेक्स्ट या पर्सपेक्टिव में बात हुई थी। तो इसलिए जो दिशा जो आप कह रहे हैं वो लीडरशिप का है या नेतृत्व का है, लेकिन मंशा जो है वो ग्लोबल है। और खास करके जो आपने बात की, इसमें ग्लोबल साउथ हमारा फोकस रहा है, चाहे वो G20 की हमारी मीटिंग हुई या उसके बाद की कोई मल्टीलैटरल्स हुई है, तो हमने ग्लोबल साउथ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, बल्कि केंद्र बिंदु बनाया है हमारी सोच की दिशा का। तो एक तरह से ये दोनों चीजें अभी बैठक हुई है उसमें भी दर्शाई जा रही है। साथ में फिर इसको करना कैसे है, इसके रोड मैप्स क्या हो सकते हैं, जो पावर मिनिस्टर ने कहा है उसमें वो चीजें भी आती हैं कि आपको स्मार्ट ग्रिड्स कैसे बनानी है, मतलब डिजिटली कंट्रोल ग्रिड्स जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करें, जैसे जैसे पावर डाउन जाती है, अप जाती है, उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल उसका होता है डिजिटली, तो वो स्मार्ट ग्रिड होती है। स्मार्ट ग्रिड की बहुत जरूरत है अगर आप शेयर करना चाहें एनर्जी। और सबसे बड़ी बात ये होती है, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें तो स्टोरेज की, कि भाई सन चला गया, विंड चली, उसके बाद स्टोर कैसे करनी है, ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक। और उसके ऊपर भी इस बार जो है एक संस्था बनाई है जिसपे आप स्मार्ट ग्रिड्स और स्टोरेज के ऊपर खास करके रिसर्च होगी। तो ये भी सिर्फ बात सोच की नहीं है, लेकिन कैसे करना है इसको, इस बड़े प्रयास को, क्योंकि सब कुछ पहले से लिखा हुआ नहीं है, ये नए प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं। अब इसमें एक और चीज आएगी, वो लोग चाहिए ना, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, सबको इसमें ट्रेनिंग की जरूरत है। उसके लिए भी संस्था बनाई गई है इस बार कि जहां पर ये ट्रेनिंग भी दी जाए। तो सिर्फ बात ही नहीं हो रही, बट इसको कहते हैं ना वॉक द टॉक, वो भी साथ साथ हो रहा है कि भी करना तो है, कैसे करना है वो भी, कैसे हम लक्ष्य में पहुंचेंगे, और जो गोल है वो ग्लोबल है।
1: जी, सो बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि ये ब्रिक्स ऊर्जा अनुसंधान सहयोग प्लेटफॉर्म जिसकी बात हुई है, जिसके अंतर्गत स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण की बात हुई है, और जो ये प्लेटफॉर्म है इसमें ब्रिक्स देशों के बीच जो अनुसंधान, तकनीकी सहयोग और नॉलेज शेयरिंग होगी, आपको लगता है कि ये सारे इन देशों के एनर्जी सिक्योरिटी को और एनर्जी स्टेबिलिटी को मजबूत करने में सहायक होगा?
0: बिल्कुल, क्योंकि बात सुनो ये हो रही है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की। जब तक इंस्टीट्यूशंस नहीं बनेगी, संस्थान नहीं बनेगी,

0: तक आप जो है एश्योर तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। तो
1: जी
0: पहले से एक बनी हुई है ये संस्था, रिक्स एनर्जी रिसर्च कॉरपोरेशन प्लेटफॉर्म। ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये वर्चुअल है सिर्फ, इसमें कोई फिजिकल हेडक्वार्टर्स नहीं है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के संदर्भ में रिसर्च और उसके रिकमेंडेशंस वगैरह वगैरह सारे जो देश हैं ब्रिक्स के, इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। आप स्टडीज जिस पे करनी है वो एलोकेट की जाती है, ये जो मंत्रालय हैं ये इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स आ जाते हैं और डाउनस्ट्रीम होके स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से रिसर्च वर्क करती है। एक तो ये ERCP एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके साथ साथ एक तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, क्योंकि बात फिर आती है स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज की,
1: जी
0: उसके भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस आधार पे हम काम करेंगे, क्योंकि बहुत से देशों की अपनी रेगुलेशंस होती है, इसको एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे सबको लेके आता है। तो वो भी इस बार बात हुई है, यहाँ पर ये गाइडिंग प्रिंसिपल भी अडॉप्ट किए गए हैं। तीसरी बात है कि इसके ऊपर जो रिसर्च है स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए, एक सेपरेट एक संस्था बनी है जो इसके ऊपर डिटेल में फोकस से और विस्तार से इसके ऊपर रिसर्च करेगी।
1: एक और बड़ा रोचक केंद्र बिंदु निकल के आया है कि भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों को आकार देने में युवा भागीदारी की भूमिका को बहुत बल दिया है और ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन के आयोजन का समर्थन किया ऊर्जा मंत्रियों ने, ये आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है?
0: देखिए, सोच नई है और सोच फ्यूचरिस्टिक है, डिजिटल है, न्यू इकोनॉमी की है, तो इसमें यूथ की भागीदारी तो बहुत जरूरी है, उसके बिना ये होगा नहीं का। तो एक तरह से एक नया साइकिल शुरू हुआ है फ्यूचर एनर्जी का, जिसमें यूथ की भूमिका जो होगी मेरे को लगता है वो सेंट्रल रहेगी, जैसे आपने कहा, उससे साथ में क्योंकि रिसर्च का एलिमेंट भी आ जाता है, R&D का एलिमेंट आता है, इसमें स्टार्टअप्स वगैरह की भूमिका आएंगी, यूथ का इंटीग्रेशन इसमें जरूरी है क्योंकि उसके बिना होगा नहीं का। तो एक सेंट्रल फोकस रहेगा यूथ को इंटीग्रेट करने के लिए और ट्रेन करने के लिए, हमारी जो जेंजी जनरेशन है उसको खासकर इसमें शामिल होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अहम और बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, और साथ में अगर हम देखा जाए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फाइनली हमको यूथ के लिए क्रिएट करनी है, तो उसके लिए क्रिएट करने के लिए पुरानी तरीके से नौकरियां मिलने वाली नहीं है, अब आपको खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेट करना इसको, यूथ को स्किल्ड करना इन नई टेक्नोलॉजीज में बहुत जरूरी है हमारे फ्यूचर के लिए।
1: अतुल जी, ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों ने राष्ट्रीय परिस्थितियों, विकास प्राथमिकताओं और ऊर्जा प्रवाह को सम्मान देने के महत्व को भी दोहराया, इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, खासकर विकासशील देशों के लिए जिनके लिए एनर्जी ट्रांजिशन जरूरी है लेकिन साथ ही साथ इस स्टेज में फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल भी जरूरी है?
0: बिल्कुल, क्योंकि आप इस वक्त क्लाइमेट फंडामेंटलिस्ट नहीं बन सकते कि सिर्फ रिन्यूएबल ही करेंगे। भारत में देखिए कोयले के कितने बड़े भंडार है, आप उसको छोड़ तो नहीं सकते, क्लीन कोल की तरफ जा सकते हैं कि वो पोल्यूटिंग ना हो, लेकिन फॉसिल फ्यूल तो जरूरी है। जो गैस है, अगर आप भारत में देखें तो हमारे बहुत सारे व्हीकल्स जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में इन्वॉल्व है या ऑटो रिक्शाज वगैरह है, सब CNG पे चलते हैं। तो आपको एक अच्छा मिक्स की जरूरत है, बायोफ्यूल्स की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये जो बैलेंस है बिटवीन फॉसिल फ्यूल्स और या क्लीन फॉसिल फ्यूल्स और रिन्यूएबल्स के ऊपर बहुत अच्छा बैलेंस इस बैठक में देखने को मिला है, क्योंकि बात क्लाइमेट चेंज की भी हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की भी हो रही है, इसलिए वो कॉम्बिनेशन जो एक तरह से एक मॉडल बनाने की जरूरत है वो शायद भारत दिखा सकता है बाकी विकासशील देशों के लिए। और फाइनली बात यह है कि विकासशील देश जब जुड़ जाते हैं तो स्केलेबिलिटी और भी मिलती है, आपकी जो अफोर्डेबिलिटी, उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, तो इसलिए विकासशील देशों का उसमें जुड़ना बहुत जरूरी है। और भारत की सोच में ये बहुत ही क्लियर है कि शेयर करना है, और शेयर करना सिर्फ ये नहीं कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा, लेकिन इट मेक्स इकोनॉमिक सेंस कि फाइनली अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करनी है दुनिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को, तब ये जुड़ना बहुत जरूरी है और शेयर करना बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल, जिस तरह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने शुरू किया और जो उसमें प्रगति हुई है उसके बारे में भी उन्होंने बात करी कि 2014 में सौर ऊर्जा क्षमता 3 GW थी, उससे बढ़कर आज वो 154 GW से अधिक हो गई है, और छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में तेजी लाने और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाई है, आपको लगता है कि इस तरह के मॉडल्स ये बाकी देश भी अडॉप्ट कर सकते हैं और हम भी दूसरे देशों से सीख सकते हैं?
0: बिल्कुल, और जैसे आपने बात की सोलर अलायंस की, देखिए अब उससे क्या हुआ है कि 2014 से पहले तो स्केल आप देखिए 3 GW से फाइनल फिगर आपकी कितने गुना बढ़ चुकी है, 3 से 150, इट्स ए रेवोल्यूशन, एनर्जी रेवोल्यूशन है इसको कहते हैं, इससे एक्सपीरियंस आपका गेन हुआ है, अब इसको आप शेयर कर सकते हो क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, अगर सन के साथ किया है तो शायद और तरीके से भी हम कर सकते हैं, बाकी जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसमें भी हो सकता है। इसमें जब आपने शुरू में बात की लीडरशिप की, एक नेचुरल

0: लीडरशिप आती है क्योंकि एक्सपीरियंस आ गया आपके पास, और
1: हाँ
0: इसकी एप्लीकेबिलिटी बाकी कंट्रीज के लिए बिल्कुल है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस रहा है, और अब हम आगे इसको दूसरे जो सोर्सेज आ रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात हो रही है, उसमें आप अलग फिर कॉन्फिडेंस से जा सकते हैं। ग्रीन
1: जी
0: हाइड्रोजन की बात हो रही है, उसके ऊपर भी रिसर्च बहुत जरूरत है। तो नाउ यू कैन पुट योर फुट फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है भारत ने जैसे डीपीआई किया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे देशों में आपको ये मिल जाता है, डीपीआई जो हमारा पेमेंट सिस्टम है, उसी तरह से एनर्जी के ऊपर भी हमारा भी एक सारा है, और मॉडल वही है, शेयर करना है और ग्लोबल साउथ के साथ शेयर करना है, क्योंकि भारत में स्केल बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इतना हो जाता है, फिर आसान हो जाता है हमारे लिए वो शेयर करना। तो मुझे लगता है कि ये एनर्जी के ऊपर भी, रिन्यूएबल एनर्जी हो या न्यू एनर्जी हो, तो हम नेचुरल लीडर एक तरह से बन रहे हैं। ये नहीं कि हमारी मंशा लीडरशिप के अपने आप को ज्यादा जबरदस्ती आगे करने की, लेकिन वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप शेयर कर सकते हो, आप लीड कर सकते हो। ये एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स लिए गए हैं एनर्जी के फील्ड के ऊपर।
1: जैसा आपने कहा कि धरातल पर हमने निर्धारित समय से पहले 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल किया, बहुत सारे जो हमारे गोल्स थे उनको हमने समय से पहले क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए या क्लाइमेट फ्रेंडली जो स्टेप्स थे उनको हमने हासिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद समझिए।
2: अभी आप सुन रहे थे 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, दूसरी आवाज इसमें आशा भोसले और साथियों की, हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है, फिल्म का नाम है अंदाज़।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म कालिया से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है, सुनते हैं ये गीत।

तीसरी मंजिल, इस फिल्म में अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में गीत। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है।

आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं एक दूजे के लिए फिल्म का एक गीत। लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाज़ है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: नमस्कार भोपाल, सुबह का नमस्कार खुशगवार हर बार, नई जानकारियां शहर और देश दुनिया की, गूंजेंगी स्वर लहरियां नए पुराने गीतों के साथ। सुबह 7:20 पर सुनिए हर रोज नमस्कार भोपाल। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर रोजाना सुनिए 5:02 पर युववाणी। युवा प्रस्तोताओं और रेडियो एंकर्स का शानदार अंदाज, युवा ख्वाबों को साकार करती सक्सेस स्टोरीज, युवा मनोभावों को व्यक्त करती कविता कहानियां और देश विदेश की रोचक जानकारी, साथ ही दिलकश फिल्मी गाने, तो सुनना ना भूलिए आपका अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने के, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
2: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ

सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने

0: और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जाँच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा

0: ने चीनी ताइपे की तोंग सियू टोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस, होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्चेस 3-year विजन डॉक्यूमेंट for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Center to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximize benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President JD Vance. Indian shooters finish at the top in ISSF Junior World Championship in Germany with 24 medals, including 7 gold. And in US Open Badminton, India's Ronak Chauhan stuns top seed Chou Tin Shen of Chinese Taipei to enter quarterfinals of men's singles. Kidambi Srikanth and 3 women shuttlers also reach the quarters. And now the news in detail. Home Minister Amit Shah today laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th apex level meeting of the Narco Coordination Center in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs, saying that the drug menace threatens national security, social stability, economic interests, and the future of youth and the country. He urged spiritual leaders, youth and mothers to come together on a single platform to win this war. The Home Minister stressed that better coordination and the use of technology are essential for strengthening the country's campaign against drugs and drug trafficking networks.
2: Today, our country stands at a critical juncture in its fight against narcotics. The next 3 years will determine whether drugs prevail over us or we prevail over drugs. My humble appeal to all of you is that for the future of our nation over the next 100 years, this is a battle we must win. Win with the determination and win through our collective efforts.
1: Speaking about the anti-narcotics efforts, Mr. Shah said that the Narcotics Control Bureau has developed several online portals to facilitate the timely sharing of information related to drug crimes. He urged all chief secretaries and directors general of police to upload details of drug-related cases on these portals within a fixed timeline. He said that timely sharing of information would help the government to monitor cases more effectively and provide states with necessary feedback and suggestions to improve investigations and enforcement. The Home Minister also launched a drug disposal fortnight under which over 2,09,000 kilograms of seized narcotic substances valued at around 6,000 crore rupees will be destroyed. Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal today announced the deployment of 1,000

ने आज नई दिल्ली में यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के सहाफियों के ग्रुप से बातचीत की। वजीर मौसूफ ने उनसे भारत में रुनुमा हो रही काया पलट तब्दीलियों, दुनिया की मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल, निज भारत और यूरोप के दरमियान बढ़ते बाहमी इतफाक के सिलसिले में बात की। डॉक्टर जयशंकर ने यकीन दिलाया कि भारत में उनकी मुलाकातों और सफर से भारत निज भारत यूरोप शराकत दारी के इम्कान के ताल्लुक से उनकी मालूमात में इजाफा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने इस बात की तस्दीक की है कि अमरीका और ईरान ने दोनों मुल्कों के फौजी नुमाइंदगान पर मुश्तमिल तनाज़ियात के तस्वीर का एक बराह रास्त चैनल कायम करने से इतफाक किया है। इस बंदोबस्त में ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी IRGC और कतर के शहर दोहा में तैनात अमरीकी फौज की सेंट्रल कमान सेंट कॉम से नुमाइंदगान शामिल होंगे। जनाब वेंस ने एक ब्रिटिश न्यूज साइट के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान और अमरीका ने किसी और जंग के खतरे को कम करने की गरज से ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी IRGC के साथ एक बराह रास्त चैनल कायम करने से इतफाक किया है। इसी दौरान अमरीका और खलीजी तआवुन की कौंसिल GCC ने बहरीन के शहर मनामा में एक वजारती मीटिंग में अपनी जामे शराकत दारी का इरादा किया, जिसमें उन्होंने इलाकाई सालमियत, ईरान के साथ सफारतकारी, शाम और लबनान में इस्तेहकाम और गजा में तामीर नौ की कोशिशों के तईं अपने अहद पर जोर दिया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और GCC वजारती कौंसिल के मौजूदा चेयरमैन बहरीन के वजीर खारजा अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जयानी ने इस मीटिंग की मुआमिन सदारत की। मीटिंग में GCC रुकन ममालिक के वज़राए खारजा और GCC सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बुदायवी ने शिरकत की। आज आशूराए मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो ने हकीदत व सदाकत और इंसाफ की सरबुलंदी के लिए मैदान करबला में अपनी जान का जो नजराना पेश किया था, उसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर ताजियों के जुलूस निकाले गए। नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन ने कहा है कि मुहर्रम हमें हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है, जिससे शुजात, हमदर्दी और हक़ो इंसाफ के तई पाबंदी की अकदार को तहरीक मिलती है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि यह मुकदस त्यौहार माशरे में यकजहती, अमन और बाहमी इज्जत के बंधन को मुस्तहकम करने के लिए लोगों को तहरीक देता है। आशूरे मुहर्रम के मौके पर आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कुर्बानियों को याद किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन से कई लोगों को सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर कायम रहने की तरगीब मिलती है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दरमियान गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में जुनूबी मानसून ने मजीद पेशकदमी की है। शुमाल मशरकी भारत, ज़ेली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में इस हफ्ते के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है जिनके नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अतिया केस में दायर की गई पहली FIR में दर्ज किए गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर कायम की गई खसूसी जांच टीम SIT की सिफारिश पर यह FIR दर्ज की गई है। आज अयोध्या में एक अदालत ने राम मंदिर अतियात मामले में गिरफ्तार 8 मुलजमान को अदालती तहवील में भेज दिया। इन मुलजमान को उनकी गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया था। अयोध्या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में इस्तगासा के अफसर KC वर्मा ने अखबार नवीसों को बताया कि उनका रिमांड बरोज़ पीर 29 जून तक बढ़ा दिया गया है। जर्मनी में मुनक़िदा ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय शूटरों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 7 तमगों समेत 24 तमगे हासिल किए। भारतीय शूटरों ने पिस्टल और राइफल के मुकाबले में बेहतरीन खेल पेश करते हुए 7 सोने, 8 चांदी और 9 कांसे के तमगे जीते और उन इनफरादी गैर जानबदाराना खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 14 तमगे हासिल किए। इटली 10 तमगों के साथ तीसरे मकाम पर रहा।
बैडमिंटन में भारत के रौनक चौहान आज फुलर्टन में खेले जा रहे अमरीकी ओपन टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर करते हुए आलमी नंबर 6 और मर्दों के सिंगल्स के अव्वल दर्जे के खिलाड़ी चीनी ताइपे के चाउ टिएन चेन को सीधे मुकाबले में 21-17, 26-24 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मर्दों के सिंगल्स के एक और

0: मुकाबले में कदम्बी श्रीकांत मलेशिया के ली जी जियाओ को 21-14 21-13 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल्स में तन्वी शर्मा, रक्षिता श्री और देविका सिहाग क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पांचवीं दर्जे के खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने चेन्नई ताइपी की तुंग सी तोंग को 21-12 21-19 से शिकस्त दी, जबकि रक्षिता ने चेन सुयू को 21-4 21-19 से हराया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात के कंट्रोल से मुतल्लिक सहसाला विजन दस्तावेज का आगाज किया। उन्होंने मंशियात मुखालिफ मुहिम को और मुस्तहकम करने के लिए बेहतर तालमेल और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। मरकज भारत बरतानिया तजारती समझौते के फवायद को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की गरज से मुल्क भर में 1000 मशावरती अफराद तैनात और तजारती पोर्टल को अपग्रेड करेगा। वेनेजुएला के जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 589 हो गई है। भारत ने हंगामी राहती साजो सामान के साथ भारतीय फजाइया के 2 जहाज रवाना किए हैं। अमरीका और ईरान ने मजीद किसी जंग के खतरे को कम करने की गरज से बराह रास्त फौजी मवासिलाती चैनल कायम करने से इतफाक किया है। जर्मनी में ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज सोने के 7 तमगों समेत 24 तमगों के साथ सरे फहरिस्त रहे। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जगत।

0: खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपीय।
1: श्रोता, खेल केवल प्रतियोगिता का नाम नहीं बल्कि यह अनुशासन, समर्पण, आत्मविश्वास और निरंतर संघर्ष करने की प्रेरक कहानी भी है। जब कोई खिलाड़ी कठिन चुनौतियों को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचता है तो उसकी सफलता अनेक युवाओं के लिए प्रेरणा बन जाती है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद है जिन्होंने पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। हाल ही में ग्वालियर में आयोजित मध्य प्रदेश मास्टर्स पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में इन्होंने लगातार तीसरी बार बेस्ट लिफ्टर ऑफ मध्य प्रदेश का खिताब अपने नाम किया। हम बात कर रहे हैं भोपाल के पावर लिफ्टर अभिषेक बघेल जी की। आइए उनसे उनके खेल जीवन, संघर्ष, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद मनीष जी। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: अभिषेक जी, मध्य प्रदेश के बेस्ट लिफ्टर का जो खिताब अभी हाल ही में आपके नाम हुआ है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अपनी इस उपलब्धि के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि यह उपलब्धि पाकर आपको कैसा महसूस हो रहा है।
2: लगातार तीसरी बार बेस्ट लिफ्टर बनना अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने खेल संस्थान के लिए, अपने जिस जिले का आप प्रतिनिधित्व करते हो, सभी के लिए एक गौरवपूर्ण पल रहा वो। और लगातार तीसरी बार बेस्ट लिफ्टर बनना आपको एक मोटिवेशन देता है
1: जी।
2: और लगातार इस टाइटल को आप कंटिन्यूसली, आप एक बार बेस्ट लिफ्टर बनना मतलब उतना चुनौतीपूर्ण नहीं रहता जितना कि आप एक बार बनने के बाद उस सफलता को बचाए रखना कि आप दूसरी बार भी उस टाइटल को सेव कर पाते हो और तीसरी बार भी उस टाइटल को आप सेव कर
1: जी,
2: पाए
1: जी, जी, जी।
2: काफी अच्छा मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए पल रहा वो।
1: जी जी जी, आपको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अब बात करते हैं पावर लिफ्टिंग की। तो पावर लिफ्टिंग की ओर आपका रुझान कैसे हुआ और इस खेल में आने की प्रेरणा आपको कहां से मिली?
2: मैं क्योंकि फॉर्मर नेशनल बैडमिंटन प्लेयर भी हूं तो स्टार्टिंग से ही खेल के प्रति मेरा रुझान रहा क्योंकि मैं बैडमिंटन खेलता था। उसके बाद मैं फिटनेस के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया
1: जी।
2: और इसके बाद धीरे धीरे मैं बॉडी बिल्डिंग में आया। बॉडी बिल्डिंग के दौरान, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के ट्रेनिंग में हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, मसल को बिल्ड करने के लिए वेट लिफ्टिंग करते हैं, और बॉडी बिल्डिंग में भी मैंने मध्य प्रदेश में जो स्तर था उस स्तर से ऊपर जाने का ही टारगेट रखा मैंने। मतलब सेरू क्लासिक, अमेच्योर ओलंपिया इंडिया और अर्नॉल्ड क्लासिक जैसी विश्व की जो प्रतिष्ठित स्पर्धाएं हैं उनमें रजिस्ट्रेशन किया और उनमें खेलने का प्रयास किया। उनमें खेला भी मैं, टाइटल होल्ड भी किया।

इसके बाद 22-23 में जब मैं अमेच्योर ओलंपिया खेलने के बाद मैंने अर्नाड क्लासिक का रजिस्ट्रेशन किया और उनने मेरा इनविटेशन स्वीकार किया, उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा उसके लिए। बट कोविड की जो वेव आई तो उसके वजह से वो कंपटीशन कैंसिल हो गया, तो थोड़ा

0: जैसे पावर लिफ्टिंग में।
1: जी ओलंपिया प्रतियोगिता में भी आपने भाग लिया और टॉप 6 में आपने अपनी जगह बनाई, यह अनुभव आपका कैसा रहा?
2: अमेच्योर ओलंपिया में मेरी जो हाइट के अकॉर्डिंग जो मेरा जो इवेंट है वो मेरा क्लासिक फिजिक है, क्लासिक फिजिक डिवीज़न ए में आता हूँ, उसमें मुझे बॉडी वेट 80 के नीचे रखना होता है
1: जी
2: मेरी हाइट के अकॉर्डिंग। तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन की थी, बहुत ही मिनिमम डाइट में, उस समय 3-3 घंटे कार्डियो करता था, डेली 20 किलोमीटर साइकिलिंग करता था, तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन थी मेरी। बस जो प्रोग्राम था उसको शायद हम समझ नहीं पाए, क्योंकि उसमें एक पहले प्रीजजिंग होती है, प्रीजजिंग के बाद फिर फाइनल डे होता है।
1: जी जी जी।
2: तो प्रीजजिंग में मैंने अपनी बॉडी को, क्योंकि हम बॉडी बिल्डिंग में अपनी बॉडी को हर दिन मैक्सिमम पुश नहीं कर सकते
1: जी,
2: तो मैंने अपनी बॉडी को मैक्सिमम पुश नहीं किया, नॉर्मली प्रीजजिंग में मैंने किया। प्रीजजिंग के बाद जब नेक्स्ट डे मैंने बहुत अच्छा बॉडी को पीक पे ला करके और बॉडी को एक्सट्रीमली वाटर कट करके शो के लिए गया मैं और ऑन स्टेज आया, बट जजेस ने जो रिजल्ट अनाउंस किए वो प्रीजजिंग के आधार पे कर दिए। इस वजह से मेरा जो एक्सपेक्टेशन था कि मैं वहाँ पे टॉप आऊँगा, तो टॉप ना करके मैं टॉप 6 में रहा। उस समय जो कंडीशनिंग थी, उस समय जो प्रिपरेशन थी मेरी काफ़ी अच्छी थी, बट फिर भी अमेच्योर ओलंपिया एक छोटा कॉम्पिटिशन नहीं है, उसमें एशियन कंट्रीज़ के लगभग सारे, इंडिया के अलावा इंडिया के आसपास के सारे कंट्रीज़ के प्लेयर आते हैं खेलने के लिए, तो एक अच्छा बड़ा स्टेज था। बड़ा स्टेज में अगर मैं देखूँ तो टॉप 6 भी आना मध्य प्रदेश और मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए काफ़ी अच्छा गौरवपूर्ण पल था।
1: जी निश्चित तौर पर हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि यह जो ओलंपियाड का जो कॉम्पिटिशन होता है वो एशिया लेवल का कॉम्पिटिशन होता है और उसमें लगभग सभी देशों के काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स भाग लेते हैं और उसमें टॉप 6 तक पहुँचना निश्चित तौर पर ये बहुत ही गौरव के पल है आपके लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए जो शायद आपको देखते हैं अपने भविष्य के तौर पे। अब जैसे मध्य प्रदेश पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 हाल ही में जो संपन्न हुई, उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि उसमें आपका प्रदर्शन कैसा रहा?
2: मध्य प्रदेश जो स्टेट पावर लिफ्टिंग थी उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट जिला इकाइयां हैं उनने पार्टिसिपेट किया, कॉम्पिटिटर्स थे सभी जगह के, इंदौर के थे, जबलपुर के थे, ऐसे सभी जगह के थे। मेन चीज ये है कि ये प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्पर्धा के बीच में, क्योंकि आगामी जो राष्ट्रीय स्पर्धा है वो 18 से 23 जुलाई है, ज्यादा गैप नहीं होता, तो इसलिए हम वहाँ पे अपना मैक्स परफॉर्मेंस नहीं करते हैं।
1: जी जी जी।
2: और वहाँ हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि हमको सिर्फ वहाँ पे अपना प्लेस क्लियर करना है जिससे हमारा सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हो जाए
1: जी।
2: और मेरा ये हमेशा मूल मंत्र रहा है कि मैं अपने प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदी को मैं ये नहीं मानता हूँ कि मुझे इसे हराना है। मेरा ये है कि यदि अगर हम 10 लोग हैं या हम 100 लोग हैं, उसमें से जो उस दिन उस पल उस क्षण में जो बेहतर करेगा वही विजेता बनेगा।
1: बिल्कुल।
2: मैं अपनी चीज़ें ड्यूरिंग मीट भी मैं अपने कॉम्पिटिटर से शेयर करता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैपेबल नहीं है या पर्टिकुलर उस टाइम उनके पास है नहीं, तो मैं शेयर करता हूँ कि आप लो, आप मेरी चीज़ यूज़ करो, आप खेलो, आप बेहतर होगे तो आप ही जीतोगे, मैं बेहतर ये दूंगा तो मैं जीतूंगा।
1: जी जी जी, बहुत अच्छी बात की। और इसीलिए कहा जाता है कि स्पोर्ट्स में कंपटीशन होते हैं वो बहुत ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है और उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आप में एक टीम भावना की बात आती है। अभिषेक जी, सामान्य इंसान को समझाना चाहे तो आप कैसे बताएंगे कि पावर लिफ्टिंग आखिर क्या होती है?
2: पावर लिफ्टिंग एक्चुअली, पावर और लिफ्टिंग, वह व्यक्ति जो कम से कम बॉडी वेट में मतलब वजन में और जितना ज्यादा से ज्यादा भार उठा पाए, वेट लिफ्ट कर पाए, वो होता है पावर लिफ्टर
1: जी।
2: पावर लिफ्टिंग में 3 चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं। एक कंधे पे रॉड और वजन रख करके आपको बैठना है, फिर ऊपर आना है, एक चेस्ट पे बार को लाना है और ऊपर करना है, और वेट लगा हुआ है डेडलिफ्ट, जिसको डेडलिफ्ट बोलते हैं, नीचे भार को ऊपर की ओर आना, ये 3 लिफ्टों का संगम है पावर लिफ्टिंग
1: जी। और हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे, हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश के बेस्ट पावर लिफ्टर आज हमारे साथ मौजूद है और आज वो अपनी जो जर्नी है पावर लिफ्टिंग की वो आज हमसे साझा कर रहे हैं। अभिषेक जी, एक पावर लिफ्टर का सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसा होता है?
2: देखिए, पावर लिफ्टिंग का जो प्रशिक्षण है वो स्पेसिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि आप एक उद्देश्य, आप एक पहले अपना एक साल भर का आप एक उद्देश्य बनाते हो कि भाई मुझे इस साल यहाँ तक इस वजन को उठाने में सक्षम करना है अपने आप को। तो हमारा जो ट्रेनिंग शेड्यूल होता है 4 डेज 5 डेज 6 डेज की हमारी ट्रेनिंग शेड्यूल होती है है, 4 डेज में हमको कौन से दिन में करना है, और हमारा सब कुछ निश्चित होता है कि आज हमें इस वजन से इतने रैप और इतने सेट्स लगाने हैं
1: जी।
2: फिर हमारी जो उस मसल को, जैसे स्क्वाट हो गई तो लेग्स हो गए, लेग्स के लिए जो सपोर्टिव एक्सरसाइजेस हैं कौन कौन सी करना है, बहुत सारी मल्टीपल एक्सरसाइज होती हैं, चेस्ट और

0: चेस्ट बेंच प्रेस को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करना है, आपको डेडलिफ्ट को इंक्रीज करने के लिए कैसे करना है, तो सब कुछ सुनियोजित होता है कि ऑफ सीजन में आपको कैसी ट्रेनिंग करनी है, कब आपको हाइपरट्रॉफी फेज में रखना है, कब आपको टैपर करना है, कब आपको पीकिंग करनी है। तो ये एक प्योर कस्टमाइज एंड प्रोफेशनल कोचिंग के द्वारा ही संभव है ये स्पोर्ट्स।
1: जी जी जी जी। और हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आप बहुत से ऐसे लोगों को भी इस समय तैयार कर रहे हैं पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में, जो मध्य प्रदेश में काफी नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आप एक प्रशिक्षक की भूमिका भी निभा रहे हैं। अभिषेक जी, पावर लिफ्टिंग में डाइट और पोषण की क्या भूमिका होती है?
0: पावर लिफ्टिंग में न्यूट्रिशन का महत्व उतना ही है कि जैसे शरीर है, शरीर में यदि अगर हार्ट काम नहीं करेगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो
1: जी।
0: तो जब तक आपका पोषण सही नहीं होगा, आप यदि अगर रात को अच्छे से सो नहीं पाए, यदि आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं हुआ, यदि आपने कुछ ऐसी चीज खा ली कि आपको एसिडिटी हो रही है, आपको ब्लोटिंग हो रही है, तो आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली अगले दिन अच्छा नहीं होगा
1: जी।
0: आपकी मसल रिकवर नहीं होगी, आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी। आपका न्यूट्रिशन पोषण प्रॉपर होना चाहिए। कितना प्रोटीन खाना है, कितना कार्ब्स खाना है, कितना फैट खाना है, कितना फाइबर खाना है, हर चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप वेट को लिफ्ट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको 365 दिन वो काम करना है जो आम आदमी की कल्पना से परे है।
1: जी जी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। खेल जीवन में कभी ऐसा समय आया जब आपको ऐसा लगा हो कि अब आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है?
0: मेरी पूरी जर्नी में सबसे जो मेरा इमोशनल और टफेस्ट जो टाइम था, मैच्योर ओलंपिया में थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हुआ नो डाउट, क्योंकि मेरी जो प्लानिंग थी और मैंने जिस हिसाब से मेहनत करी थी उसके अकॉर्डिंग वो परिणाम नहीं आ पाया
1: जी।
0: बट अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो मेहनत की थी वो करी थी मैंने अर्नॉल्ड क्लासिक यूएसए के लिए, और उस दौरान मैं केवल 800 कैलोरीज खाता था और 3 घंटे कार्डियो करता था
1: जी जी जी,
0: और अपनी ट्रेनिंग वर्किंग सब भी कुछ करता था। तो वो वहाँ पे वीज़ा रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया था, उसके बाद वो कॉम्पिटिशन कोविड की वजह से कैंसिल हुआ। वो पल मेरे लिए एक बहुत ही अब आघात देने वाला था। वही सबसे बड़ा एक पॉइंट था कि जिसने मुझे पूरी तरीके से हिला के रख दिया था, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी। मैं उस साल इंडिया के लिए मेडल इंटरनेशनल नॉट क्लासिक यूएसए जो मेन ओलंपिया होता है उसकी तरह ही आयोजित होने वाला एक दूसरा कॉम्पिटिशन है, वर्ल्ड के सारे बेस्ट बॉडी बिल्डर्स उसमें आते हैं, उसमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन में था
1: जी। बिल्कुल। और कठिन परिस्थिति मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आपका मंत्र क्या है?
0: मेरा सिर्फ यही सोचना है कि हर वो व्यक्ति, हर वो खिलाड़ी किसी भी चीज़ को छोड़ने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले ये ज़रूर सोचे कि वो जीत या वो हार या वो कदम जो उठा रहा है वो सिर्फ उसका नहीं है, उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए है, उसके माता पिता, उसके कोच, उसके टीममेट्स, जिनने उसके खेल के लिए, उसकी उस काम के लिए, उनमें यदि अगर 1% का भी सहयोग किया है तो उसके उस निर्णय से यदि अगर वो क्विट करता है, यदि वो आगे बढ़ता रहता है, वो क्विट करता है तो उसको बस दुख नहीं होगा, उनको भी दुख होगा। यदि अगर वो जीतेगा तो उसको बस खुशी नहीं होगी, उनको भी हो। तो ये एक चीज़ है जो मुझे हमेशा मोटिवेट रहती है कि मुझे अपने लिए नहीं, मुझे अपने से जुड़े हुए जो मेरे इस जर्नी में मेरा सहयोग कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीममेट्स, उन सभी के लिए मुझे करना है और मुझे आगे बढ़ना है, और मुझे मध्य प्रदेश का जो नाम है वो इंटरनेशनल लेवल में मुझे रोशन करना है
1: जी। और भविष्य को लेकर अभिषेक जी क्या योजना है आपकी?
0: पिछले 9 सालों से मेरा एक ही उद्देश्य है, जब से मैंने एशियन जीता उसके बाद से, कि मुझे मध्य प्रदेश में पर्सन स्पेसिफिक ट्रेनिंग और मध्य प्रदेश में खेल का स्तर बढ़ाना है, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। मैं अभी आगामी जुलाई में नेशनल कॉम्पिटिशन खेल रहा हूँ, पिछली बार अपेंडिक्स की वजह से मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया, इस बार मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बहुत अच्छा कर सकूँ, और इसके बाद फिर आगामी मैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए प्लानिंग करूँगा
1: जी। अभिषेक जी, कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन युवाओं को जो खासकर पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं?
0: मेरा तो उनको सिर्फ एक ही सलाह है कि थोड़ा पेशेंस रखें। पावर लिफ्टिंग एक ऐसा स्पोर्ट है कि आप 70 साल 80 साल तक खेल सकते हो
1: जी जी।
0: पावर लिफ्टिंग में जूनियर, सब जूनियर, ओपन, मास्टर्स, मास्टर्स में 4 कैटेगरी होती हैं, मास्टर 1, मास्टर 2, मास्टर 3, मास्टर 4। मास्टर 4 70 साल से लेकर के ऊपर तक के कैटेगरी होती है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, फिर 70 और प्लस
1: जी।
0: तो आप हमेशा इसे खेल सकते हो, और जल्दीबाजी ना करें, मार्गदर्शन लें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसे आप हमेशा खेल सकते हो। आप जॉब करते हो, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद भी आप इसको खेल

0: सकते हो।
1: जी, हम यह कह सकते हैं कि पावर लिफ्टिंग केवल एक खेल नहीं है, बल्कि फिटनेस के लिए भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि अभी अभिषेक जी ने बोला कि बिल्कुल हताश न हो, जल्दबाजी न करें, बल्कि इसमें किसी भी तरह की एज की किसी भी तरह का कोई बार नहीं है, तो एज से पूरी तरह से ये मुक्त है। तो आप जिस भी उम्र में शुरू करना चाहे, अपने प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में शुरू करें और इस खेल का आनंद लें। अभिषेक जी, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी बातचीत आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी, धन्यवाद।

अभी आपने बेस्ट लिफ्टर ऑफ मध्य प्रदेश से सम्मानित भोपाल के पावर लिफ्टर अभिषेक बघेल से यह बातचीत सुनी। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म जानी दुश्मन का एक गाना। इसमें दूसरी आवाज़ है आशा भोसले और साथियों की। वर्मा मलिक ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म चंबल की कसम से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। साहिल रिधियानवी ने इस गाने को लिखा है, खयाम का।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म रुस्तम से, आवाज़ है आतिफ असलम की, गीत और संगीत आरको का है।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल की आवाज में गीत, और दूसरी आवाज है इसमें अभिजीत की, महेंद्र प्रताप सिंह का लिखा हुआ ये गाना है और निखिल विनय का संगीत है। इस गाने को किसने पसंद किया है वो हम आपको गाने के बाद सुनवाएंगे।

इस गाने के लिए फरमाइश आई थी सपना संगीता रोड इंदौर से लिखने वाले हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। महादेव घाट अमलेश्वर से लिखने वाले हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज कुमार ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश कुमार ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने पसंद किया था। इसी गाने के लिए छत्तीसगढ़ बेमेत्रा से लिखने वाले हैं सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से लिखने वाले हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामनी वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। अगला गाना लिया है हमने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में एक गाना, फिल्म का नाम है काला पत्थर। साहिर ने इस गाने को लिखा है और राजेश रोशन का संगीत है। इसको पसंद किया है, फरमाइश हम बताएंगे गाने।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म श्री 420 से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, शैलेंद्र और साथियों की। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, शंकर जयकिशन का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है पिछले गाने की, और इन दोनों गानों की मिली जुली फरमाइश इस तरह है। डोंगर गांव से लिखने वाले हैं, राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये बेबी, अनुष्का और तन्मय गजबिये। इसी गाने को पसंद किया है उपाध्याय नगर देवास से लिखने वाले हैं मुरारी लाल वर्मा, मनीषा वर्मा, शिवम वर्मा। मेंढकी रोड देवास से नागू सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत, अभिषेक कुमावत और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है राजा राम नगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, मीकू और उनके साथी, और मोहसिनपुरा से जमील खान और इमरान और फरहान।

अगला गाना है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और आशा भोसले की आवाज़, शैलन सिंह का लिखा हुआ गाना, शंकर जय किशन का संगीत, और फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है शाहू नगर यशवतमाल से, लिखने वाले हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतना मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियंशा। और इसी गाने के लिए शिवाजी चौक राजिम से लिखने वाले हैं अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। और अमरपुर पेंड्रा से लिखने वाले हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। और बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास, और ये कुछ मिटा हुआ है, ज़िला सागर, और लिखने वाले हैं लक्ष्मण रेखवार, विनीता रेखवार, वैशाली वेशणी, अनरत रेखवार और ऋषि रेखवार।

और अगला गाना लिया है हमने फिल्म हाथ की सफाई से. आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की. गुलशन बावरा ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, और इस गाने को पसंद किया है हुलास राम कटरे, नानेश्वरी कटरे, और इन्होंने भेजा है ये दरिया दंड हट्टा ज़िला बालाघाट से. इन्होंने ये फरमाइश के लिए भेजा है. और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित और साथी प्रतीक आर्य ने इस गाने को पसंद किया है. और इस गाने के लिए अगला ख़त भी हम शामिल कर लेते हैं. रिंगनी छत्तीसगढ़ से ये ख़त शामिल हो चुका है. इन्होंने भी इस गाने के लिए ये फरमाइश भेजी है. सुनते ही

इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र प्रसाद का वायलिन पर बजाया राग पूरी धनाश्री। लीजिए सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रचने के अंतर्गत राजेंद्र व्यास का वायलिन पर बजाया राग पूरिया धनश्री। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा।

मिनट हुए हैं हमारी स्टूडियो की घड़ी में। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर इसी मीटर पॉइंट पर हम फिर हाजिर होंगे। तो अब इजाज़त दीजिए, जावेद खान को जय।